0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2 Radio Musti.
1: मुझे शर्मा के

0: बड़ा 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। संडे की सुबह है, वीकेंड का आखिरी दिन और समय हो रहा है 5:06। एक नई सुबह, एक नई रोशनी और दिल में एक बहुत ही खास एहसास। बप्पा आ चुके हैं, घरों में तैयारियां शुरू हो गई है, कहीं फूल सज रही है, कहीं मोदक की खुशबू है, कहीं पूजा की तैयारी और कहीं गणपति बप्पा की मूर्ति को प्यार से घर लाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी हम मंगलवार को मनाएंगे, लेकिन बप्पा का आना सिर्फ एक दिन का त्यौहार तो नहीं होता है ना, ये तो एक एहसास है घर में सुकून का, दिल में श्रद्धा का और हर नए काम के लिए बप्पा से आशीर्वाद लेने का। गणपति बप्पा मोरिया, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, हमारी यही प्रार्थना है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ संडे की सुबह को बनाती है और भी हसीन। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती और समय है 4:00। पहले घंटे में होंगी सदाबहार गाने एज यूजुअल, वो मेलोडीज जो समय के साथ पुरानी कभी भी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर दिल में एक नई कहानी जगा देती है। और वैसे भी हमने शुरुआत की एक बहुत ही खूबसूरत गाने से, करवती बदलते रहे। तो चाय हो या कॉफ़ी, घर में पूजा की तैयारी हो या बस आप यूं ही बैठे हैं, हर संडे को ऐसे ही आप निभाते हैं, तो बस इस संडे को आप ऐसे ही महसूस कीजिए। वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए और संडे को शुरू कीजिए सुकून संगीत और बप्पा के आशीर्वाद के साथ। दिस इज चिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती रिया के साथ एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। चलिए, आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: संडे है आज, यानी वीकेंड का आखिरी दिन। लेकिन एक छोटा सा काम हम करते हैं, मंडे के बारे में आज बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज संडे है तो संडे को संडे की तरह जिएंगे। आराम से नाश्ता होगा, फैमिली के साथ समय होगा, शायद कहीं घूमना फिरना होगा, शायद बप्पा के दर्शन, या फिर बस घर पर रहकर लोगों के साथ है एक कप चाय। लाइफ में बड़े मोमेंट्स तो सबको याद रहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। सुबह की ठंडी हवा, किचन से आती चाय की खुशबू, किसी अपने का गुड मॉर्निंग कहना और रेडियो पर बजता हुआ एक पुराना गाना, बस यही है संडे की असली लग्जरी। तो आज अपने आप को आप परमिशन दीजिए थोड़ा स्लो होने की। कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कीजिए, बस बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए और रिलैक्स कीजिए। जी हाँ, चिल एंड रिलैक्स, यही रिलैक्स करना है आज, क्योंकि संडे है। और संडे आई नो कि हर हफ्ता आता है, लेकिन संडेज बहुत ही जल्दी कट जाते हैं। चुटकी बजाई और निकल गई, बस पता ही नहीं चलता कि कब आता है ये दिन और चला भी जाता है। बट जो इम्पोर्टेंट है ये है कि आप इसे कैसे जीते हैं, आप इसका सदुपयोग कैसे करते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, यू वांट टू फील रिलैक्स्ड, यू वांट टू फील चिलैक्स्ड, तो आप संडे को संडे की तरह ही जियो। कीप अ बिट स्लो और अपनों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, अपने साथ ही थोड़ा सा समय बिताइए एंड यू फील सो गुड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके एक दो मैसेजेस आए हैं, तो हम देख लेते हैं। हैप्पी संडे विश करते हैं सभी को, अब्दुल और सायरा बानो जी और अपने दोस्तों के नाम नसरीन शाकिल केशव के नाम आप डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना। और राइट, ज़रूर हम चलाएंगे। जयशन जी प्रणाम आपको, आप डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना फॉर हिमाक्षी कुष्मिता लवना भियमती जयशन, यानी आपके नाम ही। ओके, हम ज़रूर चलाएंगे आपके नाम एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। एंड यहाँ पर ऑल्सो वी हैव आकाश चेतन मनसुख जो है बॉम्बे से, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग आपको। गणेश जी का एक गाना हमने चला दिया है, लेकिन अगर हो सके तो हम ज़रूर एक दो गाना और चलाएंगे, लेकिन द नेक्स्ट आवर हम बहुत सारे गाना गणेश जी के चलाएंगे। सो नॉट टू वरी, आप अभी ये सदा बाहर गाने एंजॉय करते रहिए एंड हमारे साथ यूँ ही कनेक्टेड रहिए।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: क्या खूबसूरत सुबह है ना, संडे की सुबह का अपना ही एक अंदाज होता है। अलार्म की जल्दी नहीं, भाग दौड़ थोड़ी कम और तेरे को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। और आज तो माहौल और भी खास है क्योंकि बप्पा घर घर आ चुके हैं। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं जो मुश्किलों को दूर करते हैं। तो आज सुबह एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए भी कीजिए, पप्पा जो मेरे लिए अच्छा है उस रास्ते पर मुझे चलने की हिम्मत देना और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उससे दूर रहने की समझ देना। बस इतनी सी बात, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी ज़िंदगी हमारे लिए उससे बेहतर कुछ तैयार कर रही होती है, इसलिए इस संडे को टेंशन थोड़ी कम, शुक्रिया ज़्यादा आप कर सकते हैं और मुस्कुराहट थोड़ी एक्स्ट्रा। और हाँ, अगर आपके घर भी बप्पा पधारे हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप पर आप फोटो भेज सकते हैं। पप्पा के स्वागत की आपके घर की सबसे खूबसूरत तैयारी क्या है, हम भी तो देखें। मोदक, फूलों की सजावट, पूजा या बस अभी आप लाइट्स लगा रहे हैं। चलिए तो इस संडे को म्यूजिक के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी हम बांटेंगे और रेडियो मस्ती पर चिलैक्स यूं ही जारी रहेगा। एंड विशिंग यू ऑल पायस गणेश चतुर्थी। जी हाँ, हमारे सभी लिसनर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई नो कि आप शायद तैयारियों में अभी लगे हुए हैं तो आपको बुखार कहते हैं। जी हाँ, सवेरे सवेरे जुट चुके हैं तैयारियों में और स्पेशली संडे जहाँ पर आपको टाइम मिलता है, तो आई नो कि आप अभी लगे हुए हैं तो आपको हम बुखार कहते हैं। और गाने आप मीनवाइल एंजॉय करते रहिए।
2: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: राइट अपनी घड़ी मिलाते चलिए 5:46 और अभी समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा क्योंकि चौ राशि टाइम तो शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि
1: आज का दिन आपके लिए जोश और नए हौसले से भरा रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका भी मिल सकता है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और अपनों का साथ दिल को सुकून देगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि
1: आज संडे का दिन आपको थोड़ा रुकने संभालने और खुद को समय देने का मौका देगा। घर परिवार से जुड़ी कोई अच्छी बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। काम को लेकर जो चिंता थी उसमें धीरे धीरे राहत आपको मिलेगी। लकी नंबर है आज आपको आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि
1: आज आपकी बातों में एक अलग ही असर रहेगा और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। किसी दोस्त या अपने से अच्छी और दिलचस्प बातचीत हो सकती है। नया आइडिया मिल सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि
1: आज का दिन खास तौर पर परिवार और रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। अपनों के साथ बताया हुआ थोड़ा सा समय भी आपको अंदर से बहुत खुशी देगा। किसी पुरानी बात को लेकर मन में बोझ है तो उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। पैसों के मामले में आज ज्यादा खर्च करने से बचना अच्छा ही रहेगा आपके लिए। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि
1: आज आपके अंदर कुछ नया करने का जबरदस्त हौसला रहेगा। जो काम कुछ समय से रुका हुआ था उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए लेकिन दूसरों की सलाह को भी नजरअंदाज ना करें। लेकिन नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि
1: आज का दिन आपको थोड़ा आराम करने और अपने लिए समय निकालने का इशारा दे रहा है। हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को थकाइए मत। घर में किसी अपने के साथ खूबसूरत पल बीत सकता है। काम से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि
1: आज रिश्तों में मिठास और अपनापन बढ़ेगा। किसी खास इंसान से हुई छोटी सी बात भी आपका पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। अगर कोई फैसला काफी समय से लटका हुआ है तो आज उस पर दोबारा सोच सकते हैं। पैसों को लेकर कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि
1: आज आपके लिए अपने मन की सुनने का दिन है। कुछ बातें जो आपको परेशान कर रही थी उनका हल धीरे धीरे सामने आ सकता है। किसी पुराने दोस्त या अपने से अचानक बात हो सकती है। काम और पैसों के मामले में जल्दबाजी से बच के रहे। लेकिन नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि
1: संडे आपके लिए खुशी और नई उम्मीद लेकर आया है। आज कहीं घूमने फिरने या फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। आपकी पॉजिटिव सोच किसी और के दिन को बेहतर बना सकती है। काम से जुड़ा कोई नया प्लान दिमाग में आ सकता है उसे जरूर याद रखिए। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
1: आज आपको अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करने की ज़रूरत है। हर समय काम और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं। फैमिली के साथ बैठकर बातें करना आपको अंदर से रिफ्रेश करेगा और पैसों के मामले में आज संभल कर चलना फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि
1: आज आपके दिमाग में कोई अच्छा कोई नई सोच या ज़बरदस्त आइडिया आ सकता है। हो सकता है अभी वो छोटा लगे लेकिन आगे चलकर काफ़ी काम आ सकता है। दोस्तों या फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुरानी परेशानी को लेकर ज़्यादा सोचने से बच के रहे। लेकिन नंबर है आज आपका 6।
2: पाइसेस मीन राशि
1: आज का संडे आपके लिए सुकून और भक्ति से भरा रह सकता है। घर में बाबा की पूजा या उनका नाम लेने से मन को खास शांति मिलेगी। किसी अपने की तरफ से प्यार भरी बात या छोटा सा सरप्राइज मिल सकता है। काम को लेकर भी उम्मीद बनी रहेगी और कोई अच्छा रास्ता नजर आ सकता है। और आज आपका लकी नंबर है 12। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
0: योर डेली हॉरोस्कोप।

0: subscribe to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique. Feel the Mystique.
4: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. तो घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है. संध्या नमस्कार आपको आशिता.
5: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार. आज 13 सितंबर रविवार का दिन, इस पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सभी को मेरा प्रणाम. मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है. 2026 के पहले 6 महीनों में 3431 शादियां दर्ज की गई. बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगे हैं. और 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र. विचारों का आदान प्रदान, अपनी साझा विरासत और पहचान पर चर्चा, नई पीढ़ी की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन. गुपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर जोड़ा है. अब ये सम्मेलन यादों, सम्मान और उपलब्धियों के साथ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज और इस सिलसिले में आज विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है कालबास में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की सांस्कृतिक केंद्र में. नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व

0: संगठित अपराध की कुछ जांचें पुलिस से लेकर इस नई एजेंसी को दी जा सकती है। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थानों की शुरुआत होगी। बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पैक लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच अथर्वा समूह के सदस्य पारंपरिक जागरण नृत्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज के हमारे समाचार बुलेटिन में हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर इस संदर्भ में आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोगों के घायल होने की खबर मिली है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन फ्रांसीसी मीडिया में इसे साबोताज की संभावित घटना बताया जा रहा है। उधर यूक्रेन में रशियन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के समारा इलाके में सैन्य सामान बनाने वाली एक कारखाने पर ड्रोन हमला किया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके के ऊपर हल्की हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है। आज सुबह के समय धूप खिली रहेगी। दोपहर के समय उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाने की संभावना है तथा अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान तापमान अधिकतम तापमान औसत से थोड़ा ऊपर, सेंट्रल प्लेटों पर तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटीय इलाकों में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के दौरान रात में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र की स्थिति सामान्य से कुछ उग्र रहेगी और दक्षिणी दिशा से करीब 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti।
0: तो इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Chillax with Radio Musti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

अब संडे की सुबह एकदम बप्पा के रंग में रंग चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। समय हो रहा है 6:11 और आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। सेकंड आवर की शुरुआत ही हुई है एक बहुत ही धमाकेदार अंदाज में।

0: मोरिया मोरिया रे फ्रॉम द मूवी डॉन, गणपति बप्पा मोरिया। सुबह सुबह इस गाने की एनर्जी ही कुछ और है, ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल कह रहा हो पप्पा घर आ गए हैं, अब तो खुशियां भी साथ साथ आएंगी। वेल, यहाँ पर गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों से हो गई है, कहीं पप्पा की मूर्ति को सजाया जा रहा है, कहीं घर में रंगोली शायद बन रही होगी, कहीं फूलों से सजावट, और कहीं किचन में शायद आप ये पकवान मोदक सब बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात, फेस्टिवल चाहे किसी भी दिन हो, उसकी खुशी पहले ही दिन में आ जाती है। तो अगर आप अभी घर में तैयारी कर रहे हैं या सुबह की चाय या लेकर आप फैमिली के साथ बैठे हैं, तो आज की सुबह एक ही मंत्र के साथ आप शुरू कीजिए कि आप इस संडे को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, खुशी के साथ छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढ ही लेंगे। तो थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मस्ती, थोड़ी भक्ति और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स तो बनती है। आपके साथ मैं हूँ आपके रिया, और यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी रहेगा। सो रिलैक्स, कंटिन्यूज ओनली ऑन रेडियो मस्ती।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: साथ में जुड़ चुके हैं बॉम्बू से धनेश्वर जी, आपकी पत्नी है सुनीता रेखा निशा, साथ में है दावे दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट गाना।
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो।

रविवार 13 सितंबर 2026 की इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है। 2026 के पहले 6 महीनों में 3431 शादियां दर्ज की गई। बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगी हैं। साझी विरासत, साझा पहचान और अब यादों का एक भावुक पल। मॉरिशस में आयोजित गोपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सम्मेलन का समापन और पुरस्कार समारोह होगा। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें पुलिस से लेकर इस नई एजेंसी को दी।

जा सकती हैं। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थाओं की शुरुआत होगी। बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पैक लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोग घायल हो गई हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। वहीं यूक्रेन में रशियन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। क्या मॉरिशस के लोगों में शादी का आकर्षण अब भी पहले जैसा है? 2026 के पहले 6 महीनों में मॉरिशस गणराज्य में 3,431 शादियां दर्ज की गई। ये संख्या पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2.4% कम है। शादियों में कमी का ये सिलसिला कुछ सालों से जारी है। 2023 में 8,654, 2024 में 8,220 और 2025 में 7,715 शादियां दर्ज की गई थी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 7,490 शादियां हो सकती हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे समाज में आ रहा एक बदलाव भी दिखाई देता है। लोग अब शादी देश से कर रहे हैं और ये फैसला पहले से ज़्यादा व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता है। और शादी का आर्थिक पहलू, इस पर ज़्यादा जानकारी शैली नेबर ने समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और कई युवाओं से इस बारे में बातचीत के दौरान ज़्यादा जानकारी प्राप्त की है। सुनते हैं। 2024 में पहली शादी की औसत उम्र महिलाओं में 29 वर्ष 1 महीना और पुरुषों में 32 साल 2 महीना पहुंच गई। 10 साल पहले ये उम्र क्रमशः 27 वर्ष 9 महीना और 31 वर्ष 6 साल की थी। राज्य शास्त्री चंद्रसेन रंगासामी के मुताबिक इस बदलाव की एक बड़ी वजह महिलाओं की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। ज्यादा शिक्षा, रोजगार के बढ़ते अवसर और अपनी जिंदगी में शादी का फैसला खुद लेने की आज़ादी ने इस सोच को बदला है। अर्थशास्त्री मनीषा धुकोनी इसके साथ आर्थिक पहलू को भी जोड़ती है। घर खरीदना, बच्चे की परवरिश और शादी का खर्च, ये सभी बड़े खर्च हैं। देश में महंगाई की सालाना दर अगस्त में 4.9% रही। वहीं बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार जून 2025 से जून 2026 के बीच घरेलू कर्ज में 11.2% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इन आंकड़ों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि शादी में कमी की वजह सिर्फ आर्थिक स्थिति है। दरअसल ये बदलती प्राथमिकताओं की तस्वीर है। पहले अपना घर, परिवार और करियर बनाना, आत्मनिर्भर होना और उसके बाद शादी का फैसला करना। शादी खत्म नहीं हो रही है, बस अब थोड़ी देर से हो रही है और ये फैसला अब सिर्फ परिवार या समाज की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी पसंद और तैयारी के मुताबिक लिया जा रहा है। 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र। 2 सदियां पहले भारत से निकले आजाद जहाज अपने साथ अपने सपने, जहां 2 सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक समृद्ध विरासत लेकर रवाना हुए थे। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मॉरिशस में एकजुट हुई, जहां 16वें गोपियो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन यानी इमिग्रेशन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया। आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास की ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बजट 2026-2027 में इस एजेंसी की

0: स्थापना के लिए पहले ही 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रिपरिषद ने कल 9 विधेयकों को पेश करने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों के जरिए नई एजेंसी का गठन किया जाएगा और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC के मौजूदा कानूनी ढांचे को समाप्त किया जाएगा। लेकिन FCC की जगह NCA का आना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि नई एजेंसी को कितने अधिकार दिए जाएंगे। NCA को फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर जटिल तथा संगठित अपराध से जुड़ी कुछ जांचें पुलिस से अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। ये 9 विधेयक अब नेशनल असेंबली में प्रकाशित कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी शैलिनी अबन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा दे रही है।
1: मॉरिशस की ओर से कई प्रस्ताव किए गए जिन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गौर कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट चेक के लिए फैटेफ मात्र 24 घंटे की मोहलत देता है और 24 घंटों में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अफ्रीका अन्य फैटेफ देशों जैसा नहीं है। मैंने इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के अध्यक्ष वांडा के वित्त मंत्री ने ये 9 विधेयक मौजूदा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तुलना में कई अधिक व्यापक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावित नई एजेंसी के प्रमुख कार्यों में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसंस्करण और मूल्यांकन करना, साथ ही आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को बरामद करना और उनका प्रबंधन करना शामिल होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि एजेंसी पुलिस द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप कर सकेगी और यदि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में भी ले सकेगी। इस व्यवस्था में जांचकर्ताओं और अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने वाले लोगों के लिए एक विशेष कानून का प्रावधान है। इसके अलावा अज्ञात या अस्पष्ट संपत्तियों से संबंधित एक अलग कानून भी प्रस्तावित है। अब आगे की प्रक्रिया संसद के हाथों में है। इन 9 विधेयकों को नेशनल असेंबली द्वारा प्रसारित और प्रकाशित किया जा चुका है। हालांकि राष्ट्रसभा फिलहाल स्थगित है और इसकी अगली बैठक 20 अक्टूबर तक नहीं होगी। ये सुधार ऐसे समय में सामने आया है जब फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मंगलवार को बताया कि लगभग 55 बिलियन मॉरिशन रुपए से जुड़ी संपत्तियों और मामलों की फिलहाल जांच चल रही है।
0: विजन 2050 के शुरू किए जाने के करीब 9 महीने बाद अब इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अमल पर नजर रखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 से 2030 की अवधि के लिए 10-point इम्प्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है, साथ ही दूसरे संबंधित पक्षों के साथ भी समन्वय मजबूत करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मंत्री ज्योति जितन ने कहा कि इस दिशा में काम आज से ही शुरू हो रहा है। उन्होंने विजन 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को 4.7% आर्थिक विकास दर दर्ज करनी होगी, जबकि फिलहाल ये करीब 3% है। मंत्री ज्योति जितन को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: मॉरिशस की ओर से कई प्रस्ताव किए गए जिन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गौर कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट चेक के लिए फैटेफ मात्र 24 घंटे की मोहलत देता है और 24 घंटों में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अफ्रीका अन्य फैटेफ देशों जैसा नहीं है। मैंने इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के अध्यक्ष वांडा के वित्त मंत्री ने इसका समर्थन किया, साथ में सेशल्स ने भी। मैंने इसे 72 घंटों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हमारी आवाज जरूरी है क्योंकि इसी मेज पर जरूरी निर्णय लिए जाते हैं जो इस हमला के सभी देशों को प्रभावित करते हैं।
0: बिजली का बिल

0: कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लील एनर्जी ने इस सप्ताह अपना नया गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पैक लॉन्च किया है। लील एनर्जी के मैनेजर लोइक सुरे के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपये तक है। ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। लोइक सुरे को सुनते हैं एक बार फिर। राजमिला स्तमणि ने उनसे बात की, विवरण यक्षा मिश्रा का है।
1: हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश में सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच तक लाना। डीबीएम के ग्रांट के सहारे हम ये कर पा रहे हैं, जिसके तहत परियोजना की 25% फाइनेंसिंग यानी 75,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। इस कदम का ऐलान हाल में मंत्री पत्रिका सेवादन ने किया और ये अमल में लाया जा रहा है। हमसे कोटेशन लेकर सीबी में अर्जी डालें और डीबीएम में एप्लीकेशन करें। ग्राहक को एक वाउचर मिलेगा जो उसे हमें लाकर देना पड़ेगा ताकि हम इंस्टॉलेशन कर पाएं।
2: डीबीएम et il nous remet le voucher original pour que nous puissions faire l'installation.
0: इसके अलावा रिजवी में स्थित एंटोमोलॉजी डिवीजन में एक नया एक्सरे इरेडिएटर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों के नर कीटों को प्रकृति में छोड़ने से पहले निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। ये प्रक्रिया स्टेरिल इंसेक्ट टेक्निक के तहत की जाएगी। ये नई टेक्निक फलों की मक्खियों जैसे कीटों से निपटने के इस तरीके को और मजबूत करेगी और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद करेगी। एग्रो इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी कि कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल चाहते हैं कि मॉरिशस इस टेक्निक के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक उदाहरण बने। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं।
3: गणेश
0: चतुर्थी के उत्सव की तैयारियों के बीच अथर्व समूह के सदस्यों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले कई हफ्तों से वे पूरे जोश और लगन के साथ जाकरी जो है यानी कि मराठी समुदाय के पारंपरिक नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। गीतों की धुन और नृत्य के कदमों के साथ वे अपने बुजुर्गों से मिली इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और गणेश चतुर्थी को श्रद्धा उत्साह और खुशी के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उर्वशी भिखारी भंजन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
4: हर एक नृत्य की अपनी एक कहानी होती है, एक समुदाय की, उसके काम की और उसकी मान्यताओं की कहानी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्यों में कोली नृत्य का एक विशेष स्थान है। ये नृत्य मुख्य रूप से कोली मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। इसके हाव भाव समुद्र में मछुआरों के जीवन को दर्शाते हैं। लहरों की गति, मछुआरों का काम और उनकी नावों की गतिविधियों को इन नृत्य मुद्राओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मछुआरे इन मूवमेंट्स के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अन्य परंपरा, एक अलग दुनिया, किसानों की दुनिया। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य कृषि उत्सवों और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जब नाचते हैं तो ज्यादातर हाथों का प्रयोग किया जाता है और किसान प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो।

0: आत्माओं से।
1: गणपति देवा आला गवाला, गणपति देवा आला गवाला।
2: लेकिन ये अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्यों के ताल और नृत्य हाव भाव एक ही प्रस्तुति में देखने को मिलते हैं।
3: डांस की एसोसिएशन अवेक गणेश चतुर्थी से झाकरी।
2: गणेश चतुर्थी की बात जब करते हैं तो झाकरी की बात होती है। झाकरी भी एक फोक डांस है। समय के साथ झाकरी में बदलाव लाए गए इसकी प्रस्तुति में विशेषकर। मराठी समुदाय के प्रतिनिधि झाकरी को यूनेस्को के सामने ले जाना चाहते हैं, एक इनटेंजिबल हेरिटेज के स्तर पर। ये नृत्य सिर्फ अलग अलग कदमों का मेल नहीं है, ये मराठी संस्कृति, इसके इतिहास और उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है।
4: अभी आप नीतूषा जीहा की रिपोर्ट सुन रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपको बता रही थी कि उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायलों में एक 18 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिसे गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार कि इसे एक साबुतेज की संभावित घटना के रूप में भी देखा जा रहा है। अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हताहतों से निपटने की आपातकाल योजना सक्रिय कर दी है। और उधर यूक्रेन में रूस के द्वारा हमलों के दौरान कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि रात के समय रशिया के समारा इलाके में स्थित टोलियाटिकोचोक सिंथेटिक रबर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। इस ये फैक्ट्री रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सामान की आपूर्ति करती है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब यूक्रेन और रशिया के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके के ऊपर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद में उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाने की संभावना है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। रात में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाहरेखा के पास समुद्र की स्थिति सामान्य से कुछ उग्र रहेगी और दक्षिणी दिशा से करीब 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर औसत से थोड़ा ऊपर रहेगा, यानी 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसल पर हमारे सहयोगी फैजान का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मेजरलेन लापे पितोमे, मेजरलेन लापे पितोमे 73 साल के 73 years old के श्री कमल नारायण हरेल, श्री कमल नारायण हरेल जिन्हें कमल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उनकी बेटी संध्या हरेल के घर लापे पितों से उठाकर पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। समय के बारे में बाद में बताया जाएगा। क्रीमेशन टुडे आफ्टरवर्ड्स।

Belle-Rose Clément Chamet, Belle-Rose Clément Chamet, Pachater Sal, qui 75 years old, qui श्रीमती बसंती लखन, श्रीमती बसंती लखन जिन्हें ललिता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे शिव प्रसाद के घर लखन, शिव प्रसाद लखन के घर क्लिमाशा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे 2:30 PM मौगुया कौदे मास्क पावी में, मौगुया कौदे मास्क पावी में 42 साल की 42 years old की कुमारी कीर्ति दानु जिन्हें मीनू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 11 बजे उनकी माँ माया दानु के घर मौगया कौंडेमास पावी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 11 AM जापोनेरो ट्रियोले में 81 साल के 81 years old के श्री जयकरण दुयाल जिन्हें सुनन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे राजा अदयाल के घर त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जैसस्तालीन त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM रामचंद्र रोड रिश्मो सेंट्रो दे फ्लाक में 83 साल के 83 years old के श्री गोइनसामी चिलेम्बेन जिन्हें तांगावेल के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे और जो पहले कोंसा शुगर स्टेट में ड्राइवर का काम करते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रिश्मो सेंट्रल फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप में 56 साल के 56 years old की श्री जितेंद्र गोपी जिन्हें गोपी कॉफे के नाम से भी ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज ही दिन के 2 बजे उनके घर कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM लोई स्ट्रीट रॉयल रोड ल्योशे तेरोज में 45 साल की 45 years old की श्रीमती प्रविता कायतू पैदाश नाम जगू और जिन्हें फी के नाम से ज़्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर रैल्यूश त्यागोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद पैद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 11 AM रोजलिन लेन कासी में 60 साल की 60 years old की श्री मानाजी आबाजी जिन्हें दादू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे जिन्हें दादू कैकारी अपला के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके घर रोजलिन लेन काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोर्टलिस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 12:11 AM अटलास रोड गुडलैंड्स में 60 साल के 60 years old के श्री जगदीप लखवा जिन्हें देवानंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निशा लखवा के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 3 PM पाई रोड पाई में 58 साल के 58 years old के श्री राजेंद्रनाथ अकू जिन्हें गौसों के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहली दागुचेक के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके पहनोई विनय गणपत के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 9 AM रॉय रोड कासी में 58 साल की 58 years old की श्रीमती माधवी लाचा की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ कुशीला लाचा के घर काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोर्टलिस की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM रूद बॉशेरी मुकामें 65 साल की 65 years old की श्रीमती भामा रामचंद जिन्हें फी के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके भाई अशोक रामचंद के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौ सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 12:10 AM बुआशेरी रोड मुकामे 88 साल के 88 years old के श्री प्रेमदत्त गुलाम जिन्हें बालू के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज
आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीता गुलाम के घर मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकों ससैपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमिश्नर टीरे

0: half past 2 p.m. Quatre Bords Road, Bon Accueil, mein, Quatre Bords Road, Bon Accueil, mein, 57 साल के, 57 years old के, श्री चित्रंजन माधो, श्री चित्रंजन माधो, जिन्हें राजू मौसम होची के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर बोन अकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांशा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. कमीशन टुडे एट 11 एएम. शोक में डूबी इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Welcome to RM2,
0: Radio Masti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: गुड गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात घड़ी में लाते चलिए सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं
0: विद रेडियो Masti
1: योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन
5: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा मोरिया

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को एंड लुक एट दैट, संडे की सुबह पूरी तरह जाग चुकी है। समय हो रहा है 7:06 एंड सूरज तो निकल आया है, आसमान भी बिल्कुल रोशन, और देखकर लग रहा है कि आज का दिन एकदम ब्यूटीफुल होने वाला है। संडे है, वीकेंड का आखिरी दिन, लेकिन एनर्जी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे वीकेंड अभी शुरू हुआ हो। और इस खूबसूरत सुबह का थर्ड आवर शुरू हुआ है एकदम बप्पा के नाम से, हे गणराया फ्रॉम द मूवी ABCD2। क्या एनर्जी है ना इस गाने में, गणराया के नाम, संडे की फ्रेश मॉर्निंग और ये खूबसूरत रोशनी। बस अब दिन और भी अच्छा होना ही है। गणेश चतुर्थी तो हम मंगलवार को मनाएंगे, लेकिन पापा आ चुके हैं और घर में पधार चुके हैं। घरों में तैयारियां, पूजा की सजावट, फूल मिठाई और सबसे बढ़कर दिल में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता बनी है। तो आज जो भी प्लान्स है ना, उन्हें पूरा आप कर लीजिए। फैमिली के साथ जाना है जाइए, दोस्तों से मिलना है मिलिए, घर में रहकर आराम करना है तो वो भी कीजिए, और अगर कुछ भी प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं, संडे को बिना प्लान के गुजारना भी एक प्लान ही होता है। बस आज एक चीज़ आप जरूर कीजिए कि अपने आप को खुश रखिए। आप सुन रहे हैं रिलैक्स रेडियो मस्ती पर, और थर्ड आवर में म्यूजिक होगा थोड़ा मस्ती पर, थोड़ा रोमांटिक भी, क्यों नहीं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक और

0: बिल्कुल संडे जैसा।
1: सूरज आ गया है, चाय का कप रेडी रखिए और रेडियो मस्ती भी आपके साथ फुल ऑन रेडी है खूबसूरत गाने के साथ। चलिए चिलैक्स करते हैं आपको हम यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत गाने प्ले करके बहुत ही खुश रखेंगे। अभी हमारा यही इरादा है। सो यस, नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294।
2: Chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: अच्छा जी, आपके संडे को ऐसे हम बोरिंग कैसे होने थे, गेम की हम गाने के साथ गेम भी लेकर आए हैं आपके नाम. एंड यस, यू आर प्लेइंग विद आरजे रेडियो मस्ती. और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है 2 एंट्री टिकट टू सियक जवाटा. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स, लॉफ्टर एंड स्पेक्टेक्युलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली. कैच सियक जवाटा एट बगतल, विच शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 6 p.m. and Saturday and Sunday at 2:30 p.m. and 5:30 p.m. चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके नाम. एंड ध्यान से सुनिए, व्हाट वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर ए डिस्क्राइब्स परफॉर्मर्स हु एग्जीक्यूट इम्प्रेसिव फिजिकल रूटीन्स इन अ सर्कस. व्हाट वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर ए डिस्क्राइब्स परफॉर्मर्स हु एग्जीक्यूट इम्प्रेसिव फिजिकल रूटीन्स इन अ सर्कस. यही आपको हमें बताना है सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ है. चलिए, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: इस दिल में और तो भरपूर प्यार है आपके नाम, इसलिए तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, जैसे कि ये गेम हमने जो अभी अभी आपके साथ खेला है. एंड वी हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. जी हाँ, हमने पूछा था व्हाट वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर ए डिस्क्राइब्स परफॉर्मर्स हु एग्जीक्यूट इम्प्रेसिव फिजिकल रूटीन्स इन अ सर्कस. और सही जवाब है एक्रोबैट्स. यहाँ पर बहुत और सही जवाब दिए, तो लकी ड्रॉ हमने कर लिया है क्योंकि बहुत बहुत बहुत सारे सही जवाब मिले और विनर चुनना मुश्किल पड़ा. सो लकी ड्रॉ के बाद हमारे लकी विनर बने रीना निपुल. आप हैं पॉम्पलेमुसेस से और सही जवाब आपने दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने खेला है रेडियो मस्ती के साथ, आरएमटी रेडियो मस्ती के साथ, और आप जीत गई है 2 entry ticket to Cirque Zavata. Get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Catch Cirque Zavata at Bagatelle, which shows every Thursday and Friday at 6 p.m. and Saturday and Sunday at 2:30 p.m. and 5:30 p.m. For bookings and information, aap call kar sakte hai on 5250-941-3 par. 5250-941-3 par. Cirque Zavata, don't miss the magical big show. Aur aapko hum ye bhi bata dete hai, Reena, that you have to collect your एंट्री टिकट एट MBC. आप यहाँ पर आ सकती है सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, बट ओनली ऑन वीकडेज आप आइएगा, वीकेंड में नहीं आ सकती आप. तो चलिए अब आइए, यू कैन कलेक्ट योर एंट्री टिकट. सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. और जो लोग नहीं जीत पाए, आप दिल छोटा कटाई ना करें, क्योंकि बैरी तो एक ना दिन आपकी ज़रूर आएगी.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: राइट अपने घर में लाते चलिए 7:30 बज रहे हैं और स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको विकास जी।
4: नमस्कार रिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। फुटबॉल का जुनून, इंग्लिश प्रीमियर लीग का रोमांच और आज का सबसे बड़ा मुकाबला सबसे बड़े खिलाड़ियों के मध्य में। फुटबॉल इज बैक, किंतु लिवरपूल फिर फिसला, जबकि आर्सेनल की परफेक्ट शुरुआत जारी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के चौथे हफ्ते के नतीजे विस्तार से सुनिए। विला पार्क में कल एस्टन विला की हार हुई, एस्टन विला 1 नॉटिंगम फॉरेस्ट 2, बोर्नमुथ 2 ब्रैंडफोर्ड 2, चेल्सी और हल सिटी ने भी मैच ड्रॉ किया 2-2। एक समय चेल्सी अपने होम मैदान स्टैमफोर्ड ब्रिज में 2-1 से हार रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में जाकर हुआओ पेड्रो ने बचाया चेल्सी को, अंततः मैच 2-2 पर संपन्न हुआ। बेलूमी, इधर से बेलूमी का एक डबल, उधर से रोजर्स का पहला गोल, हुआओ पेड्रो का इक्वलाइजर, चेल्सी 2 हल सिटी 2। क्रिस्टल पैलेस की हार हुई सिलहर्स्ट पार्क में, क्रिस्टल पैलेस 2 इप्सविच टाउन 2, और लिवरपूल 0 फुलहम 0। द रेड्स फिर अटक गए, इस सीजन पहली बार कोई भी गोल लिवरपूल बना न बना पाया, वो भी एनफील्ड में। काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, कुंठा से भरपूर, किंतु इंतजार की भी एक हद होती है, और फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है। लिवरपूल 0 फुलहम 0। टोटेनहम हॉटस्पर ने भी अपना मैच ड्रॉ किया 0-0, फिर मैच ड्रॉ किया 0-0, केवल हार और ड्रॉ हाथ लग रहे हैं। टोटेनहम 0 एवर्टन 0, और कल का जो आखिरी मुकाबला था कल रात 11 बजे, आर्सेनल के द गनर्स ने फिर से गोलीबारी की संडरलैंड के स्टेडियम ऑफ लाइट में। संडरलैंड 0 आर्सेनल 2, इस मैच में एक पहली पेनाल्टी मिस भी की संडरलैंड, तब जाकर आर्सेनल के ब्रूनो गिमारिस ने पहला गोल स्कोर किया, और आखिर में इंजरी टाइम में बुकायो साका का गोल पेनाल्टी पर। संडरलैंड 0 आर्सेनल 2, बाकी दो मैच आज शाम खेले जाएंगे। सबसे पहले प्रीमियर लीग का पहला मैच आज शाम 5 बजे, कोवेंट्री सिटी वर्सेस ब्राइटन, और आज रात 7:30 बजे Not to miss, किसी भी हालत में 7:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, आज का सबसे बड़ा और धुआंधार मुकाबला। 199वां मैनचेस्टर डर्बी ओल्ड

0: ट्राफोर्ड में, जहां गुदगुदी होगी, कंपकंपी भी होगी और जादू की झप्पी भी होगी। सो मैनचेस्टर डर्बी आज रात 7:30 PM बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी। स्पेन के लालीगा में रियल मैड्रिड इज बैक। यूजे मोरिनो के व्हाइट हाउस ने सिटी राइवल रेयो वालेकानो को 4-1 से हराकर उनका मुंह काला किया। किलियान एम्बापे का एक डबल, अल्वारो कैरेरास एंड जूड बेलिंगम आल्सो ऑन टारगेट। रियल मैड्रिड 4, रेयो वालेकानो 1। बाकी मैचों में ओसासुना की हार हुई, ओसासुना 0 एस्पान्योल 2, एथलेटिक 1 एल्चे 1। और आज रात एफसी बार्सिलोना एवे जाएगा लेवांटे के यहाँ। जर्मनी के बुंडेसलीगा में ऑग्सबर्ग और बायर 04 के बीच मैच ड्रॉ रहा 2-2। बोरुशिया डॉर्टमुंड ने पादेबोन को 3-0 से परास्त किया। फाबियो सिल्वा का एक पहला गोल, फिर एनमेचा का एक डबल फॉर बोरुशिया डॉर्टमुंड, 3-0 से उनकी जीत हुई। एससी फ्रीबर्ग ने बोरुशिया मंचनगढ़बाग को 5-0 से पछाड़ा। होफेनहाइम 2, स्टुटगार्ट 1, माइंस 1, फ्रैंकफर्ट 3 और एफसी कोलोन 1, वर्डर ब्रेमेन 1। इटली के सेरी आ में जेनोआ 1, फ्रोजिनोने 1, अटलांटा 1, कैग्लियारी 2 और एसएस लाजियो तथा एसी मिलान के बीच मैच ड्रॉ रहा 2-2। लाजियो के लिए कैंसिलियरी एंड नोस्लिन ऑन टारगेट, तो एसी मिलान की ओर से मोरेरा का एक डबल। फिर फ्रांस के लीग ए में कल आईएस मोनाको ने एवे जाकर स्ट्रासबर्ग के साथ मैच ड्रॉ किया 1-1। ओसे 1, निस 0, ले हैव्र 0, Angers 0, Lorient 2, Toulouse 2, Paris FC 0, Olympique de Lyon 0. Aaj raat defending champion Paris Saint-Germain ewe jayegi Brest ke maidan pe. Itna sab kuch football ko lekar tennis mein. Umeed ke mutabik Kazakhstan ki Elena Rybakina US Open title jeet gayi. Final mein kal usne Arina Sabalenka ko 6-4, 5-7 aur 6-2 se parast kiya aur saath hi एलेना रायबाकीना विश्व नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। वो ये फाइनल जीत नहीं भी पाती तब भी उनके विगत उनके पिछले मुकाबलों को देखकर वो नंबर 1 पोजीशन पर आ ही जाती है। और कल तो सोने पे सुहागा उसने, एलेना रायबाकीना ने कल अरीना साबालेंका को 2-1 से परास्त कर यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। आज पुरुष वर्ग का महाफाइनल है, यूएसए के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव के बीच। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की स्पेनिश ग्रैंड प्री रेस आज लगने वाली है। लैंडो नोरिस पोल पोजीशन पे आया, आज वो ये रेस पोल पोजीशन से शुरू करेगा। शायद उसका टाइम फिर आ गया। किमी एंटोनेली ने कल केवल दूसरा स्थान लिया। क्रिकेट में आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला होगा। ये पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच। मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा का महाफाइनल ग्रैंड फिनाले आज दिन के 10 बजे से मापू स्थित एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पिछले सीजन की चैंपियन टीम कैंपस अब्रॉड लायंस फिर से फाइनल में पहुंचे हैं। इस बार उनका सामना कॉन्टिनेंटल चीता से है और इस मैच का, इस फाइनल का प्रसारण और इन पर जानकारी RM2 रेडियो मस्ती पर समय समय पर दी जाएगी। सो आज सुबह 10 बजे से ही ICE सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले SSO नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में बिटवीन कैंपस अब्रॉड लायंस एंड कॉन्टिनेंटल चीताज। फुटबॉल में पहला राउंड ड्रॉ करने के बाद लकी वेव्स दूसरे राउंड में हार गए। अफ्रीकन चैंपियंस लीग में कल रात दक्षिण अफ्रीका के ओलांडो पायरेट्स ने लकी वेव्स को 3-1 से परास्त किया। ऐसे में लकी वेव्स इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर द दुदला बीमा सुवेनिया कप के अंतर्गत आज शाम 3:30 PM रोशनोआ फुटबॉल ग्राउंड में रिविया जोरापा के ब्लू एंजल्स लोहा लेंगे बेजिटोंबो फुटबॉल क्लब से। सो भूलेगा नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी आज रात 7:30 PM ओल्ड ट्राफोर्ड में, जो पूरे फुटबॉल जगत की नजरों का केंद्र बना हुआ है, द मैनचेस्टर डर्बी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, और शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: Chillax with Radio Musty.
1: शो की ये संडे का दिन आपके लिए कुछ और भी है, ना सिर्फ वीकेंड का आखिरी दिन है, लेकिन एक छोटा सा रीसेट बटन

0: भी होता है। कल से नया हफ्ता शुरू होगा, नए काम, नई जिम्मेदारियां, नए चैलेंजेस, शायद कुछ नए मौके भी आ सकते हैं। तो आज थोड़ा सा समय या खुद के लिए निकालिए और एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अगले हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या एक छोटी सी चीज कर सकता हूँ। कोई बदलाव जरूरी नहीं है, बड़ा बदलाव जरूरी नहीं, बस एक छोटा सा स्टेप आप ले सकते हैं। किसी से अच्छे से बात करना, किसी पेंडिंग काम को शुरू करना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, या फिर किसी पुरानी नाराजगी को दिल से छोड़ देना। और जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है उन्हें पापा के हवाले कर दीजिए। कभी कभी हम हर चीज़ का जवाब खुद ढूंढते लगते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं। बस आप भरोसा रखिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इट्स योर रिलैक्स रिया के साथ एंजेलिया। नेक्स्ट गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: You're listening to a Radio Masti.
1: चलिए तो इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर रिया टू से बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ दैट यू हैड अ गुड म्यूजिकल टाइम यहाँ पर. सो टेक केयर, बाय बाय, और हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी. हैप्पी संडे सभी को, और गणपति बाप्पा मोरया.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
5: Ghadi mila le ja phajid ke 8 baje ta. सबको की नमस्ते आप प्रणाम ई भोजपुरी समाचार में सबको की स्वागत कर जाता सबसे आगे हमने देश के समाचार संगे शुरू करब जा कमोशस में शादी के लेके आदमी के आकर्षण कमती हुआ था ई पहले निखन नहीं पाटी 2026 के पहला 6 महीना ई सवाल के जवाब दिवेला 2026 के पहला 6 महीना में मॉरिशस गणराज्य में 3431 शादी दर्ज करल रहल ई संख्या अगल बरिस के एही अवधि के मुकाबला में 2.4% कमती भइल शादी में कमती ई सिलसिला ई जो सिलसिला बाटे ई कुछ बरिस से चलते आवता 2023 के बरिस के दिगपत हुआ 8654 गो शादी होल रहा 2024 में 8220 को आर 2025 में यानी के गल बरिस 7715 शादी दर्ज कर गल रहा स्टैटिस्टिक्स वर्सेस अनुमान के अनुमान के मुताबिक एक बरिस लगभग 7490 गो शादी हो सकी यानी के शादी के जोन आकर्षण बा ऊ घटते जाता आदमी कमती से कमती शादी करते जाते वन जा पर ई सब आंकड़ा के पाछे समाज में होत बदलाव के भी दर्शावेला आदमी अब शादी देरी से करत वन जा और ई फैसला पहले से जस्ती व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता यानी कि जन छोकरी वन जा ऊ लोग जस्ती अपन करियर पर आर अपन आत्मनिर्भरता पर जस्ती उ लोग विश्वास रखेलन जा अर्जुन पुरुष होवन जा छोकरा होवन जा उ लोग जस्ती अपन करियर बनाए पर अपन पेशा के सुधारे में घर बनाए में इस सब में समय देवे लंजा तीन दिन ले मॉरिशस बनल रहल दुनिया भर से आल भारतीय मूल के आदमी खातिर एगो केंद्र दू सदी पहले भारत से निकल रहा एगो जहाज ओकर में अपन संगे अपन सपना अपन उम्मीद और एगो समृद्ध विरासत के लेके उ जहाज रवाना होल रहल आज उहे सब प्रवासी के आय होला पीढ़ी और अभी के जो पीढ़ी है जा अलग अलग हिस्सा से मॉरिशस में एकजुट हो लन जा जहाँ पर 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के आदमी के बीच रिश्ता के मजबूत करे के युवा पीढ़ी कारोबार रोजगार के अवसर संस्कृति या भारतीय भाषा के विरासत के आगे बढ़ाए की जैसा मुद्दा पर चर्चा भइल 150 गो से जस्ती प्रतिनिधि के भागीदारी होला ई तीन दिन के सम्मेलन में प्रवासन के भूमिका और अलग अलग समुदाय के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर देवल गल आज इस सम्मेलन के अंतिम दिन है जहाँ पर

आज के ई अंतिम दिन में दिवंगत धनदेव बहादुर के विशेष श्रद्धांजलि देवल जाए, जेकर बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दिन के 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह के आयोजन हुई। दूसरा समाचार में विजन 2050 की शुरू होइला के करीब 9 महीना बाद अब ई अमल में आने की तैयारी शुरू हो गल बाटे। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव आने में अहम भूमिका निभाए होला बाटे। ई से नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू करल जाए, एकर अमल पर नजर रखे खातिर नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल भी बनावल जाए। एकर अलावा 2027 से 2030 के अवधि खातिर 10-point इम्प्लीमेंटेशन प्लान लागू करल जाए। एकर संगे नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट के भी बनावल जाए। एकर मकसद है अलग अलग मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल कायम करे के और संगे ही दूसर संबंधित पक्ष संगे भी समन्वय मजबूत करे के। बिजली के बारे में बताया ला जाए तो बिजली के बिल कमती करे के और उपभोक्ता लोग के ऊर्जा के मामला में जस्ती आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य से लील एनर्जी ई सप्ताह अपन नवा गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पार्क लॉन्च कर ली बाटे। लील एनर्जी के मैनेजर लोइक सूर्य के अनुसार ई पहल मॉरिशस के परिवार के अपन सौर ऊर्जा अपन से बनाए के और उकर भंडारण करे खातिर प्रोत्साहित करे के सरकार के नीति के अनुरूप बाटे। एकर खातिर इस्तेमाल करे होला अलग अलग उपकरण, एक ही गो टेक्निकी प्रणाली के तहत काम करे खातिर तैयार करल जाए। परिवार के सरकार देने से 25% लेके सब्सिडी मिले सकी और जोन स्थापना के कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपया ले है। सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत देवल जाता, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता। दूसरा देश के समाचार में यूक्रेन में रशिया दिन से करगल हमला में कमती से कमती 11 जना के मौत हो गल बाटे। ई बीच यूक्रेनियन डिफेंस फोर्स बताइले बाटे कि रात के वक्त रशिया के समारा इलाका में एगो सिंथेटिक रबर प्लांट पर ड्रोन हमला करगल। ई फैक्ट्री रशियन मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सामान की आपूर्ति करेला। ई जानकारी ऐसा समय में सामने आल जब यूक्रेन और रशिया के बीच हमला और जवाबी कार्रवाई जारी बाटे। तेकरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। अभी 8:05 हुआ था।

0: the weather broadcast with winners.
1: Only two winners.
2: आम हालत हमारे इलाके के ऊपर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद में उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाने की संभावना है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। रात में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र की स्थिति सामान्य से कुछ उग्र रहेगी और दक्षिणी दिशा से करीब 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर औसत से थोड़ा ऊपर रहेगा यानी 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर।
3: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Les 5 kg de croquettes Wagyu Kibble 10% gratuit à 572,95 € et le bol antidérapant de 14 cm à 119,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
4: On est tous Winners.
5: Timeless Tarka.
6: RM2.
5: Timeless Tarka.

0: US Tarka.
1: RM2.
2: Once again, a good morning सभी को. अभी तक हम ही हैं यहाँ पर और घड़ी आप मिलाते चलिए 8:15 समय हो चला है for your timeless तर्क का. संडे मॉर्निंग का मूड एकदम सेट है. सूरज भी पूरी तरह चमक रहा है. मौसम भी कह रहा है कि आज का दिन खूबसूरत होने वाला है और ऊपर से बप्पा का फेस्टिव माहौल. चलिए हमने शुरुआत की है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही पायस गाने के साथ. तो हमारे साथ मिलकर आप बोलिए गणपति बप्पा पापा का नाम और म्यूजिक एनर्जी से बेटर संडे मॉर्निंग कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है. गणेश चतुर्थी हम मंगलवार को मनाएंगे लेकिन सेलिब्रेशंस तो दिल में अभी से शुरू हो चुके हैं. कब से शुरू हो चुके हैं. घरों में तैयारियां चल रही है. पूजा की प्लानिंग सजावट प्रसाद और सबसे ज्यादा वो एक्साइटमेंट जब पापा घर में आती है और पूरा माहौल ही बदल जाता है. और आज का टाइम लिस्टर का भी इसी फेस्टिव एनर्जी के साथ चलेगा. कुछ गाने आपको हम नचाएंगे कुछ गाने मूड बनाएंगे और यस वी हैव गॉट सम रोमांटिक ट्रैक्स एज वेल जो आपके दिल को दिल में रोमांस जरूर याद दिलाएंगे. तो चलिए यहाँ पर हम संडे को और भी खूबसूरत बनाते हैं इन खूबसूरत गानों के साथ. नेक्स्ट वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब तक है जान न जाता है हमारे सभी लिसनर्स के नाम.
0: Timeless Tarka.
1: RM2.
0: Timeless Tarka.

0: to Radio Musty.
1: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité. Telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203-84-70 ou visitez notre site web sicom.mu.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
1: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
3: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और थ्वासिसाई.mu पर भी.
0: RM2 Radio.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन हर चीज के पीछे

कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कभी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, कभी इंतजार लंबा हो जाता है, और कभी लगता है कि हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन शायद पापा हमें सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना

0: без тарка.
1: RM2.
2: राइट चलिए आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजा है व्हाट्सएप की ओर हम पहले देखते हैं एंड नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करती है आप मामा उमा के नाम जो आज 65 years की हो गई

0: Yeah, so happy birthday, Mama Uma ko bahut sara pyar and good wishes coming from my little sister Meenu, jinka aaj birthday hai. So Mama ka bhi janmadin hai, behen ka bhi janmadin hai. So happy birthday dono ko. Best wishes coming from badi behen ki granddaughter hai Pooja Priya, Ritika aur grandson hai Pavan Goodland se hai. And also sabhi ko wish karte hai happy Ganesh Chaturthi. चलिए बप्पा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बनी रहे, बस हम यही विश करते हैं गणपति बप्पा मोरिया एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको.
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

0: देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है आशिता, तो चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। तीन दिनों दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक समृद्ध विरासत लेकर रवाना हुए थे। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मॉरिशस में एकजुट हुई हैं, जहां 16वें गोपी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली इस तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया। आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। विजन 2050 के शुरू किए जाने के करीब 9 महीने बाद अब इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अमल पर नजर रखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 से 2030 की अवधि के लिए 10-point इम्प्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है, साथ ही दूसरे संबंधित पक्षों के साथ समन्वय मजबूत करना भी है। बिजली का बिल कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लील एनर्जी ने इस सप्ताह अपना नया गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पैक लॉन्च किया है। लील एनर्जी के मैनेजर के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है और स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपए तक की ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोगों को चोट लगी है। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायलों में एक 18 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिसे गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रोएन एंड कैन के बीच चल रही इस ट्रेन में 186 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री फिलिप तबाहो ने बताया कि शुक्रवार शाम क्लेओ के पास हुए हादसे की जगह पर 140 दमकल कर्मी और अन्य आपातकाल टीमों को तैनात किया गया। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों में इसे साबोटाज की

0: संभावित घटना बताया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हताहतों से निपटने की आपातकाल योजना सक्रिय कर दी है। ये हादसा स्थानीय समयानुसार रात करीब 8 बजे हुआ। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। एक शोक समाचार सुनिए। एसएसआरओ जुबॉय में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सावन कुमार बिंबाजी जिन्हें दिलाबाओ के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3 बजे इनके बेटे मिवेद कुमार बिंबाजी के घर जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजवेल की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Radio Masti.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: Good morning. Sunday आ गया. तो सबसे पहले बताइए आज का क्या प्लान है? घर पे फुल चिल करना है, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, या फिर कुछ ना कुछ ही प्लान नहीं है, देखने वाला प्लान है. एंड वैसे कल था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड का ग्रैंड फिनाले. अगर आपने अटेंड किया था तो हमें बताइए कि कैसा रहा इवेंट, ग्लैमर, फैशन, परफॉर्मेंसेस, सब कैसा लगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गेम टिकट्स का कुछ तो लाभ हुआ ना. तो अपने मैसेज भेजिए और अपने संडे किस मूड में है, चिल है, थ्रिल या फुल ऑन पार्टी. आज का मॉर्निंग सेशन आपके साथ मैं बताएगी नर्मनी. तो फ़ोन उठाइए और हमें बताइए कि आज का क्या प्लान है. एंड वैसे कल था वर्ल्ड माइंडफुलनेस डे. मैं सोच रही थी कि माइंडफुलनेस तो हर दिन हमें मनानी चाहिए. तो अभी के लिए गानों के जरिए आपको एंटरटेन करते हैं और संडे को बनाते हैं फन डे.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

Hey, hey, hey.

0: एस तड़का
1: RM2
2: नमस्कार 22 मिनट से हुए हैं और एक स्पेशल डे हम मना रहे हैं 13 सितंबर को यानी कि आज और वो है इंटरनेशनल चॉकलेट डे। एंड वैसे चॉकलेट के लिए भी क्या हमें एक स्पेशल डे चाहिए होता है। चॉकलेट तो हर मूड का सोल्यूशन है, मूड ऑफ चॉकलेट, स्ट्रेस हो चॉकलेट, कोई खुशखबरी अरे फिर से चॉकलेट और बिना किसी वजह के ऑब्वियसली चॉकलेट। तो आज बताइए आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है और वो क्लासिक चाइल्डहुड फेवरेट जो आज भी देख कर हैप्पीनेस आपका एक्टिवेट होता है। एंड ऑनेस्टली बोले तो लाइफ होती है शॉर्ट, चॉकलेट पहले खा लो कैलोरीज बाद में काउंट करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट गाना डांस फ्लोर पर आपको आना है हमारे साथ, तो साथ में वाइब करते हैं RM2 वीडियो मस्ती बड़ी
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: इन्हें अभी टाइम हो गया है जाने के लिए कि होरोस्कोप में आज क्या है, आपका लकी कलर नंबर कौन सा है. तो शुरुआत करते हैं वेदर.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज एनर्जी फुल चार्ज्ड रहेगी. जो काम पेंडिंग था उसको आज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त से बोल के कंप्लीट कर दीजिए. लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: संडे है तो थोड़ा रिलैक्स करना तो बनता है, लेकिन शॉपिंग के नाम पे वॉलेट को इमोशनल डैमेज मत कर देना. लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपका मूड एकदम प्लेलिस्ट जैसा, कभी रोमांटिक कभी एनर्जेटिक. बस ओवरथिंकिंग को यानी कि ओवरथिंकिंग का स्किप बटन दबा दीजिए. लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: फैमिली और लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा आज, दिल के सुनिए. लेकिन अननेसेसरी ड्रामा जो है उनसे आप डिस्टेंस रखिए. लकी कलर आज आपका है व्हाइट और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: स्पॉटलाइट आज आपकी तरफ ही है, कॉन्फिडेंस को आप हाई रखिए, एटीट्यूड नहीं. क्योंकि असली हीरो का इंट्रोडक्शन किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि हीरो तो खुद ब खुद बोलता है. लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 8.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज परफेक्शन के चक्कर में संडे को खराब मत कीजिए. जो हो रहा है होने दीजिए, थोड़ा चलता है भी जरूरी होता है. लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 4.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: रोमांस या फ्रेंडशिप में गुड वाइब्स है, किसी स्पेशल पर्सन का मैसेज भी आ सकता है. फोन ना साइलेंट पे मत रखना. लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, अगर दिल कह रहा है ये आइडिया सही है तो गिव इट अ शॉट. लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना है. लकी कलर है मरून और नंबर है 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: एडवेंचर मूड आपका ऑन है, छोटा सा आउटिंग लॉन्ग ड्राइव या फिर स्पॉन्टेनियस प्लान आपका मूड बना सकता है. लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: वर्क मूड को थोड़ा पॉज दीजिए, आज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा जरूरी है अपनी बैटरी को रिचार्ज करना. लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन या फिर अनएक्सपेक्टेड आइडिया मिल सकता है, माइंड को आप ओपन रखिए. संडे सरप्राइज दे सकता है. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है आपका 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: दिल आज थोड़ा फिल्मी है, मूड में रहेगा. म्यूजिक मेमोरीज और मी टाइम के लिए परफेक्ट दिन है. बस अपने एक्स को मैसेज करने से पहले 2 बार सोच लेना. लकी कलर आपका है सिल्वर और नंबर है 7.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: RS तड़का
1: RM2
2: Yes, it's 9:42 और आपके मैसेजेस आ रहे हैं सुबह की वो स्वीट चाय की तरह। चेतन मनसुख जी ने लिखा है, धरती पर बारिश की बूंदे बरसे और आप के ऊपर अपनों का प्यार बरसे, क्या बात है, आप खुशी के लिए नहीं खुशी आपके लिए तरसे। क्या लिखा है आपने, आप विश कर रहे हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट सॉन्ग आप खास मान रहे हैं सभी मनसुख फैमिली के लिए। फ्लैग से वी हैव जना जी जो साथ ही दे रही हैं, एज यूजुअल गाना मांग रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, रीमा जनिता शेषतांशिनी सिल्विया यूवी कृषि सुसरन फैमिली जो कि फ्लैग से है। एंड वी ऑल्सो हैव हेलो निलमणि जी, आपका नाम है प्रशील और आप विश कर रहे हैं सभी को वेरी हैप्पी संडे और डेडिकेट कर रहे हैं प्यार सा गाना अपनी पत्नी के लिए और वो है दरखास्त फ्रॉम शिवाय मूवी, तो हम ढूंढ कर चलाएंगे जरूर आपके लिए। अभी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग बॉम्बे टॉकीज आपके लिए कैलाश खेर की आवाज में, तो साथ में वाइब करते हैं आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: टाइमलेस तड़का
1: आरएम2
0: टाइमलेस तड़का

0: कभी कभी ना गानों से भी बड़े इंटरेस्टिंग अतरंगी आइडियाज मिल जाते हैं। जैसे एक लाइन है, जब लाल हो लोहा तब मार हथौड़ा, मतलब अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है, जब वक्त सही हो तब सोचने में ज्यादा टाइम नहीं, बस एक्शन ले लेनी चाहिए। तो आज संडे है, क्या पता आज ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, बस रेडी रहना, क्योंकि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा चलाना तो बनता है। और हाँ, अपने फेवरेट गाने की वो कौन सी लाइन है जो आपको लाइफ में कुछ करने की मोटिवेशन देती है, लेट अस नो और शेयर करेंगे साथ में नेक्स्ट आवर में आपकी टाइमलेस तड़के में विद मी नीलमणि। और हम जो वीडियो मस्ती पर ही अभी के लिए नेक्स्ट गाना बोलो बोलो आपके नाम करते हैं
1: टाइमलेस तड़का।
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: बनाओ घी।
1: रेडियो मस्ती
0: नॉर्थ साउथ
1: 103.5
0: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4
0: सेंटर
1: 99.4
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सुबह के 10 बज रहे हैं

0: चलिए बिगिनी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्शिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिजली का बिल कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिली एनर्जी ने इस सप्ताह अपना नया गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पार्क लॉन्च किया है। लिल एनर्जी के मैनेजर के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपये तक है। ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। इसके अलावा रिजवी स्थित एंटोमोलॉजी डिवीजन में अब एक नया एक्सरे इराडिएटर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों के नर कीटों को प्रकृति में छोड़ने से पहले निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। ये प्रक्रिया स्टेरिल इंसेक्ट टेक्निक के तहत की जाएगी। ये नई टेक्निक फलों की मक्खियों जैसे कीटों से निपटने के इस तरीके को और मजबूत करेगी और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद करेगी। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल चाहते हैं कि मॉरिशस इस टेक्निक के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक उदाहरण बने। क्या मॉरिशस के लोगों में शादी का आकर्षण अब भी पहले जैसा है? 2026 के पहले 6 महीनों में मॉरिशस गणराज्य में 3,431 शादियां दर्ज की गई। ये संख्या पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2.4% कम है। शादियों में कमी का ये सिलसिला कुछ सालों से जारी है। 2023 में 8,654, 2024 में 8,220 और 2025 में 7,715 शादियां दर्ज की गई थी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार के मुताबिक इस साल करीब 7,490 शादियां हो सकती हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे समाज में आ रहा एक बदलाव भी दिखाई देता है। लोग अब शादी देर से कर रहे हैं और ये फैसला पहले से ज्यादा व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में एक यात्री फेरी के समुद्र में निकट में फंसने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 102 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक वर्गो ट्रांसपोर्ट 8 नाम की इस फेरी में 243 लोग सवार थे और खराब मौसम के बीच जहाज से संपर्क टूट गया। फेरी सुराबाया से दक्षिण कालिम नांत के बंजरसानी शहर जा रही थी और रविवार तड़के यानी कि आज करीब 2 बजे बंजर मासिन से 150 किलोमीटर दक्षिण में आखिरी बार इसकी जानकारी मिली थी। बाकी यात्रियों की तलाश जारी है। खोज और बचाव जहाज़ों के साथ एक हेलीकॉप्टर भी अभियान में लगाया गया है, जबकि आसपास के सभी जहाज़ों को यात्रियों के किसी भी संकेत की सूचना देने के लिए सतर्क किया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2
2: वैसे लॉटरी हमारी तो लग गई है क्योंकि आप कनेक्ट जो हो हमारे साथ आरएम टू रेडियो मस्ती पर इस आओ में भी लॉट्स ऑफ फन होने वाला है टाइमलेस गाने होंगे आपके नाम तो चलिए लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक
0: टाइमलेस तड़का
1: आरएम टू
0: टाइमलेस तड़का

0: Welcome to Radio Musti. Get ready, Mauritius. The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams, Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. And now it's time for the big finale. Continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions होने वाला है on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground Mapu. Match starts at 10 AM. So join us live at the ground for the day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers. All while Radio Musti goes live as from 11 to 2:30 PM. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Musti Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale.
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ. यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स. जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग. फोन नंबर 4132651.
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: to Radio Musti.
1: À l'occasion Ganesh Chaturthi, Fresh Flora Malini Fleuris Plantée importateur fleurs peut offrir un discount spécial l'eau se ban guirlande, bouquet et fleurs dans tout ban magasin à travers l'île. L'Almaty, Flak Cœur de Ville, Goodlands Cœur de Ville, Royal Road Goodlands, Rivière du Rempart, Flak Retail Park, Bel Air et Richter Mall. Pour plus renseignements, contactez-nous le 57 96 92 24 57 96 92 24. गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ. यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स. जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात वेजनी सेंट्रल फ्लैग. फोन नंबर 4132651.
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2।
2: वैसे चर्चे तो बहुत हो रहे हैं आजकल, लेकिन सबसे ज़रूरी बात वो है जो आप डीप इनसाइड जानते हो, आप खुद क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपने आप से क्या राय है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सो लिसन टू द नॉइज, लेकिन अपनी आवाज़ को ना ट्रस्ट कीजिए, दूसरों के चक्कर में अपने आप को मत खोने दो, जिंदगी आपकी है। तो अभी जल्द ही फैशन टिप्स ऑन द वे है आपके नाम, लेकिन अभी के लिए ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आफ्टर दैट वी विल बी बैक विद सम गुड म्यूजिक आपके इस संडे को और भी अमेजिंग बनाने के लिए।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुरी स्ट्रीट एंड औकात वेजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: यस, टाइम हो चला है संडे फैशन टिप का। इस बार अगर ट्रेडिशनल लुक कर रहे हैं तो कंफर्ट के साथ एलिगेंस रखिए। लेडीज के लिए ब्यूटीफुल साड़ी, कुर्ता सेट या फिर एक अनारकली, एक स्टेटमेंट झुमका के साथ सिंपल लेकिन ग्रेसफुल। हमारे जो मेल्स के लिए है उनके लिए वेल फिटेड कुर्ता, एक अच्छी सी नेहरू जैकेट आपको वो फेस्टिव वाइब इंस्टेंटली दे सकता है। और एक लिटिल टिप है कि ओवर एक्सेसराइज मत कीजिए, एक स्टेटमेंट पीस काफ़ी होता है, लेट द आउटफिट स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो संडे है, वार्डरोब चेक कर लीजिए, आइनिंग कर लीजिए, एक्सेसरीज रेडी रखिए, क्योंकि गणपति बाप्पा के वेलकम के लिए भी एकदम फेस्टिव लुक होना चाहिए। तो चलिए वो ही करते हैं आपके आरम टू वीडियो मस्ती के साथ।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: पट दे तूड़ा
1: टाइमलेस तड़का RM2।
2: वैसे मस्ती वाला मस्ताना दिन है, अगर अभी निकले हो ठंडी हवा लेने या फिर लॉन्ग ड्राइव पर टू द सी साइड, तो एंजॉय कीजिए नाइस सिलेक्शन को जो अभी अभी चल रहा है आपके टाइमलेस तड़के में विद नर्मनी। एंड ऑल्सो आपके जो मैसेजेस है हम फिर से पढ़ने वाले हैं उनको, तो अगर आपको कुछ ऐड करना है, गाने ऐड करने हैं, मैसेजेस ऐड करने हैं, यू मोस्ट वेलकम G549912294 पर हो जाए आप लोगों के मैसेजेस।
1: Timeless Tadka.
3: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: Mañanas Tadka
1: RM2
2: एंड ये सब के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं सीपिंग साउंड. थैंक यू कनेक्टेड रहने के लिए. वी हैव संगीता जी मुंह ब्लॉश से गाना मांग रहे हैं. मनीष, श्रिया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, रिटिना और नितिन के लिए. रोजो हाव रानी जी जिन्होंने मांगे हैं स्वीट सा गाना अपने हस्बैंड राजा के लिए. ऐशा जी ने गुड मॉर्निंग विशेज भेजे हैं. बुनाकर से वी हैव श्वेता हुकुम जी जो डेडिकेट करना चाहते हैं गाना सैयारा अपने हस्बैंड रोशन के लिए. एंड ऑल्सो मैसेजेस में वी रिसीव्ड सॉन्ग फॉर कृष्णा सुशीला जो कि लंदन में है. यू वरियान चांद आनंद के लिए भी गाना मैसेजेस के जरिए हमें मिला. अरे अपना नाम भी ऐड कर दिया करो यार, क्यों हिचकिचाते हो? ऐड करना नेक्स्ट टाइम जब आप मैसेजेस कर रहे हैं. हमें भी जानना है कि आप कौन हैं और आपके लव्ड वंस को भी आई थिंक पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन विशेज भेज रहा है, कौन गाने मांग रहे हैं. तो जाए नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल दोस जो कनेक्टेड है आरम जू वेडियो मस्ती के साथ. मस्ती भरा गाना आपको वाइब कराने के लिए.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का.

0: रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: रेडियो मस्ती।

इसी खूबसूरत गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी नीलमणि टू साइन ऑफ और पूनम के आने का टाइम हो गया. यस, हमारी स्वीट हार्ट सी आर जे आ रही है तो यहीं पर आप रहना कनेक्टेड. सी यू सून, टेक केयर, हैव अ ग्रेट संडे विद योर आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है सबका। दो तीन दिनों तक मॉरीशस बना दुनिया भर से आए भारतीय

0: मूल के लोगों के मिलन का केंद्र, विचारों का आदान प्रदान, अपनी साझा विरासत और पहचान पर चर्चा, नई पीढ़ी की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन। गोपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर जोड़ा। अब ये सम्मेलन यादों, सम्मान और उपलब्धियों के साथ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 16वें गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और जैसे कि आपको बताया गया है, 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया। आज समापन समारोह कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे हो रहा है। विजन 2050 के शुरू किए जाने के करीब 9 महीने बाद अब इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अमल पर नजर रखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 से 2030 की अवधि के लिए 10-पॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है, साथ ही दूसरे संबंधित पक्षों के साथ भी समन्वय मजबूत करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मंत्री ज्योति जितन ने कहा कि इस दिशा में काम आज से ही शुरू हो रहा है। उन्होंने विजन 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाना है। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बजट 2026-2027 में इस एजेंसी की स्थापना के लिए पहले ही $200 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है। परिषद मंत्रिपरिषद ने कल 9 विधेयकों को पेश करने की मंजूरी दे दी। इन विधेयकों के जरिए नई एजेंसी का गठन किया जाएगा और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC के मौजूदा कानूनी ढांचे को समाप्त किया जाएगा। लेकिन FCC की जगह NCA का आना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि नई एजेंसी को कितने अधिकार दिए जाएंगे। NCA को फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर जटिल तथा संगठित अपराध से जुड़ी कुछ जांचें पुलिस से अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। ये 9 विधेयक अब नेशनल असेंबली में प्रकाशित कर दिए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में एक यात्री फेरी के समुद्र में संकट में फंसने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 102 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक वर्गो ट्रांसपोर्ट 8 नाम की इस फेरी में 243 लोग सवार थे और खराब मौसम के बीच जहाज से संपर्क टूट गया। फेरी सुराबाया से दक्षिण कालिमतान के बंजमासिन शहर जा रही थी और रविवार तड़के करीब 2 बजे बंजमासिन से 150 किलोमीटर दक्षिण में आखिरी बार इसकी जानकारी मिली थी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: RM2 Radio Musti.
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को. सुबह के 11:10 हो चुके हैं. आरएम2 रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है. पहले एक प्यारा सा धन्यवाद देना चाहूंगी रिया को, जो कि सुबह 5 से आपके साथ थे. उसके बाद आई थी हमारी आरजी नीलमणि, जो वो भी आपके साथ रहे. और अब मुझे ड्यूटी दी गई है. मैं हूँ आपके साथ पूनम, आरएम2 रेडियो मस्ती, जो कि 24 आपके साथ रहता है, हर मोमेंट को कवर करता है. और आज एक और मोमेंट है. कई

0: लोगों के लिए बहुत ही प्यारा टाइम है। आर एम टू रेडियो मस्ती के जो पूरी टीम है इस समय SSR नेशनल ग्राउंड मापू में जुड़ी हुई है, जहां होने जा रहा है क्रिकेट। और क्रिकेट का जो माहौल है पूरी तरीके से बन चुका है, वहां लोग आ चुके हैं और वहां हमारी प्यारी आरजे परी है। तो चलिए जानते हैं इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है, सीधा लेके चलते हैं आपको परी के पास। है परी,
1: गुड मॉर्निंग पूनम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। बिल्कुल आपने सही कहा, SSR नेशनल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड मापू हम पहुंच गए हैं, जहां पर वी आर एंजॉयिंग द ग्रैंड फिनाले। यस, ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्राविगेंजा सीजन 4, यानी कि ये जो है चौथा सीजन है और आज है ग्रैंड फिनाले, जहां पर हम देख रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आप ये सब सुन ही रहे हैं, यहाँ पर जो मस्ती हो रही है, जो दो टीम्स के बीच आज घमासान होने वाला है, जहां पर इतने सारे लोग आए हैं यहां पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए। एंड हमारी RM2 रेडियो मस्ती टीम, वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल 2:30 PM, दिन के 2:30 बजे तक हम हैं यहां पर। और हम देख रहे हैं कि दो टीम्स यहां पर मुकाबला तो चल रहा है और लग रहा है कि चौके छक्के यहां पर लगने वाले हैं। ऑल्सो वी सी यहां पर बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो भी आए हुए हैं टू सपोर्ट द क्रिकेट एंड ऑफकोर्स टू सपोर्ट द टीम्स। साथ ही यहां पर मस्ती हो रही है और फुल ऑन हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर पा रहे हैं। खाना पीना म्यूजिक सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। एंड आई मस्ट से दैट मॉरिशस में होते हुए इंडिया वाली फील आ रही है। सो हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर आप यहाँ पर कहीं आस पास है एट मापू क्रिकेट ग्राउंड, नेशनल क्रिकेट ग्राउंड, SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड, आप यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज टुडे इट्स द ग्रैंड फिनाले। दो टीम्स के बीच हो रहा है घमासान, कौन सी टीम जीतती है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू हैव सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स। कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाएंगे यहाँ से। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर होने वाले हैं बहुत सारे जो वाउचर्स हैं, यानी कि गिफ्ट वाउचर्स, जो यहाँ पर लोग आए हैं उनके साथ हम कुछ गेम्स करेंगे, उनके उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गिव देम अ वंडरफुल तोहफे एज वेल। सो अभी के लिए तो हम हैं यहाँ से लाइव एंड वी आर गोइंग टू गिव यू लाइव अपडेट्स ऑफ द क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्राविगेंजा सीजन 4 द ग्रैंड फिनाले। RM2 रेडियो मस्ती टीम लाइव, स्टे कनेक्टेड, गुड म्यूजिक आपके लिए।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Sirk Zavata à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Sirk Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux. Avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 94 13.
3: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
5: So well, ladies and gentlemen, grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4, जहां पर इस बार मुकाबला हो रहा है दो टीमों के बीच में. And let me tell you that ये जो मैच है, क्रिकेट मैच है, it is organized by Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and sponsored by MYOP. ये जो thrilling season है, इसकी

शुरुआत हुई 1st of August से एंड टुडे वी आर विटनेसिंग द ग्रैंड फिनाले जहां पर दो टीम्स के बीच हो रहा है एक घमासान। जैसे हमने कहा कि आज चौको छक्कों की बारिश होने वाली है एंड साथ में हम देख रहे हैं दैट एक्साइटमेंट इज सुपर हाई। SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड से वी आर लाइव। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप भी इस क्रिकेट मैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो यू कैन कम हियर 2:30 बजे तक, यानी कि 2:30 तक हमारी टीम जो है वो यहाँ पर लाइव होने वाली है। साथ ही वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है एंड ऑल्सो वी आर सीइंग दैट बच्चे बड़े सब यहाँ पर आए हैं, काफी मस्ती हो रही है। साथ ही साथ क्रिकेट का जो क्रेज है वो हम एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर खाना पीना तो नॉन स्टॉप चल रहा है, जहाँ पर गर्मा गर्म स्नैक्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही जैसे हमने कहा कि वी आर गोइंग टू हैव सम इंटरेस्टिंग गेम्स एज वेल, सो वी आर गोइंग टू गिव अवे सम वाउचर्स। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, उनके साथ सवाल जवाबों का गेम होने वाला है और उसके बाद इंटरेस्टिंग वाउचर्स उनको मिलने वाले हैं। सो वेल, अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा, जहां पर season 4 यानी कि 3 seasons तो हमने विटनेस किए थे हम खुद थे यहां पर लाइव एंड नाउ इट्स द 4th season जहां पर हम देख रहे हैं इतने सारे लोग यहां पर आए हुए हैं, सभी बड़े भी यहां पर बच्चे बने हुए हैं। और जैसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो जब आप देख रहे हैं कि उस टीम का जो प्रदर्शन है एकदम मस्त हो रहा है, यानी कि चौके छक्के लगते हैं या फिर किसी की विकेट जाती है, सो ये एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट है। एंड इफ यू फॉलो क्रिकेट, इफ यू लाइक क्रिकेट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इवन इफ यू डोंट फॉलो, आप यहां पर आकर ये जो हैप्पी मोमेंट्स है इन्हें आप कैप्चर कर सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट हमारी जो रेडियो मस्ती टीम है, RM2 रेडियो मस्ती टीम, वी आर लाइव। एंड साथ ही यहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि भाई इन्हें कैसा लग रहा है यहां पर, कौन सी टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं एंड क्या होने वाला है एट द एंड। साथ ही यहाँ पर अरविंद भी है, इनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप है हमारे साथ इस वक्त ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल 2:30 PM। एक बार फिर आपको याद दिला दे, SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू, आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्रिकेट, यस क्रिकेट द ग्रैंड फिनाले, आज हम यहाँ पर आए हैं इसी ग्रैंड फिनाले को विटनेस करने के लिए। सो वेल थोड़ी ही देर में कुछ और अपडेट्स, स्टे वेल कनेक्टेड।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। RM2
0: रेडियो मस्ती। RM2 Radio Mustache.

0: RM2 Radio Masti.
1: चलिए गड्डी के साथ हम भी यहाँ पहुंच गए हैं फॉर दी फाइनल. और परी अभी ये मैच काफी सीरियस मोड में है. दे हैव स्कोर्ड 105 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स. तो कॉन्टिनेंटल चीताज 9 विकेट्स ले चुके हैं. दे आर इन वेरी गुड मूड. 105 इट्स नॉट ए बिग टोटल और 9 विकेट. तो लगता है कि ये मैच आज ज्यादा समय नहीं लेगा. 105 इज रीजनेबल टोटल. लेकिन अभी मुझे बताया गया कि द बैट्समैन इन देयर बहुत खतरनाक बैट्समैन है. उसको निकालना मुश्किल होता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो 50 भी पार कर चुका है. इट्स आई गेस इट्स ओवर राइट. नहीं नहीं नहीं नॉट येट. तो लेट्स वेट. देखेंगे ये मैच क्या होगा. आपको बता रहे कि ये टूर्नामेंट जब शुरू हुई थी सो इसमें एक के बाद एक मैच हुए, राउंड रॉबिन मैच. और अभी स्कोर बदला है वहां पर. इट्स 115 Let me check. यहाँ एक बड़ा सा स्कोर बोर्ड लगा 112. तो ये लास्ट विकेट बहुत ही जरूरी है क्योंकि 112 रन के बाद जो भी रन आएंगे बोनस, और अगर विकेट गिरा तो गए काम से.
2: ये तो है. और अरविंद हम ये भी जानते हैं कि हम पिछले 3 सीजन से यहाँ पर आ रहे हैं. नाउ इट्स द 4th सीजन. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो लोगों का क्रेज है फॉर क्रिकेट ये भी बढ़ते जा रहा है. साथ ही आज तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैच एक्साइटिंग तो है ही, साथ ही

0: साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है, एंड ऑफ कोर्स वी सी दैट छोटे बड़े बच्चे सब यहाँ पर आए हुए हैं एंजॉयिंग द क्रिकेट।
1: और यहाँ पर जो ट्रॉफीज लगे हुए हैं उनको देखकर लगता है कि लाइक द विनिंग ट्रॉफी इज ग्रेट। ये भी है कि आई कैन सी दैट न केवल इंडिया से, मॉरिशस से, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, आई कैन सी साउथ अफ्रीका, वहाँ के भी प्लेयर्स यहाँ पर हैं और उनके जो एम्बेसीज हैं दे आर हियर टू प्रमोट क्रिकेट। और अभी थोड़ी देर बाद हम जब प्रेसिडेंट से बात करेंगे, ये बताना जरूरी है कि दिस इज अ वेरी स्पेशल एडिशन, क्योंकि इसी साल इसी

0: volume 2.
1: Radio Musti.
2: And well, live from SSR National Cricket Ground, Mapu, हमारी टीम यानी कि रेडियो मस्ती टीम है यहाँ पर और हो रही है loads of मस्ती. साथ ही हम देख रहे हैं that excitement is super high. And for now, यहाँ पर जो first innings है ये तो complete हो चुकी है. And थोड़ी ही देर में भी I'll tell you the scores क्या है. साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर we have loads of people. Hello जी, आपका नाम बताएं हमें. Hello.
3: हेलो,
2: आपका नाम?
3: अल्पा.
2: अल्पा जी, आप यहाँ पर आई है क्रिकेट देखने. इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम?
3: यस, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम सो एक्साइटेड. लाइक सुबह जल्दी उठ के, लाइक यू नो, आई सेड के पहले जल्दी से लाइक वी शुड गो बिकॉज एवरी टाइम वी सी इट ऑन स्क्रीन, तो लाइव परफॉर्मेंस पहली बार है.
2: और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा.
2: आपको लग रहा है कि आप वर्सेस में है या फिर इंडिया में है, क्या फील आ रही है?
3: ऐसे लग रहा है इंडिया में है.
2: बिल्कुल. सो अभी के लिए आप कौन सी टीम, किसी टीम को सपोर्ट कर रही है या I'm here for good cricket.
3: आज मैं न्यूट्रल रहूंगी.
2: ओके, आप न्यूट्रल रहेंगे. ओके, सो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय. साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर खाना पीना है. आपने खाया कुछ?
3: यस, खाया. बहुत अच्छी तरह से. एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. हॉस्पिटैलिटी आल्सो इज ग्रेट.
2: थैंक यू सो मच अल्पा जी. थैंक यू सो. एंजॉय द क्रिकेट. एंड यहाँ पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को क्रिकेट के लिए, क्या यहाँ पर आ सकते हैं या फिर हाउ इज द फीलिंग?
3: Yeah, the feeling is so good. I think that they should come and watch the cricket over here. Like,
2: so that's really nice. Thank you so much, Alpa ji. चलिए, so यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि आना चाहिए, क्रिकेट को enjoy करना चाहिए. साथ ही यहाँ पर we have Anupam as well. Hello, Anupam, आप कैसे हैं?
4: Hi, I'm good, Pari. How are you?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. देखिए, खाना पीना तो जहाँ होता है हमें पता है कि मस्त होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर आज क्रिकेट का जो फन है वो भी हम देख रहे हैं. So आप क्या कहेंगे?
4: क्रिकेट का आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 आज यहां पे चल रहा है एसएसआर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में. और आप देख सकते हो कि पिछली बार से जो यहां पे जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही बड़ी तादाद में है और इतने सारे लोग यहां पे आज मौजूद हैं दोनों ही टीम्स को सपोर्ट करने के लिए. यदि हम बात करें कॉन्टिनेंटल चीताज और कैंपस अब्रॉड लॉयंस की, तो दोनों ही टीमें के जो मैं कहूंगा इनके सपोर्टर्स हैं बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं. और इफ यू आर लिसनिंग राइट नाउ टू RM2, आप भी यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए कि फर्स्ट इनिंग हो चुकी है और फर्स्ट इनिंग बड़ी कमाल की रही है. यदि हम स्कोर की बात करें तो 122 रन बना लिए 10 विकेट पे. और फिर भी 17.5 ओवर्स में इट इज ऑल आउट बाय यू नो कॉन्टिनेंटल चीताज ने ऑल आउट कर दिया कैंपस अब्रॉड को. और 122 रन तो भी इनके विकेट जो है बहुत जल्दी जल्दी गिरे पर उसके बावजूद 122 रन का स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया है, विच इज नॉट बैड. इट्स टफ बिकॉज इट्स फाइनल्स, यू नो फाइनल्स में क्या होता है
2: थोड़ा प्रेशर ज्यादा ही रहता है,
4: तो प्रेशर हमेशा एक एक्स्ट्रा रहता है. तो देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल चीताज किस तरीके से इस स्कोर को कवर कर पाते हैं, चेज कर पाते हैं, या फिर कैंपस अब्रॉड आज की ये ट्रॉफी लेके जाता है. ये तो और 1.5 घंटे का समय बताएगा. फिलहाल के लिए आप सभी एंजॉय कीजिए और विल गिव यू सम मोर अपडेट्स फॉर दिस वंडरफुल आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4.
2: थैंक यू सो मच अनुपम. सो वेल, जैसे अभी बताया है दैट 122 का स्कोर यहां पर बना है. एंड साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज

0: काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी मस्ती हो रही है. एंड ऑफकोर्स जैसे हमने कहा कि वी हैव लोड्स ऑफ गिव अवेज एज वेल, सो थोड़ी ही देर में वी विल बी इंटरेक्टिंग यहाँ पर जो लोग आए हैं इनके साथ, सवाल जवाब, उसके बाद कुछ वाउचर्स उन तक पहुंचाएंगे. एंड ऑफकोर्स हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, वंस अगेन रिमाइंडिंग यू दैट RM2 रेडियो मस्ती टीम, वी आर लाइव फ्रॉम SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू. आप यहाँ पर आ सकते हैं टू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल क्रिकेट जो ग्रैंड फिनाले आज हो रहा है. सो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 ग्रैंड फिनाले, आइए यहाँ पर एंड हैव अ ग्रेट टाइम. अपने संडे को फंडे बनाइए. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गुड म्यूजिक.
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी चुरावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। चुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। चुरावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंट जोसेफ स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती। RM2 Radio Musti.

0: If you're listening on the radio, please come join in the festivities. It's an amazingly organized event, and looking forward to coming back for more.
1: Thank you so much. So, abhi Continental Cheetahs ke jo boss hain, your good name, please.
0: My name is Akshay Sarnana from Continental.
1: Okay, so Akshay, jo Continental Cheetahs ke boss hain, he is quite confident. So as you can see, ये लोग जब support देते हैं तो cricket is going very high.
2: ये तो है, because जैसे हमने कहा था कि जब शुरुआत हुई थी लोगों का craze था, लेकिन इतना नहीं था. लेकिन this season 4 is totally different. यहाँ पर एकदम feel आ रहा है जैसे हम stadium में खड़े होकर, जैसे इंडिया में होता है जहाँ पर लोगों की excitement होती है, and जो लोग cheer कर रहे हैं, अपनी team को support कर रहे हैं. So this is lot of fun. So दोस्तों, अगर आप भी हमें सुन रहे हैं, you can come here जहाँ पर हो रहा है आज the grand finale.
1: और the day also is very perfect, very sunny day, or we can say it's a day where India is playing the final आज Asia Cup, Women's Asia Cup T20, India is playing against Sri Lanka.
2: यही तो मैं सोच रही थी कि हमारे स्पोर्ट्स गुरु ने अभी तक हमें कोई अपडेट्स कैसे नहीं दी. तो चलिए, आज फाइनल्स है. हाँ, चलिए, सो देखना होगा. यहाँ पर भी फाइनल है, वहां पर भी फाइनल है, एंड सपोर्टिंग द बेस्ट टीम. सो वेल, अभी के लिए हम आपको बता दें, वी आर लाइव फ्रॉम SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू. आइए दोस्तों, एंड एंजॉय वंडरफुल क्रिकेट हैपनिंग राइट हियर राइट नाउ.

0: listening to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique. Feel the
4: Mystique. Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार. आशिता आपको नमस्कार.
5: नमस्कार. एक बार फिर श्रोताओं को संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र. विचारों का आदान प्रदान, अपनी साझा विरासत और पहचान पर चर्चा, नई पीढ़ी की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन. गोपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर जोड़ा और अब ये सम्मेलन यादों, सम्मान और उपलब्धियों के साथ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. 16वें गोपियो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया और आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा. पुएर्टो साबल के शुगर प्लांटर्स इलाके में अत्सू की टीम ने एक कार्रवाई करते हुए 37 वर्षीय महिला हेयर ड्रेसर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक उसके पास से मेथामफेटामिन, सिंथेटिक कैनाबिनोइड, कैनाबिस और नशीले पदार्थों से जुड़े 63 एल्युमिनियम फॉइल तथा पेपर स्ट्रिप्स बरामद किए गए. इसके अलावा 4,750 रुपए की नकदी भी जब्त की गई. बरामद नशीले पदार्थों की कुल कीमत लगभग 68,850 रुपए आंकी गई है. महिला पुलिस सही हिरासत में है और मामले की जांच जारी है. मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है. 2026 में के पहले 6 महीनों में 3,431 शादियां दर्ज की गई. बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगे हैं.

0: नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें अब पुलिस से लेकर नई एजेंसी को दी जा सकती है, यानी कि एनसीए को दी जा सकती है। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थाओं की शुरुआत होगी। वहीं बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलो पार्क लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच कई ऐसे समूह हैं जो पारंपरिक जागरी नृत्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। गीत संगीत और कदमों के साथ वे मराठी समुदाय की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गणेश उत्सव के लिए तैयार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में दमकल कर्मी जरूरी आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त फंडिंग की कमी को लेकर हड़ताल पर हैं। हाल ही में पेरिस के दक्षिणी इलाकों और बोदू के पास लगी भीषण जंगल की आग के दौरान उनकी जिम्मेदारी और समर्पण की हद सामने आई। इन बेहद गंभीर घटनाओं ने मौजूदा व्यवस्था की कमियों को भी उजागर किया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। NHDC de Longchamp Cottage में उनहत्तर साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री नरेश्वर लाल रामफल जिन्हें कप्पू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी बहन लेखवंती रामफल के घर को तीज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। एसएसओ रोज बॉय में 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सावन कुमार बिम्बाजी जिन्हें दिलबर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके बेटे निवेद कुमार बिम्बाजी के घर जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: कहना चाहेंगे क्रिकेट फैंस को आप?
1: You're talking about this final. This is a wonderfully attended crowd today. And I feel that our score, even though it's low, it's a final score. So I think the other team also should be under tension.
0: Yeah, ये तो है. लेकिन like we say that it's the finals and finals में pressure ज़्यादा होता है, तो शायद 123 को achieve करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है. What do you think?
1: I think 123 might be a good enough score. Let's hope for the best.
0: Okay, sir. And आप last year जुड़े इसके साथ. So how is the experience जो आपने last year देखा and now this year season 4?
1: I think this year the crowds are larger. I think it's far better organized also. Last year was also a great experience, but this year is better.
0: Thank you so much, sir. So may the best team win and thank you. यहाँ पर हमारे जो sports guru है एक बार फिर आ गए हैं. So अरविंद भैया, यहाँ पर जैसे हम हमेशा कहते हैं that may the best team win. आपको क्या लगता है कौन सी टीम का जो पलड़ा है आज ज्यादा भारी है?
2: To say 123 जैसे total है ये उतना ज्यादा नहीं है. But जो लोग हमें सुन रहे हैं जब हम लोग बताते हैं 123 रन्स क्या हैं, अभी मैं एक दोस्त को समझा रहा था, एक्चुअली इट्स 20 ओवर्स यानी इसमें 20 × 6 दे थ्रो 120 बॉल्स, तो 120 गेंदों में इनको 123
0: रन बनाना है,
2: 123 से ज्यादा बनाना है. सो इट कैन कम इन द 20th ओवर, ये 10 ओवर में भी हो सकता है, 15 ओवर में भी, इट डिपेंड्स हाउ दे आर बैटिंग. तो अभी कॉन्टिनेंटल चीतास दे हैव टेकन द फील्ड और दो बैट्समैन आई कैन सी मनीष हैज इज ओपनिंग देयर, मनीष जो विकेट कीपर थे. सो अगर एक सॉलिड स्टार्ट होता है, they get the runs going, so it will be quite easy. Lekin agar early jhatke hote hain, then campus abroad can do something. So it all depends ki pehle 2-3 over mein ye log wicket le paate hain ya nahi, aur pressure ko kam karne ke liye I think ye log रन बनाना चाहेंगे.
0: बिल्कुल. तो चलिए, यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स गुरु तो है ही, सारी जो लाइव अपडेट्स हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे हमने कहा कि वी हैव सम इंटरेस्टिंग गेम्स एज वेल. सो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इनके साथ हम थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे. सो जो हमें सही जवाब देता है, द वन पर्सन हु विल गिव मी द राइट आंसर कैन गेट दिस वाउचर, और ये है फ्रॉम सैफरन ग्रिल. ओके, द क्वेश्चन वेरी सिंपल, एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं? एक ओवर. अच्छा, यहाँ पर हाथ ऊपर हो गया है. पहले आपका नाम बताएं.
3: गौतम शर्मा.
0: ओके गौतम शर्मा जी, हाउ मेनी बॉल्स एक ओवर में?
3: 6 बॉल.
0: दैट्स द राइट आंसर. तालियां तालियां, थोड़ी सी तालियां. वाह वाह, वेरी गुड. चलिए, यहाँ पर गौतम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सो दैट्स गिफ्ट वाउचर आपके लिए फ्रॉम सैफरन ग्रिल. यू कैन एंजॉय योर खाना वहां पर. और यस,
2: अभी अगर एक ओवर में एक वाइड हो जाए तो होता है. नो बॉल हो जाए तो नहीं, एक एक्स्ट्रा बॉल. चलिए, जस्ट फॉर आवर लिसनर्स टू नो. ओके,
0: सो बिल्कुल यहाँ पर गौतम जी ने दिया सही जवाब एंड ये बन गए हमारे लकी विनर. और जैसे हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं, वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द पीपल जो यहाँ पर आए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिकेट इज फन. और जैसे हमने कहा कि आज तो सुपर एक्साइटिंग फन यहाँ पर हो रहा है बिकॉज इट्स द ग्रैंड फिनाले एंड यहाँ पर सारी अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं. वेल, अभी के लिए जो सेकेंड इनिंग्स है ये भी शुरू हो चुकी है. 123 to win. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या कमाल होता है, चौके छक्के लगने वाले हैं या फिर गिरने वाली है. सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. स्टे कनेक्टेड, RM2 रेडियो मस्ती.
4: RM2 रेडियो मस्ती.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: 12:14 हो चुके हैं दोस्तों. इस टाइम का बहुत ही इंतज़ार होता है ख़ास तौर पर सभी लोगों को. और इस समय जो हमें लाइव प्रोग्राम में सुन रहे हैं, जो कि वहाँ पर क्रिकेट हो रहा है और वहाँ पर मापू में सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो बस हम चाहते हैं कि आप स्टूडियो के बाहर अगर वहाँ पर वो लोग एक्साइटेड हैं तो आपको भी थोड़ा सा एक्साइटेड बना दिया जाए. यस, एक गेम खेलते हैं आपके साथ. तो ये जो गेम है इसमें आप जीत सकते हैं 2 entry tickets जो कि को मिलने वाली है सर्कस ज़वाटा से. गेट रेडी फॉर अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंस फॉर द होल फैमिली. कैच सर्कस ज़वाटा एट बागातल विद द शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM एंड सैटरडे एंड संडे एट 4:30 PM एंड 5:30 PM. फॉर बुकिंग एंड इन्फॉर्मेशन कॉल 5250-9413. सर्कस ज़वाटा, डोंट मिस दिस मैजिकल बिग शो. तो भाई आपको जो टिकट मिलेगी, जो भी जीतेगा उसको यहाँ पर एम्बेसी में आके कलेक्ट करना होगा 9 hours to 15 hours तक. तो चलिए, बहुत ही प्यारी और छोटी सी गेम है आपके लिए. आपको पता ही है कि बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर, चाहे बॉलीवुड कह लो चाहे टॉलीवुड कह लो, उनका एक बहुत ही मशहूर एक्टर है जिनका नाम है कमल हसन. उन्होंने एक मूवी में जोकर का रोल किया था. उन्होंने एक जोकर का रोल निभाया था कमल हसन ने. आपको बताना है 5499-1294 पर उस मूवी का नाम क्या है और वो कौन से ईयर में आई थी. जी हाँ जी, कमल हसन बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी की थी जिसमें उन्होंने एक जोकर का रोल निभाया था. उसकी उस मूवी का नाम बताना है और कौन से ईयर में. 5499-1294 पर अपने पूरे एड्रेस, नाम और पते के साथ दीजिएगा और अपना टेलीफोन नंबर भी ज़रूर लिखिएगा, बिल्कुल मत भूलिए. तब तक इन्जॉय कीजिए गानों को.
2: RM2 Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Exactly, loads of masti, loads of fun, right from SSR National Cricket Ground, Mapu, Grand Finale.
3: हाँ तो हमने शुरू में कहा था कि 123 ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ओवर में जो होता है ये काफी डिसाइसिव होता है, और हमने देखा पहले ओवर में एक विकेट गिर गया, कॉन्टिनेंटल चीटास दे लॉस्ट वन विकेट इन द फर्स्ट ओवर, दैट मींस कि अब उन पर दबाव आ गया, इसीलिए अभी देख रहे हैं दे हैव स्कोर्ड ओनली 6 रन्स इन 2 ओवर्स, सो रन रेट बहुत डाउन चल गया, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क, क्योंकि 123 है, सो अगर रिस्क लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो अभी केवल 6 रन 2 ओवर, दे हैव टू स्कोर 124 टू विन. और चलिए यहाँ पर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वी हैव सो मेनी मॉरिशियन ग्रुप सपोर्टिंग द कोज, और जैसे शुरू में हमने बताया द आईसीसी ने मॉरिशियस क्रिकेट फेडरेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया है. वी हैव विद अस द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉरिशियन ओलंपिक कमिटी मिस्टर पापी. मिस्टर पापी, सो टेल अस the final today and what does it mean that ICC has recognized cricket, what does it imply?
4: So good morning everybody. So it is a great pleasure that now the Cricket Federation sport discipline has been recognized by the IOC. So automatically the Federation become a member of the National Olympic Committee. So today I'm very fascinated and astonished by this discipline, and we will work together with the Federation to see how we can help to develop and promote the sports.
3: All right, we can also say Mauritians now can come towards the ICC, the Federation, because they can get the opportunity to play international cricket.
4: So this is our main objective, is that the

0: can represent Mauritius on an international level.
1: और यहाँ पर एक और विकेट गिर गया है. It's the second wicket for the campus abroad. Thank you so much, Mr. Nagesh Papi. We'll catch you later on.
0: Thank you very much.
1: परी, अब लग रहा है मैच में आएगा मजा.
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल. यहाँ पर जैसे हमने कहा कि विकेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है और शुरुआत में ही दो विकेट्स गिर चुके हैं और अभी रन्स काफी कम है. सो सिक्स रन्स पे दो विकेट्स गिर चुके हैं. सो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है.
1: मुश्किल लग रहा है और दे आर बॉलिंग वेल, दे आर बॉलिंग टाइट एंड दे आर गेटिंग द विकेट्स. सो अभी तक जैसे कहते हैं पिक्चर बाकी है. कैंपस अब्रॉड लायंस कैन गेट देम आउट इन से 10-12 ओवर्स. इसीलिए अब कॉन्टिनेंटल चीतास को सीरियसली लेना होगा ये मैच.
2: बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली लेना होगा. और चलिए यहाँ पर हम भी सीरियसली ले रहे हैं. दैट्स व्हाई वी हैव वाउचर्स जो हम दे रहे हैं यहाँ पर जो लोग आए हैं. सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर. सो बॉलीवुड पे बहुत सारी फिल्में बनी है जो क्रिकेट पर बेस्ड होती है. सो देयर वाज अ फिल्म जिसमें आमिर खान नजर आए थे एंड विलेजर्स. यस, यहाँ पर हाथ क्वेश्चन खत्म होने से पहले हाथ ऊपर उठ गया है. सर
3: लगान.
2: लगान, आपका नाम सर?
3: राजेश पटेल.
2: ओके राजेश पटेल जी, गुजराती छो? अरे वाह, चलिए. सो यहाँ पर राजेश जी जीत गए हैं और आपको मिलता है ओरियन फ्लेम की ओर से ₹500 का गिफ्ट वाउचर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो वेल दैट वाज द राइट आंसर. एंड यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आमिर खान नजर आए थे और ब्रिटिशर्स के साथ क्रिकेट खेला उन्होंने, जहाँ पर विलेजर्स की जीत हुई और फिल्म बन गई कल्ट क्लासिक एंड दैट वॉज लगान. और यहाँ पर भी हमें एकदम लगान वाली फील ही आ रही है, जहाँ पर ग्राउंड पर इतने सारे लोग आए हैं अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए. कुछ लोग आए हैं जस्ट टू सपोर्ट क्रिकेट और हम आए हैं यहाँ पर फॉर फन. सो चलिए दोस्तों, RM2 रेडियो मस्ती टीम आपके साथ लाइव. विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti।
1: चलिए थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ एक गेम खेली थी और बहुत ही प्यारी छोटी सी गेम थी और इतने सारे आंसर्स आए, बहुत सारे आंसर्स राइट भी थे, रॉन्ग भी थे, कईयों का कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है पर विनर तो होता है एक। तो चलिए भाई, हमने आपसे क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा पूछा था जो कि था सर्कस ज़वाटा की तरफ से, जहाँ पर आपको मिलने वाले थे 2 entry tickets और इसके लिए हमको हमारा विनर तो मिल चुका है पर आपने क्या जीता है, यू हैव जस्ट won tickets टू सर्कस ज़वाटा, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल experience filled with magic thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Catch Circus Zavata at Bagatelle with shows every Thursday and Friday at 6 p.m. and Saturday and Sunday at 14:30 p.m. and 5:30 p.m. also. For bookings and informations, aap call kar sakte hain 5250-9413 Circus Zavata. Don't miss this magical big show. Aur humne aapko bata diya कि आप बच्चों को लेकर जाएं, बड़ों को लेकर जाएं, कहीं किसी के साथ भी जाएं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सर्कस हो और बच्चे खुश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कि बॉलीवुड के जो एक बहुत ही सुपरस्टार हैं, जिन्हें सुपर स्टार से भी ऊपर माना जाता है, यस हम बात कर रहे हैं कमल हसन की, और उन्होंने एक मतलब है बॉलीवुड के तो एक्टर हैं पर उन्होंने एक मूवी में एक जोकर का रोल निभाया था और आपको उसका आंसर बताना था, यानी कि वो कौन से साल में मूवी आई थी और वो मूवी का नाम क्या था। और बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए राइट पर हम गलत भी दिए, पर हम एक विनर का नाम बताते हैं। तो कौन बना है विनर? क्या बात है भाई, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम आपको नाम बताते हैं, पर पहले आपको बताते हैं कौन सी मूवी थी जिसमें कमल हसन ने रोल निभाया था एक जोकर का। ये सप्पू राजा 1989 में आई थी ये मूवी, बॉलीवुड की बहुत ही खास मूवी। और अब बताते हैं नाम उस विनर का जिनका नाम है पवन बुदोए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने जीती है 2 entry tickets। आपको MBC आना होगा और यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक दोपहर के आपको टिकट कलेक्ट करनी होगी। और फिर से आपको दोबारा से कांग्रेट्स करते हैं और एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में ये स्पेशल क्रिकेट को।

So well, ladies and gentlemen, क्रिकेट मैच जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है. एक के बाद एक विकेट्स यहां पर गिर रही है और अगर विकेट्स ऐसे ही गिरती रही तो 123 का जो स्कोर है ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है. लेकिन चलिए, यहां पर जैसे हमने कहा कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो इस फिनाले को सपोर्ट कर रहे हैं.

0: हैं इस एक्स्ट्रावेगेंजा को सपोर्ट कर रहे हैं. सो वी हैव मिस्टर विनोद हमारे साथ. हेलो जी.
1: Hello, how are you?
0: I am fine. So, हमारे जो listeners हैं, we'd like to tell them that MYOP, make your own perfume. कुछ आप details देंगे इसके लिए.
1: So, MYOP is the first perfume bar concept.

0: value for money. Very nice.
1: And there is no duplication of fragrance. So we have our own original fragrance.
0: Very nice. Also, so what's the reason behind supporting MYOP or Island Cricket Extravaganza?
1: So, as the companies originated from India, we all love cricket.
0: Right.
1: And we want to support the sport.
0: Mm-hmm.
1: And after Mauritius became part of ICC, it becomes responsibility of all corporates to support cricket, support the sport, and support people to come and enjoy the sport, because it's a wonderful sport. It's a gentleman's sport,
0: yes.
1: So you know, it's you can see the vibe
0: right.
1: over here.
0: Yes,
1: it's so fun.
0: Yeah. So thank you so much, Mr. Vinod. Or kaun si team ko support kar rahe hain aaj?
1: As a sponsor, we have to be neutral.
0: right. Ye trick question tha, lekin aapne mera sawal pakad liya. So chaliye, neutral hai. So you are here for good cricket.
1: We are here for good cricket.
0: Okay. Thank you so much, sir.
1: Thank you very much.
0: To chaliye, ye the Mr. Vinod, and yahan par hamare sports guru Arvind ji kuch kehna chahenge.
2: Ah, abhi campus abroad is doing very well. Abhi 3 wicket gir chuke hain, 3 ha, 4 over, 10 run. This match mein anything can happen.
0: Abhi to jaise 10 run hi hue hain aur 3 wicket already gir chuke hain aur yahan par pressure jo hai wo badhta ja raha hai.
2: Pressure in continental cheetahs par, they thought they have done it with restricting campus abroad by 123 runs. Lekin 4 wickets chale gaye hain. So something is serious. Over hai, 5th over abhi. 5 over, 4 wicket aur run dekhte hain. Wahan par board mein changes aa rahe hain. Let's check. So they have scored, it should be around 12 runs.
0: Yes, 12 runs.
2: 5 over mein 12 runs. Very, very low run rate. Campus abroad on top.
0: So well, अभी के लिए तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि क्रिकेट जो है उसका जो फन है वो हम एंजॉय कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो हियर टू मेक इट स्पेशल फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ पर आए हैं. सवाल हम पूछ रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल हम पूछ रहे हैं. सो देखिए, यहाँ पर एक इंसान है जो कब से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं. कैन आई नो योर नेम प्लीज?
3: हैरिसन.
0: ओके हैरिसन, दिस इज स्पेशली फॉर यू. आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. ओके, 83 एक फिल्म आई थी, एंड इसमें कपिल देव का किरदार कौन से एक्टर ने निभाया था? हु प्लेड कपिल देव इन द मूवी 83? डू यू हैव द राइट आंसर?
3: रणवीर सिंह.
0: रणवीर सिंह, दैट्स द राइट आंसर. तालियां. वेरी गुड. चलिए, सो दैट्स द राइट आंसर. 83 फिल्म जो बनी थी क्रिकेट पर, एंड कपिल देव के ऊपर बनी थी, और वो किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने आफ्टर धुरंधर. अब तो वो काफी चर्चाओं में है. सो वेल, आज के धुरंधर हमारे बन गए हैं हैरिसन. आपको मिलता है ₹500 का गिफ्ट वाउचर फ्रॉम ओरियंट फ्लेम. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड वेल, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं आपसे हम सवाल पूछने वाले हैं. थोड़ी देर में कुछ और लोगों से हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, एंड वी ऑल्सो द स्पॉन्सर्स जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स गुरु जो काफी टेंस लग रहे हैं कि क्या होने वाला है, कौन सी विकेट गिरेगी या फिर कौन चौके छक्के मारेगा. ये सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे. एंड वेल, यहाँ पर वी आल्सो हैव समवन. यस, मिस्टर रंजीत. ओके, मिस्टर रंजीत है फ्रॉम SBI, तो हम इनसे थोड़ी बात करेंगे. हेलो सर.
4: आई
0: एम गुड, हाउ आर यू फीलिंग सर?
4: गुड. एक्सीलेंट मैच.
0: ओके, तो चलिए, हमारे स्पोर्ट्स गुरु है, आप ही क्रिकेट से कुछ.
2: Yeah, that's, first of all, thank you so much for promoting cricket in Mauritius.
4: Yes.
2: And SBI has always been there. Or ye tournament, you have been supporting them.
4: Yes, we are actively supporting cricket tournaments across the, I think of last 4 seasons, we have supported 3 seasons. This year also, we are one of the sponsors. And we actually promote cricket for, cricket is one of the top sports in India. So we think, and Mauritius, being affiliated now the ICC membership as well, so it's a nice thing that we being partners here with the
2: a question. I don't know if I should ask you here.
4: Yes.
2: Let's say Mauritians want to play cricket, okay?
4: Yes.
2: If they come forward to SBI for help, I think
4: we are helping.
2: Okay.
4: Yes, we are looking forward to support all the activities that is going around in Mauritius, especially with the development of sports as well as other activities. We are actively supporting.
2: Thank you so much.
4: Thank you.
2: चलिए, तो आगे बढ़ाएंगे भी या रन देखेंगे.
0: So well, यहाँ पर रन है 12 रन. 4 विकेट्स गिर चुके हैं, 12 रन्स, एंड टू विन 123 का टारगेट दिया है, सो 124 टू विन. लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. स्टे वेल कनेक्टेड.
5: You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: RM2 Radio Masti. RM2
1: Radio Masti.
0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. RM2
1: रेडियो मस्ती. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio.
1: So the runs are coming. अभी एक छक्का लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा स्लो लग रहा है, इसलिए गेंद बाउंड्री पार नहीं कर पाया. एनीवे हमारे साथ वी हैव
2: गौतम शर्मा
1: वेरी बहुत इंटरेस्ट के साथ ये मैच देख रहे हैं. टाइट लग रहा है अभी.
2: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बोला पिच काफी स्लो है और फाइनल का जो प्रेशर रहता है वो हमेशा दूसरे टीम पे रहता है जो चेस कर रहे हैं.
1: ओके गौतम, अभी हमें बताया गया कि यू आर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. टेल मी अबाउट यू, व्हाट इज इट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट?
2: सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बेसिकली द बैक एंड ऑफ स्पोर्ट्स, जो हम करते हैं कि एक तो साइड है प्लेयर्स का, लेकिन जो मैं करता हूँ होता है प्लेयर डेवलपमेंट, अकेडमी डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, कैसे उसको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं ताकि लोगों का डेटा हो, लोगों के पास लोग सही तरह से ऊपर आ सकते हैं और खेल सकते हैं मॉरिशस के लिए ऑन अ हायर लेवल. अभी ICC भी आ गया है मॉरिशस के साथ, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्कोप है कि मॉरिशियन प्लेयर्स ICC में मॉरिशस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पे हेल्प करके इसको आगे लेकर जा सकूं.
1: All right, और लगता है कि really cricket is upcoming in Mauritius.
2: बिल्कुल बिल्कुल, I think यहाँ पे जैसे मैं जितने लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, और ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे देखने के लिए, और मुझे लगता है कि ये बढ़ता जाएगा. हमको अवेयरनेस बढ़ानी है, हमको छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है गेम के लिए, और उस हिसाब से वो आगे जाएगा कि अगले जनरेशन में लोग खेलेंगे और पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द स्पोर्ट एज वेल.
1: एंड क्रिकेट हैज अ वेरी गुड स्कोप फॉर tourism as well.
2: 100%, and that's exactly what I was saying, you know, that the island being such a fascinating place for people to come, people can come for off season training here, the beaches are there, the facilities are there, the hotels are there, and this happens in football as well, and I think that's a big scope for tourism in Mauritius as well, for people to come and train as well.
1: Thank you so much Gautam, and looking forward for your contribution.

0: थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
1: पेरिस, तो अभी एक नजर डालते हैं स्कोर पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 8 ओवर इनको बनाने हैं 123 रन, मींस अभी 97 रन लगभग। लेट्स सी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन फाइनल है, टाइट होना चाहिए।
2: सो वेल, द ग्रैंड फिनाले यहां पर हम है फ्रॉम लाइव फ्रॉम एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड। फूड इज ब्रॉट टू यू, यहां पर जो भी टेस्टी खाना सर्व हो रहा है फ्रॉम लिटिल इंडिया एंड पधारो सा। सो गुड फूड है, गुड क्रिकेट है एंड ऑफ कोर्स गुड म्यूजिक बाय आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं पूजा जी से संक्षिप्त समाचार। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग आयुषी और सिहाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। इस समझौते पर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से इलाके में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। आज सुबह सोगेज में लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामी घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जाने गई हैं। देश की सड़कों पर अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। भगवान श्री गणेश के स्वागत के लिए घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में उत्साह का माहौल है। कहीं गणेश जी की सुंदर और आकर्षक झांकी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं पूजा स्थल को फूलों, रंगोली और रोशनी से सजाया जा रहा है। भगवान गणपति स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री जुटाने में व्यस्त है और भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। कल भक्त भगवान गणेश से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: नंबर जी 14 NHDC देलोंगशांग कोटेज में 69 साल के 69 years old श्री नरेश्वर लाल रामफल जिन्हें लोग कापू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है क्यों थी आज सपहर के 3 बजे आज सपहर के 3 बजे इनकी बहन लेख हवंती रामफल के मकान नंबर जी 14 NHDC देलोंगशांग कोटेज से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 84 साल के 84 years old श्री अद्वैत रंगदुआ श्री अद्वैत रंगदुआ जिन्हें लोग अद्वैत नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन से उठाकर थोमा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 2 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: FRM2
1: Radio Masti.
2: So well, यहाँ पर क्रिकेट का घमासान एंड वी आल्सो हैव हमारे स्पोर्ट्स गुरु. क्या लगता है आपको?
3: अभी दे आर रीचिंग हाफ सेंचुरी यानी 48 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ओवर 11 मींस दे हैव 9 ओवर्स टू स्कोर क्वाइट अ लॉट. चार विकेट गिर गए हैं, सो 123 124 स्कोर करना है. दो रन और लेंगे तो दैट कैन बी 50 फॉर देम. अभी जो दो बैट्समैन हैं दे आर सेटल्ड. अगर ये लोग टिकेंगे अंत तक दे कैन रीच द टोटल. चार विकेट ओवर अभी 9 बचे हैं, सो ओवर अभी 9 यस 48 फॉर 4 लेट्स सी.
2: सो होने वाला है काफी कुछ. और चलिए यहां पर हम स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे एंड वी हैव समवन जिन्होंने यहां पर ट्रॉफीज जो हैं वो स्पॉन्सर की है. हेलो सर. हेलो.
4: हेलो.
2: आपका नाम बताएं सर.
4: नरेश मेहता.
2: मिस्टर मेहता, और ये जो सारी यहाँ पर हम शानदार ट्रॉफीज देख रहे हैं इट्स स्पॉन्सर्ड बाय डायमंडिया.
4: यस.
2: सो ये तो हमने देखा था कि हम आपके शोरूम में आए थे, एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल ज्वेलरीज हमने देखी थी एंड आज ये ब्यूटीफुल ट्रॉफीज हम देख रहे हैं. तो सर आपको आज कैसे लग रहा है?
4: वेरी वेरी वेरी ग्रेटली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉन्सर दिस. I'm very proud.
2: Thank you so much, sir. Or jaise hum
4: yes, I want to say something, two words more.
2: Please.
4: I want to announce something that till today, Diamantia was doing only gold and diamond jewelry, which is a very nicely all European design. And all our diamonds are natural and lab-grown diamond. So that every pocket, still it is looks like that every pocket can maybe not possible. On 26th I invite you all

0: of you to come to Tribeca on the marketplace. We are unveiling the silver line of real diamonds, no fake, no monzonite, no chemical, all crystal, no crystal, real diamond jewelry at affordable price from 3,000 rupees and onwards.
1: Thank you so much, sir. Kya
0: this
1: baat
0: is a
1: hai?
0: Good news that every ladies can have a dream of diamond.
1: Kya baat hai?
0: To
1: kya
0: have
1: baat
0: everything.
1: Hai?
0: I welcome all of you to come on 26th Saturday in Tribeca at 12 o'clock. Please.
1: Thank you so much, sir. और क्रिकेट के लिए भी आप दो शब्द जरूर कहिए. कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे आपने तो ट्रॉफी स्पॉन्सर की है.
0: मैंने तो I support all the team.
1: Exactly.
0: But I want to wish good luck to everybody.
1: Thank you so much. Thank
0: Fight
1: you so
0: well
1: much.
0: And get the best.
1: थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता. चलिए यहाँ पर ये जो शानदार ट्रॉफीज हैं आर स्पॉन्सर्ड बाय डायमंडिया और यहाँ पर मिस्टर मेहता इतने एक्साइटेड हैं और उन्होंने कहा है कि भाई कुछ खास तो होने वाला है और बिल्कुल आज यहाँ पर अरविंद जी ये भी खास होने वाला है.
2: हाँ, 59 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड. अभी जो लास्ट ओवर गया उसमें एक दो छक्के भी आए. सो 12 ओवर्स 59 रन्स 4 विकेट डाउन. मतलब इनको जीतने के लिए अभी चाहिए 64 runs, 65 runs to win. इनके पास है 8 over, 4 wickets down. Match अभी weather is मुझे डर है कहीं बारिश ना हो. नहीं नहीं होगा. रन आएंगे तो जरूर. लेट्स चेक दिस वन. ये मुझे लगता है जाएगा चौके या छक्के के लिए. द नंबर 10, लेट्स चेक दिस. गेंद को उछाला और ये जाएगा 4 रन के लिए. देखा भी गेंद गिर कर जा नहीं रहा है.
1: बिल्कुल.
2: आउटफील्ड इज नॉट दैट फास्ट.
1: सो इसीलिए
2: यहाँ पर एक रन आउट का चांस है. इज ही रन आउट? यस.
1: ओहो, क्या बात है.
2: दे हैव टेकन द रिस्क. वंडरफुल फील्डिंग और अननेसेसरीली ही हैज बीन रन आउट. सो 5 विकेट डाउन अभी इस तरफ. मतलब कैंपस अब्रोड इंटरनेशनल्स दे आर सेंसिंग दैट समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग. लेकिन ये दैट वाज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट रन आउट वी कैन से. होता है क्रिकेट में. आगे क्या होगा बताएंगे आपको.
1: बिल्कुल. सो जैसे यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स गुरु बता रहे थे कि चौकी की उम्मीद हो रही थी लेकिन चौकी की जगह यहाँ पर रन आउट हो गए यानी कि 1 विकेट डाउन और अब टोटल 5 विकेट्स गिर चुके हैं एंड जीतने के लिए 123 रन्स अभी तक 59 रन्स बने हैं. सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है. चलिए अभी के लिए यहाँ पर लोग डिलिशियस खाना भी एंजॉय कर रहे हैं एंड वंस अगेन आपको बता दें दैट ये जो खाना है इज स्पॉन्सर्ड बाय लिटिल इंडिया एंड पधारोसा. साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं वंस अगेन आपको बता दें वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल 2:30 PM. यू कैन कम एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल क्रिकेट हैपनिंग राइट हियर राइट नाउ एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल यहाँ पर हाथ मलने का समय आ ही गया है, बिकॉज लग तो ऐसे रहा है कि अब थोड़ा सा मुश्किल
3: क्योंकि सातवां विकेट गिर गया है और लगातार दो विकेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक, एम आई राइट? यस ही इज ऑन ए हैट्रिक। एनीवे चेक करेंगे अभी 66 रन ऑलरेडी स्कोर्ड, 7 विकेट्स डाउन, मिडवे बनाना है 124 और बचे हैं केवल 7 ओवर, दे आर प्लेइंग द 14th ओवर राइट नाउ, 7 विकेट डाउन। मुझे लगता है कि कैंपस अब्रॉड हैज टेकन अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द चैंपियनशिप।
2: सो बिल्कुल यहाँ पर मैच जो है वो अब इंटरेस्टिंग हो रहा है और जो भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, किसी की हार्ट बीट्स बढ़ रही है, किसी की तालियां बढ़ रही है एंड यहाँ पर घमासान चल रहा है।
3: कुछ समय पहले कैंपस अब्रॉड साइड में साइलेंट थे बिकॉज दे हैड स्कोर्ड ओनली 123, लेकिन अब जबकि यहाँ पर
2: जोश बढ़ गया
3: है और उनके बॉलर दे आर बॉलिंग वंडरफुली और उनके जो फील्डर भी हैं दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, इसलिए 7 विकेट इसमें रन आउट भी रहे इसमें। अभी द लास्ट विकेट वाज अ ब्यूटी टू वॉच, तो देखेंगे यहाँ पर ही स्ट्रगलिंग और एक विकेट
2: बच गया।
3: सो एज यू कैन सी द प्रेशर इज ऑन इन द चीताज, तो लायंस लगता है चीताज को खा जाएंगे।
2: तो चलिए मे द बेस्ट टीम विन, ये तो हम हमेशा कहते हैं बिकॉज वी आर हियर फॉर गुड क्रिकेट जो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं एंड वेल साथ ही यहाँ पर डिलिशियस लंच इस टाइम सर्व हो रहा है एंड द फूड इज स्पॉन्सर्ड बाय लिटिल इंडिया एंड पधारोसा। तो दोस्तों अगर आप भी आसपास हैं यहाँ पर आकर आप भी इस क्रिकेट का मजा लेना चाहते हैं सो डू कम एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू जहाँ पर हम तो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट यू टू एंजॉय एज वेल, इसलिए तो आंखों देखा हाल लाइव कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, सो स्टे कनेक्टेड। थोड़ी ही देर में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ वाउचर्स हम गिफ्ट करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव द स्पॉन्सर्स हियर एज वेल, सो सब के बारे में हम बात करेंगे स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: Radio Musti.
0: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: It's happening here. एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि विकेटों की बरसात हो रही है यहाँ पर.
3: Absolutely. और अरविंद भाई, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि कॉन्टिनेंटल चीतास जो हैं, अभी अब चीते की रफ्तार तो कम हो गई है, शेर जीतने की तैयारी कर रहा है यहाँ तो.
2: शेर चीते को खा जाएंगे. और 8 विकेट डाउन, दे आर बॉलिंग वेरी वेल. और वी कैन से इट्स अ बिग मैच. जो शुरू में लग रहा था कि कॉन्टिनेंटल चीतास जीत जाएंगे बिकॉज दे रेस्ट्रिक्टेड कैंपस अब्रॉड टू 123, लेकिन इन्होंने समय समय पर एट इवन लेवल दे टुक देयर विकेट्स. और अभी जब 3-4 विकेट गए, मैच एक पल्ला हो रहा है.
3: बिल्कुल. और एक तरफ आप दिखता जा रहा है, और हमारे बीच में अरविंद भाई इस समय हिज एक्सेलेंसी श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इज देयर. सो चलिए हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके थोड़े से व्यूज, क्योंकि रिसेंटली अभी मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन ने ICC को ज्वाइन किया है और इंडियन हाई कमीशन के सपोर्ट के द्वारा ये पॉसिबल नहीं होता. तो सर, कैन वी इन्वाइट यू अ लिटिल फर्दर टू have some few words about, of course, the Island Cricket Extravaganza, and also as recently the Mauritius Cricket Federation joined the ICC, and some of your remarks on this.
4: Well, first of all, good afternoon to all of you and namaskar. It's a real pleasure to be here for the Island Cricket Extravaganza. And, you know, one has watched various games of cricket in this country, but this one feels particularly special. I'll tell you why. Because as many of you would know, in July this year, Mauritius was inducted as the newest member of the International Cricket Council. So I'm so happy to be here, and we are all looking forward to a great game of cricket. As they say, whoever wins, ultimately it will be the game of cricket that will be the real winner. So with those words, again, very happy to be here. Thank you.
2: And thank you, sir, for supporting the cricket cause in Mauritius. And we can look forward ki Indian government or ICC abhi to cricket recognize hua hai hamara federation. Zyada se zyada jo grassroots level pe barhava mil sake, it will be great.
4: Bilkul. Dekhiye, jo ICC mein jo Mauritius ka jo application tha, usko hum log ne puri tarah se support kiya. और आगे भी ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो क्रिकेट का यहाँ गेम है, ग्राउंड्स हैं, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, उसमें किसी ना किसी तरह हम भारत से जो भी मदद हो वो हम दे सकें.
2: थैंक यू सो मच. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी मॉरिशियंस, वी कैन से वी लुक फॉरवर्ड कि आगे चल के मॉरिशियस की भी एक टीम आगे खेले. व्हाई नॉट अफ्रीकन चैंपियनशिप, व्हाई नॉट दी वर्ल्ड कप, वी शुड ड्रीम बिग.
4: बिल्कुल. And not only that, we look forward to a great team from Mauritius playing international tournaments, but we also look forward to international matches being hosted here.
2: तो यही आशा है. और यहाँ पर जो मैदान है, we can see अनुपम कि it's a great atmosphere. और आज का जो मैच है बहुत टाइट चल रहा है. Thank you so much for being with us, or for encouraging cricket. Thank you, sir.

0: थैंक यू। चलिए तो परी यहाँ पर एक नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पे। 68 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 5 ओवर बाकी है लेकिन विकेट केवल 2, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टाइट फॉर द चीताज टू चेस द लायंस। लायन जो है आज लंच करने के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल जी, यहाँ पर काफी कुछ हो रहा है एंड वेल वी आर गिविंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे हमने बताया यहाँ पर वी हैव लोड्स ऑफ पीपल जो यहाँ पर आए हैं, डिग्निटरीज है जो यहाँ पर आए हैं एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग अ गुड क्रिकेट। वेल आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आसपास है यू कैन जॉइन अस लाइव फॉर दिस वंडरफुल क्रिकेट एक्सपीरियंस एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू। सारी लाइव अपडेट्स आप तक रेडियो मस्ती लाइव एंड अभी के लिए गुड म्यूजिक आपके नाम।
2: RM2 Radio Musti RM2
3: Radio Musti
4: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredis, 18h, achetez des billets, gagnez un gratis. Ou pour un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bon l'école, compagnie et bon groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se attendre? Réserve votre place à la même le 50 50 94 13.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: तो हो गया यहाँ पर कैंपस अब्रोड लायंस चैंपियन D1 क्वाइट इजीली वी कैन से 21-20-44 रन्स सो इजी लेकिन कह सकते हैं कि दे डिजर्व टू बी चैंपियन.
3: सो वेल यहाँ पर कैंपस अब्रॉड लायंस बन गए हैं ट्रू लायंस और बन गए हैं विनर फॉर सीजन 4. सो यहाँ पर जो एक्साइटमेंट था ये तो हमने कम्प्लीटली एंजॉय किया. एंड व्हाट अ मैच, जहाँ पर शुरुआत तो हुई थी थोड़ी सी धीमी 123 रन्स और उसके बाद लग रहा था कि इस टारगेट को अचीव करना काफ़ी ईजी होगा, लेकिन

0: यहाँ पर गेम एकदम पलट गया और विकेट पर विकेट गिरने के बाद अब हमारे जो कैंपस अब्रॉड लायंस है बन गए हैं ट्रू लायंस. कांग्रेचुलेशंस.
1: 17 ओवर में 10 विकेट सो दे आर ऑल आउट. एक अद्भुत कमरादरी एज वी से दोनों टीमों के बीच. ये लोग फाइनल में आए एंड दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल. और एक टाइट मैच वी कैन से क्योंकि वी एक्सपेक्टेड देम टू चेस 123. लेकिन कैंपस अब्रॉड लायंस बोलर्स डिड अ वंडरफुल जॉब. उनके फील्डर भी बहुत अच्छा खेल पाए एंड दे आर द चैंपियंस. शायद बहुत खुश है ये लोग.
0: खुशी तो बिल्कुल नजर आ रही है और हमारे जो लिसनर्स हैं आप खुशी सुन भी पा रहे होंगे. आप पीछे देख रहे हैं जो एक्साइटमेंट है एंड बिल्कुल यहाँ पर होना भी चाहिए बिकॉज ये जो टूर्नामेंट है 1 अगस्त से शुरू हुआ था और आज 30th of September फाइनल्स जहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए उसके बाद दो टीम सामने आई और आज उन दोनों टीमों में से एक बन गए हैं फाइनल ऑफ दिस सीजन, विनर ऑफ दिस सीजन.
1: थोड़ी देर बाद अभी हम बात करेंगे विद द कैप्टन ऑफ द कैंपस अब्रॉड टीम. और शुरू में जब कैंपस अब्रॉड टीम के जो बॉस हमसे बात कर रहे थे उन्होंने बताया था कि फाइनल है. फाइनल में दो दे हैड स्कोर्ड नॉट दैट मच लेकिन दे वर कॉन्फिडेंट दे कैन बी देयर और जीत गए.
0: तो चलिए जीत गए हैं तो यहाँ पर जीतने का मौका भी हम देंगे. यहाँ पर वी हैव सिंपल क्वेश्चंस जो हम पूछ रहे हैं. सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. एमएस धोनी पर एक फिल्म बनी थी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एंड हु वाज द एक्टर. कौन थे वो एक्टर हु प्लेड द लीड रोल इन एमएस धोनी. कौन है वो जिन्होंने खेला है और ओके यू हैव द राइट आंसर.
2: सुशांत सिंह राजपूत.
0: ओह दैट्स द राइट आंसर. व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स योर नेम.
2: आदिश जैन.
0: सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके खुद का नाम भूल गए. कैन आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वंडरफुल बॉय. सो लेट मी टेल यू आपको मिलता है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर एंड दैट्स फ्रॉम सैफ्रन ग्रिल. यू कैन एंजॉय द खाना वहां पर. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. जीतने के मौके तो आपको मिलेंगे क्योंकि आज तो जीत गए हैं हमारे लायंस यानी कि कैंपस अब्रॉड लायंस. जीत कर यहाँ पर ये ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली है. सो थोड़ी ही देर में वी आर गोइंग टू गिव यू सम मोर अपडेट्स. अभी के लिए RM2 Radio Masti Team Live. Enjoy the Gaana.

0: ऑलराइट, सो चलो एक लाइन में इंडियन ऑयल से जानते हैं, बिकॉज इंडियन ऑयल इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट सिंस क्वाइट लॉन्ग एज आई नो. सो हाउ यू फील?
1: या इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स अ एसोसिएट, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट दैट बाइंड्स अस टुगेदर, एंड इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट दैट हैज इवेंचुअली वॉन टुडे. ग्रेट कॉम्पिटिटिव मैच, ग्रेट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट वी हैव स्टार्टेड ऑफ. सो वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद द टूर्नामेंट. थैंक यू. Congratulations to the winning and the runner-up.
0: Thank you, Vinayji. And here we go. Thank you for the association with the Mauritius Cricket Federation for the ICE Season 4. And ladies and gentlemen, this time we have a new entry for our co-sponsor. So put your hands together for my dear friend. And of course, the director for the MYOP brand, Mr. Vinod Unnithan. Can we have you here, please? All right, so Vinod, zordar taaliyan ho jaye, ladies and gentlemen, for Mr. Vinod. So one line sum up. It's a first association by MYOP. How you feel?
2: Feels great because it was a wonderful match and a wonderful climate, wonderful Sunday, and the winner is cricket. Thank you.
0: Thank you so much. And all right, ladies and gentlemen, let me invite now the CEO for the SBI Bank, Mauritius, Mr. Ranjit Ji. Can we have you here, please?

0: Thank you, His Excellency. And now I would like to request the Excellency, Mr. Henrik Giovanni April, to please do the honors to...
1: RM2, Radio Musti.
2: RM2, Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
5: North, South,
2: 103.5.
5: East, West,
2: 96.4.
5: Center,
2: 99.4.
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से. पूजा, आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार. सोहेज में आज सुबह लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई. खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया. दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामूहिक घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका. इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जाने गई है. देश की सड़कों पर अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है. हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग IOC और सिगाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है. इस समझौते पर एबन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है. गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में. भगवान श्री गणेश के स्वागत के लिए घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में उत्साह का माहौल है. गणेश स्थापना के अवसर पर विधि विधान से पूजा आरती और मंत्र उच्चारण के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा. भगवान गणेश को प्रिय मोदक और लड्डू की तैयारियां भी जोरों पर है. कल जब शुभ मुहूर्त में गणेश मतलब गणपति बापा की स्थापना होगी तो पूरा वातावरण गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जय जयकार से गूंज उठेगा. विदेश में इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार जावा सागर में एक दुर्घटनाग्रस्त इंडोनेशियाई यात्री नौका से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 107 लोगों को बचा लिया गया है. इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी ने बताया कि वियागो ट्रांसपोर्ट 8 नामक जहाज से संपर्क टूटने के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार.

नंबर G14 NHDC de Longchamp कोटेज में 69 साल के 69 years old श्री नरेश्वर लाल रामफल, जिन्हें लोग कापू नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे इनकी बहन लेख हवंती रामफल के मकान नंबर G14 NHDC de Longchamp कोटेज से उठाकर पीतो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: tag and play.
1: RM2.
2: हमें पता है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं इस समय की क्रिकेट के क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सब आपको एक एक करके परी दे ही रही है, पर थोड़ी देर के बाद फिर से हम जुड़ेंगे SSR नेशनल ग्राउंड मापू से, जहां पर हमारी RJ परी भी है और हमारे कहते हैं ना स्पोर्ट्स गुरु अरविंद भी वहां पे मौजूद हैं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद, तब तक इससे पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, गहरा हुआ।

0: RM2 Radio Musti
1: 2:13 हो गया है. सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे ऑफकोर्स ऑन अ रेडियो मस्ती, जहां पर मिलकर हम इस वीकेंड को धमाकेदार बना रही है. हम तो

0: स्टूडियो में आ गई है, हंसनी का साथ रहने वाला है और उधर परी जो है फुल एनर्जी के साथ बस जुड़ी हुई है जस्ट टू एंजॉय क्रिकेट, और जो क्रिकेट वाला फील है वो लेकर आ रही है राइट अवे ऑन रेडियो मस्ती। तो चलिए हम मापू चलते हैं जहां पर परी इस समय है और वो हमें देने वाले हैं कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स। हेलो परी, वेलकम टू यू।
1: हेलो हंसू, हेलो हंसनी एंड बिल्कुल प्यार भरा हेलो वंस अगेन टू ऑल द लिसनर्स। वैसे तो हम आपको बता ही रहे थे कि कब से यहाँ पर हम है और क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। एज फ्रॉम 10 AM ये जो मैच है ये शुरू हो गया एंड रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर लाइव है एज फ्रॉम 11 AM। और आपको बता दें दैट यहाँ पर जो घमासान था फाइनली एंड हो चुका है एंड वी हैव द विनर्स, कैंपस अब्रॉड लायंस बन चुके हैं इस सीजन के विनर्स। और अभी के लिए तो हम यहाँ पर जो प्राइज गिविंग सेरेमनी है वो चल रही है एंड यहाँ पर हम सारी अपडेट्स हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। इट वॉज अ वंडरफुल सीजन, 1st of August से ये शुरू हुआ था, 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और अब आज ऑन 13th of September था ग्रैंड फिनाले। तो वेल यहाँ पर सारी अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई एंड आई डू होप दैट हमारे जो लिसनर्स थे उनको भी ये क्रिकेट का जो फन है वो एंजॉय करने को मिला। और साथ ही यहाँ पर हमने बहुत सारे हमारे लिसनर्स यहाँ पर भी आए एट मापू जहाँ पर हमें उनसे मिलने का मौका मिला। वी ऑल्सो हैड वंडरफुल प्राइजेस जो हम उनको दे रहे थे, कुछ गिफ्ट वाउचर्स एंड यहाँ पर स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने आकर बातें करी हैं और साथ ही बताया कि ये जो एक्सपीरियंस था क्रिकेट का कितना वंडरफुल रहा। और अब तो इंतजार है नेक्स्ट सीजन का, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ ही देर में जो विनर्स हैं हमारे उनको भी ट्रॉफी दी जाएगी। सो वी विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, तब तक के लिए आप भी कनेक्टेड रहें एंड एंजॉय गुड म्यूजिक ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
0: थैंक यू वेरी मच परी, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू टू शेयर द लेटेस्ट हैपनिंग। ऐसा लगता है कि हम तो बस पहुंच गए हैं आज मापू SSO नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जहां पर क्रिकेट मैच खेले जा रहे थे सिंस 11 AM एंड ऑफ कोर्स दैट वाज द ग्रैंड फिनाले फॉर द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4। सो परी थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स, मिलेंगे जल्द यहां पर। बिल्कुल आप लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे, दिस इज आवर रेडियो शो यहां पर म्यूजिकल जर्नी जो हमारा होने वाला है अब टिल 4 PM। दिस इज योर संडे वाला शो, दिस इज प्लग एंड प्ले और हम बिल्कुल मिलेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ रहने के लिए, बिल्कुल हम है तैयार। सो जस्ट टू शेयर योर स्वीट बातें, व्हाई नॉट, करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 5499124 फॉर योर मैसेजेस और आपके प्यार भरे डेडिकेशंस।
2: प्लग एंड प्ले RM2
3: प्लग एंड प्ले।

to Radio Musti. Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और थ्वासिसान.mu पर भी. RM2 Radio.

0: RM2 Radio Masti
1: 27 in the afternoon. जी हाँ बिल्कुल, ये वादा तो हमने कर लिया है टू एंटरटेन यू फॉर दिस फैबुलस वीकेंड. और मौसम की बात करें तो वक्त सुहाना मौसम, औसम मौसम है आज. धूप खिली हुई है और ऊपर से राइट वी हैव अ परी जो हमारे साथ है फॉर द मस्त जबरदस्त क्रिकेट मैचेस जो आज खेले गए एट मापू. तो चलिए उनसे मिलते हैं जाने के लिए कि क्या है लेटेस्ट. हेलो परी, वंस अगेन वेलकम ऑन रेडियो मस्ती.
2: हेलो हंसनी, बिल्कुल जी, थैंक यू. और आपको बता दी दैट इट वाज द ग्रैंड फिनाले ऑफ आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4. और इस बार मुकाबला था फुल ऑन द मैकेडोर ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑल सेवन को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP. ये जो प्रीलिम सीजन है इसकी शुरुआत हुई 1st August से. 6 पावर पैक टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, कॉन्टिनेंटल, AMG, APP, कैंपस अब्रॉड, वन हेड एंड थॉमस कुक. और आज था द ग्रैंड फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास एंड कैंपस अब्रॉड लायंस. और ये जो बाजी है, ये जो सीजन है, वो कैंपस अब्रॉड लायंस ने अपने नाम कर दिया. एंड वी वर लाइव फ्रॉम 11 AM यहाँ पर, लेकिन मैच की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो गई थी. साथ ही अभी जो हमने विटनेस किया यहाँ पर, इट वॉज अ फैंटास्टिक क्रिकेट. साथ ही यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़े, यानी कि जो स्पॉन्सर्स हैं, एंड इट वॉज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट. और आज जो है ये इसका आज एंड हो रहा है, लेकिन

0: everyone is waiting for the next season. So, well, अभी के लिए big big thank you to our team जो यहाँ पर थी, हमारे technicians Avi and the full team जो यहाँ पर थी, वहाँ जो हमारा रेडियो मस्ती स्टूडियो है वहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड रहे पूनम और आप अंतनी, big thank you to you also. और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग आए टू एंजॉय गुड क्रिकेट, बिग थैंक यू टू एवरीवन. साथ ही कितने लोगों ने हमें बताया कि रेडियो मस्ती सिस्टम पर वो यहाँ पर आए हैं, तो इट मीन्स अ लॉट. जहाँ पर आप रेडियो मस्ती को इतना प्यार देते हैं, आप यहाँ पर आकर हमसे इतने प्यार से मिले, तो बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रावेगेंजा. और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे. जैसे कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स एवरी डे एंड एवरी आफ्टरनून हम आप तक पहुँचाते हैं, एवरी मॉर्निंग 7:30 और एवरी आफ्टरनून एट 4:30 अराउंड इसी टाइम आपको ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स हम पहुँचाते हैं. लेकिन आज था फुल ऑन क्रिकेट मोमेंट जो हमने इंजॉय किया और ये मोमेंट हमने पहुँचाए हमारे लिसनर्स तक. सो बिग थैंक यू वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन. और एक बार फिर ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे आपके लिए. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ एंड हैव अ वंडरफुल संडे.
1: Thank you very much, Pari, for all the updates. जहाँ पर आप साथ निभा रही थी all the way from Mapu, and yes, you brought the feel of cricket right on Radio Masti. So once again, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको special thank you, and special thank you to the organizer as well उस बड़े event को organize करने के लिए and to bring it to Radio Masti once again. Big thanks from all our team.

0: to Radio Musti.
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Plug and play.
2: RM2
0: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: This is our Sunday wala show, afternoon wala time, जो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ गई है हंसनी और हम तो साथ ही रहने वाले हैं जी. कहाँ जाएंगे, आप ही के साथ रहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जितनी खुशी यहाँ पर आने को मिलती है और वो खुशी कहाँ मिलेगी है. दिस इज़ अवर रेडियो मस्ती, जहाँ पर अपनापन तो है ही और जब भी हम यहाँ पर होते हैं तो आपकी दोस्ती और आपका जो सपोर्ट आता है इट्स माइंड ब्लोइंग एंड ऑलवेज स्पेशल एंड प्रेशियस. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हाल चाल है सबका? रियली होप कि सब ठीक है. लंच तो हो गया है कब से और अभी मे बी यू आर हैविंग योर 5 मिनट्स वाला एक छोटा सा रेस्ट, ये भी चलता है क्योंकि इतना सारा काम जो अभी बाकी है ना स्पेशली उन लोगों के लिए जो गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं धूमधाम से. गणपति महाराज को वो घर लेकर आएंगे, पूजा पाठ प्रार्थनाएं भजन कीर्तन झाकड़ी के साथ बप्पा को प्रसन्न करने वाले हैं हमारे सभी भक्तगण. तो ये जो तैयारियां चल रही हैं इससे में रेडियो मस्ती आपके साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल है तैयार और बिल्कुल हम पॉजिटिव जो वातावरण है, जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको बस मेंटेन करने की पूरी कोशिश हम करेंगे आपके साथ. वेली होप कि संडे आफ्टरनून इज ऑल सेट. वैसे आपने क्या प्लान किया है आज? स्पेशल मूवी को देखना है या फिर सुहाना मौसम को देख के आपने सोचा है व्हाई नॉट एक आउटिंग हो जाए या फिर बेड से यू नो सम रेस्ट हो जाए हफ्ते भर के लिए. कितना सारा काम होता है जी, कितने सारी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन आज ये जो ब्रेक हम सबको बस हमारे लिए आया है, इट्स वीकेंड सो व्हाई नॉट मेक इट अ फैमिली वाला टाइम. तो अब बता लीजिए कि परिवार के साथ रविवार कैसा चल रहा है, बताइए कि आपके घर में इस समय रविवार की दोपहर कैसी हो रही है. पूरा परिवार साथ बैठा हुआ है, कोई टीवी देखता है तो कोई बातें कर लेता है और मम्मी सबके लिए चाय बनाती है. अरे वाह, यानी कि परिवार के साथ रविवार की असली खुशी परिवार के साथ ही होता है, जहाँ पर पूरे हफ्ते के लिए पूरे सप्ताह के लिए सब अपने अपने कामों में व्यस्त तो रहते हैं, बिजी हम सब तो रहते हैं ना. लेकिन आज का दिन अपने परिवार के नाम कीजिए, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी हंसी और एक कप गरम गरम चाय, तो और क्या, संडे वाला जो मूड है वो बिल्कुल बन जाएगा. हमारे साथ रेडियो मस्ती, स्टे वेल कनेक्टेड. यहाँ हंसनी है जो आपके साथ ही रहने वाली है अब टिल 4 PM.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: आपकी तकदीर में है तो क्यों नहीं, लिखा है ना, लौट कर जरूर आएगा या फिर आएगी। वो लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट है जिसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है, अधूरा सा लगता है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, बट तुमसे बात करते ही मेरा मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। दिन चाहे कितना भी बिजी हो, यहाँ पर ख्यालों में तुम्हारे लिए एक स्पेशल कोना हमेशा रिजर्व्ड रहता है। तुम पास हो या दूर, दिल को हर वक्त बस तुम्हारी ही प्रेजेंस फील होती है। थैंक यू सो मच ऋषभ जी फॉर शेयरिंग द ब्यूटीफुल लाइंस। और एक बार फिर से हम सभी का स्वागत जो करेंगे, जितने भी हमारे आशिक हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं ऑफकोर्स फॉर आज का प्लग एंड प्ले। ऑफकोर्स हम सभी का स्वागत तो करते ही रहते हैं, और चाहे आप अपने प्यारे से इस समय दूर हो तो दूरियों को मिटा लेता है आपका और हमारा रेडियो मस्ती। सो कीप लिसनिंग, ऐसे ही आप एंजॉय करें द म्यूजिकल शो अप टिल 4 पीएम।
1: प्लग एंड प्ले
2: RM2
1: प्लग एंड प्ले।

0: Center 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
4: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। कल सोमवार शुभ मुहूर्त में गणपति बापा की स्थापना होगी, जो पूरा वातावरण कल पूरा वातावरण गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के जय जयकार से गूंज उठेगा। गणेश स्थापना के अवसर पर विधि विधान से पूजा आरती और मंत्र उच्चारण के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। हिंद महासागर इलाके में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग IOC और सिहाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। इस समझौते परिवहन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सोहेज में आज सुबह करीब 40 वर्ष की उम्र में की एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका। विदेश में इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार जावा सागर में एक दुर्घटनाग्रस्त इंडोनेशियाई यात्री नौका से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 107 लोगों को बचा लिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। La Chapelle Ardente et Lienson, Railroad Boubassemé, à 78 salle, 78 years old, Shri Prakash Debi. Shri Prakash Debi, jinhe log Prakash naam se adhik jante the, ki mrityu ho gayi hai, ve Rose Hill sthit Magasin Debi ke malik the. Inki arthi kal din ke 2:30 baje, kal din ke 2:30 baje, La Chapelle Ardente et Lienson, Railroad Boubassemé se uthakar Shibel, कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाश देवी नंबर 9 शॉल ली स्ट्रीट रोज हिल के रहने वाले थे। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 84 साल के 84 years old श्री अद्वैत रंगतुआ, जिन्हें लोग अद्वैत नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन से उठाकर थ्रामामेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
5: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Musty, your number one Bollywood station.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: गजानन महाराज आ रहे हैं घर आंगन को खुशहाल बनाने के लिए. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सफलता लेकर आएंगे. हर विघ्न दूर हो और हर मनोकामना पूर्ण हो. गणपति बप्पा मोरिया का जाप हम करते रहेंगे. जहां गणपति बप्पा का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ दुख टिक नहीं सकता है. बप्पा आपके घर में बस खुशियां लेकर आ रही हैं. आपके घर को हमेशा खुशियों और प्रेम से भरकर रखें. और बप्पा जो आएंगे, बप्पा जो ऑलरेडी है आपके घरों में, हमारे जीवन में, आपके हर कदम को सही दिशा दें और हर मुश्किल को आसान करें और आपके जीवन में नई खुशियों के द्वार बस खोलें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ द म्यूजिकल जर्नी ऑफ प्लग एंड प्ले, जहां पर हंसनी का साथ बरकरार है जी. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून. रियली होप कि सब ठीक है, सब सेफ है एंड आप सब तो जुड़े हुए हो जस्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिक हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती. और इस फाइव ईयर्स जर्नी में

प्रोजेक्ट में बहुत ही बिजी है, प्रिपरेशंस जो है बड़े जोश के साथ आप पूरे कर रही हो और कई जगहों पर स्थापना की गई है, तो मंगल मूर्ति मौर्या का जाप गुणगान आप करते रहिए और कई तो कल स्थापना करने वाले हैं सुबह के वक्त और दिन भर के लिए, रात भर के लिए जागरण और पूजा पाठ, भजन कीर्तन झाकरी जो होने वाली है धूमधाम से, और जो म्यूजिकल झाकरी है वो बिल्कुल अपने रिहर्सल्स में इतने बिजी है। यस, अभी तो जो सबसे बड़ी रात है वो तो आएगी बप्पा की, जो गुणगान है हम करेंगे सब भक्तगण। तो भक्ति की बात करें तो एक भाई है जो आज जन्मदिन मना रहे हैं, राकेश भाई, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। राकेश दुबोरी जो बिलमौसी से है और इस समय वो गंगा तालाब में है, वो मंदिर में गए थे प्रेयर्स करने के लिए, मंगल महादेव के दर्शन करने के लिए। तो और क्या चाहिए आपके इस जन्मदिन को और भी पावन बनाने के लिए, सम्मिलकर पूरे टीम के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट विशेस, विशिंग यू अ वंडरफुल बर्थडे। भाभी जी के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पूरे परिवार के साथ दुबोरी परिवार है जो आए हुए हैं टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत ही खास दिन है आपका और सब के लिए जो इस समय साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आज का स्पेशल दिन। तो चलिए धूमधाम से मनाएंगे आपके इस स्पेशल दिन को, हंसने के साथ हम सब मिलकर गाएंगे उन सब दोस्तों के लिए जो आज अपने स्पेशल दिन मना रहे हैं। Wishing everyone happy birthday.

आप लोगों के आने से इट्स ऑलवेज बीन स्पेशल, हमेशा था, है और हमेशा रहेगा. ये साथ, ये बंधन, ये प्यार, ये आपकी दोस्ती जो हमेशा कायम रहेगी ऑन रेडियो मस्ती. सो दिस इज इट आप सबके लिए. द फील ऑफ द शान कंसर्ट जब उन्होंने गाया लाइव हम सब फैन फॉलोअर्स के लिए है शो ना, तो क्यों नहीं यहाँ पर वी ब्रिंग बैक द फील ऑफ वो प्यार, वो जादू. एंड द मैजिक गोज ऑन. आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो अपने शोना को, तो चलिए इस मोमेंट को हम कैद कर लेते हैं. ये आपके लिए जरूर चल रहा है.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Back with the musical show. That's our plug and play, and really having a nice time, a nice weekend. सबको जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, हम सफर बन चुके हैं, और बिल्कुल जो आपने भेजे हैं मैसेजेस वो अभी टाइम हो चला है टू हैव योर डेडिकेशंस. आपने सोचा है कि हम भूल गए हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पर आप अपना टाइम निकालते हो, अपने मैसेजेस को शेयर कर लेते हो, तो इतना तो हक आपका होता है. और बस अभी जो टाइम आया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हैं. सो वी हैव इट फॉर वनीशा के लिए जो शोना वाला गाना सुन रही थी, एंड मिसिंग योर शोना वेरी मच. तो उनके लिए था एक स्पेशल वन. थैंक यू वनीशा फॉर शेयरिंग योर लव. और आपके लिए, सभी लोचन परिवार के लिए भी, वी हैव गॉट अ स्पेशल ट्रैक कमिंग नेक्स्ट वन. एंड हेलो एंड हैप्पी वीकेंड टू रोहन भाई. रोहन रामलोचन का स्वागत हम करना चाहेंगे, और गाना बिल्कुल उनके लिए चल जाएगा, फॉर हिम टू गेट वेल सून. और जो गाना वो सुनना चाहते हैं, ये तो हम कोशिश करेंगे टू प्ले योर ट्रैक. ओके, तो यहाँ पर जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, अपनों को याद करें. दिस इज़ योर शो, जहाँ पर ये जो प्यार है आप शेयर कर सकते हैं. ऑन 5 4 9 12 94. हेलो, नमस्ते.

कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और इस पावन माहौल में जहाँ पर सभी भक्तगण व्रत धारण कर रहे हैं गणपति महाराज की आराधना में, आप सुनना चाहेंगे एक वंडरफुल 90s। ओके जी, हम चलाएंगे ये मीनाक्षी के लिए रहेगा, जो बाबूचिक से है, इस समय साथ निभाती हुई वो चली आई है रेडियो मस्ती। सो आपका

सभी भक्तगण के लिए जो यहाँ पर साथ निभा रही है और बहुत बड़ी रात आने वाली है गणपति महाराज की आराधना बस कई भक्तगण करने वाले हैं पापा आएंगे घर में श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख का उजाला सफलता की राह आसान हो और परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे ये हमारी शुभकामनाएं हैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं बस मंगल कामनाएं सभी के लिए जो गणेश चतुर्थी को मनाने वाले हैं धूमधाम से बप्पा को घर में आने वाले हैं और जुड़े हुए हैं उधर रेडियो मस्ती तो ये शुभकामनाएं

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: धूमधाम से यहाँ पर हमने चलाया है ये गणपति बप्पा वाला गाना हमारे सभी दोस्तों के लिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं. Just to have the feel of गणेश चतुर्थी तो बिल्कुल रेडियो मस्ती इज हियर इस पावन पर्व को और भी शुभ बनाने के लिए. और एक दोस्त है जो यहाँ पर साथ निभा रही है लविंग द प्लेलिस्ट. तो ये गाना था सशरी आपके लिए जी. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग प्लग एंड प्ले. नमस्ते टू ऑल. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल द भक्तगण. यहाँ पर स्वीट परिवार इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं गणेश भगवान की आराधना में. यहाँ पर वी हैव अभगन परिवार तापसी एंड बिमल परिवार. आप हो सुया बियारी जो कुंगुमा से यहाँ पर कनेक्टेड है टू रेड मस्ती. आप तो हम कहना चाहेंगे गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. विघ्नगर हर्ता से हम यही शुभकामनाएं करना चाहेंगे. अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना. हमारे जीवन से कभी दुख और बाधाएं जो है वो ना आए. अगर आए भी तो बप्पा सबको दूर करें. घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें. बप्पा की कृपा जहां होती है ना वहां पर हर मुश्किल आसान हो जाती है. गणपति जी आपके जीवन में नई आशा नई खुशियां और सफलता लेकर आए. ये हमारी मंगल कामनाएं हैं. गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. चलिए यहाँ पर जाने का समय आ गया है. इतना सारा प्यार आप लेकर आए हो हमारे इस शो में. आप सबको थैंक यू. तो बस हम कहेंगे अभी इशारा है ठीक 4 बजे सुनेंगे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद दैट विल बी अनदर म्यूजिकल जर्नी विद अजय संजय जो लेकर आएंगे आज का बॉलीवुड टकटका टक. सो बी विद हिम. मुलाकात हमारी तो जल्द ही होगी दोबारा. तब तक के लिए स्टे सेफ. आई विश यू ऑल अ हैप्पी वीकेंड.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
3: Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। सुगेज में आज सुबह लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रक के पिछले पहिए से जा टकराया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामू घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका।

का। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जान जा चुकी है। देश की सड़कों पर अब तक की कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपये के प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रही हैं। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के अनुसार इस नए उपाय को लागू करने के मुख्य कारण पार्सल की संख्या में भारी वृद्धि और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत है। पिछले साल मॉरिशस के लोगों ने 17 लाख से अधिक पार्सल आयात किए थे। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग और सिकाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया और इस समझौते पर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से इस सेक्टर में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल टैंकरों को दी जाने वाली सैन्य सुरक्षा, खासकर हवाई सुरक्षा के समय को सीमित कर दिया है। ये कदम इस अहम समुद्री रास्ते पर चलने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया। उधर अमेरिकी सेना ने टेक्सास में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के 2 दिन बाद अपने सभी अपाचे हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अभियानों को अस्थायी रूप से स्टैंड डाउन करने की घोषणा की है। इस हादसे में उड़ान पर सवार दोनों सैनिकों की जान चली गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। सायंकालीन समाचार बुलेटिन आप 6 बजे सुन पाएंगे विस्तार के साथ, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। ये तो हम जानते हैं कि गणेश महोत्सव के इस आखिरी वीकेंड पर आप गणेश महोत्सव से पहले इस आखिरी वीकेंड पर आप में से कितने लोग इस समय गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो आपका साथ निभाने के लिए हम आ चुके हैं रेडियो मस्ती की लहरों पर और भगवान श्री गणेश सबों को शक्ति दे, साहस दे, उत्साह दे, भक्ति दे, जिससे कि अपनी तैयारी को पूरी तरह से वे संपन्न कर पाए, क्योंकि कल स्थापना का दिन है, कुछ जगहों पर आज स्थापना की जा रही है। सो जितने भी लोग काम पर लगे हुए हैं, अपने घर को सजाने में या साफ करने में लगे हुए हैं, या तो अपने बच्चों के संग कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, आप सबों का स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस म्यूजिकल सफर ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर फेवरेट रेडियो स्टेशन।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: शाम के 4:20 होने को है टाइम फॉर यू टू प्ले विद एमबीसी टू प्ले विद रेडियो मस्ती एंड विन टू टिकट्स फॉर द सियाक ज़ावाता टिकट ईच टिकट वर्थ 700 रुपीज सो 1400 रुपीज वर्थ टिकट्स फॉर यू टू बी वन गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक फ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली Catch a Sieg Zavata at Bagatelle with shows every Thursday and Friday at 6 p.m. and Saturday and Sunday at 14:30 p.m. and 5:30 p.m. For bookings and information, call on 52 50 94 13. Sieg Zavata. Don't miss the magical big show. So, इन दो टिकट्स को हासिल करने के लिए आपको हमें इस सवाल का जवाब देना है by sending me a message on 549-9294 जवाब के साथ अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता जरूर शामिल करें एक और बात if you just won in on Radio Masti on MBC for the past one month please अन्य लोगों को आप मौका दें So, इस सवाल का जवाब आपको हमें देना है How do we call a bicycle that has only one wheel? How do we call a bicycle that has only one wheel? और जिसको आप देख पाएंगे बेशक in le siècle Zavata. जवाब दीजिए by sending me a message quick on 549-912-94.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो कुछ समय पहले हमने आपसे सवाल किया था, हाउ डू वी कॉल अ बाइसिकल दैट हैज ओनली वन व्हील, और जिसे आप सियाक जवाता में जरूर देख पाएंगे। और सही जवाब है यूनिसाइकल। यस, जिसके दो पहिए होते हैं उसको कहते हैं बाईसाइकिल, बाइसिकल, और जिसका एक ही पहिया होता है उसे कहते हैं यूनिसाइकल। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजा, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा और जिनका नाम अभी तक हमने अपने सर्वर पर नहीं देखा, और जिनके नाम जाता है ये इनाम ऑफ 2 टिकट्स ऑफर टू यू बाय आशिल जवाता, वो हैं अली ब्रियो कास्टेल की रहने वाली कविता संतोखी जी। आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट वॉन्ट 2 टिकट्स टू हो सिया के जवाता। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस filled with magic, frills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Catch a Siak Zavata at Bagatelle with shows every Thursday and Friday at 6 p.m. and Saturday and Sundays at 4:30 p.m. and 3:30 p.m. For bookings and information, please call on 5250-9413 Siak Zavata. Don't miss the magical big show. आपको अपने टिकट्स को हासिल करने के लिए एमबीसी आना होगा विद योर आईडी कार्ड बिटवीन 9 AM एंड 3 PM। सो बधाई हो, और जिन लोगों ने कोशिश की लेकिन अब की बार आपकी जीत नहीं हुई, कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग, नेक्स्ट टाइम इट माइट बी योर टर्न।

0: रेडियो मस्ती
1: आपके साथ, आपका इश्क चलता और हम चलते आपके इश्क के साथ. थैंक यू फॉर गिविंग मी कंपनी ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. संजय आपके साथ. हाय टू निकलेश एंड बनी मैंडम फैमिली फ्रॉम रोज हिल, शारदा एंड सिपोसा फैमिली ऑफ ली स्ट्रीट क्यूट पेपर, किसना जी और राजमन फैमिली ऑफ नुवेल फ्रांस, जया एंड पुरन फैमिली फ्रॉम सेंट क्वा, रेशमा एंड रामकिशन फैमिली ऑफ सुल्फिकिन मोदे वाक्वा, प्रेमा एंड रामदनी फैमिली एंड बस्किट फैमिली फ्रॉम ग्रांबे, केसन एंड राजमन फैमिली फ्रॉम नुवेल फ्रांस, नर्तिका एंड किमकरन फैमिली फ्रॉम मोसेल मोलावेनी वी आर एस सेंट पियर, छया देवी एंड सुकई फैमिली फ्रॉम सेबास्टोपोल, केशव एंड राजमन फैमिली फ्रॉम नुवेल फ्रांस, नसरुल एंड मोहन फैमिली फ्रॉम करबला कॉन्डमास्क, साथ ही साथ शर्मिला एंड बस्किट फैमिली फ्रॉम सेंट आंद्रे एंड सीता एंड बलोराम फैमिली फ्रॉम बेनारस. आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए एंड टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम. नमस्कार भाई संजय जी, मैं हूँ भाभी अंजू फ्रॉम नुवेल फ्रांस, एज यूजुअल लिसनिंग टू योर शो व्हाइल कुकिंग, विशिंग एवरीवन अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी. गॉड ब्लेस आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. और ये मैसेज है आपादू फैमिली की ओर से, लिखते हैं, लेट योर फेथ इन बप्पा बी बिगर देन योर फियर्स.
2: रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती,
1: ओम गंग गणपते नमः.
2: आने से
1: दागन श्वेता रविश पिशर रविशा की ओर से प्रमोशन हुआ
2: और सुन

0: एक चकचका टक
1: ऑरेंज रेडियो मस्ती
2: बारिश में दीवाने होने के लिए हम भी तरस रहे हैं। 4:52 यू लिसनिंग टू म्यूजिक टक टक टक संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। शुक्रिया आपके सभी मैसेजेस के लिए। ज्योति जी हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम रातुबी नगर, आपको हम करते हैं सलाम। साथ ही साथ ईच एंड एवरीवन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस आइलैंड एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, विदेश में भी जो हमारे साथ हर संडे को जुड़ जाते हैं, आपको हमारा सलाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रभु जी का नाम लेते हुए हमने इस दूसरे घंटे की शुरुआत की। दूसरे घंटे का श्री गणेश किया, सबों को शुक्रिया साथ निभाने के लिए। महाराज जी जो आप कटुबोन से हमारा साथ निभा रहे हैं, आपकी ओर से वेंकना राजकुमार कुरपेप को, गणपति बापा मौर्या पांचू और सी सहाय फैमिली को भी मंगल मूर्ति मौर्या फ्रॉम कटुबोन साथ निभाने के लिए शुक्रिया। ललिता जीतन जी हमारा साथ निभा रही हैं। देखते हैं ओल्ड सॉन्ग्स और जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इस समय ये मैसेज है इनकी ओर से, मिला दिबी दिन जो

देखते हैं अनीता की अनीता जी जो फ्लक्स है हमारे साथ निभा रही हैं थैंक यू कीन एंजॉयिंग ऑल द नाइस सॉन्ग्स गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लिसनर्स को वो लिखती हैं साथ ही साथ ये मैसेज है श्याम जी की ओर से लिखते हैं इस समय वो चाय लाइची की चाय बना रहे हैं और रेडियो को सुन रहे हैं फुल वॉल्यूम बोन अपेटी जितने भी लोग चाय के लिए बैठ रहे हैं शुभ आहार गणपति बाप्पा मोरया

0: म्यूजिक टकटकाते
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हम यकीन है कि आप जहाँ पर भी होंगे, यू हैविंग अ वेरी नाइस टाइम विद योर फैमिली, विद ऑल दोस जो एक साथ में आकर एकजुट होकर तैयारियां कर रहे हैं इन द शिवालयाज, और जिन घरों में आने वाले दिनों में

बप्पा को बिठाया जाएगा जिसकी जहां पर स्थापना की जाएगी सो ऑल द यूथ आई जस्ट कम फ्रॉम लेस्पेरांस यहां पर तीन तीन जगहों पर हम गए और रियली व्हाट एन एटमॉस्फेयर व्हाट अ वाइब इन दैट रीजन जहां की हवा में भी खुशबू है और वहां पर बप्पा को बिठाया जा रहा है व्हाट अ फेस्टिव मूड अक्रॉस द आइलैंड लेते हैं ये मैसेज नमस्ते संजी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल एंड माय स्वीट फैमिली हु इज प्रेइंग गणेश अ ब्लेसिंग एवरीवन ब्लेसिंग एंड गोइंग टू बगन फैमिली तपसी फैमिली एंड बीमल फैमिली मैसेज है सुया जी की ओर से फ्रॉम कोंगोमा थैंक यू ये मैसेज आया है नाशिन की ओर से लिखते हैं अ ट्रूथ कैन वॉक नेकेड बट अ लाई ऑलवेज नीड्स टू बी ड्रेस्ड फ्रॉम खलील जिब्रान थैंक यू नाशिन जी So keep on sending me your messages on 5499-1294. Ganpati Bappa Moreya. This one going specially for the Sisai family from Ketterborne.

0: छोड़ के वाइब्रेशन से आप बच नहीं पाएंगे. यू कांट रिमेन सिटिंग ओनली बाय लिसनिंग टू दिस ढोल. इट्स ऑल द मैजिक ऑफ गणेश उत्सव स्प्रेडिंग अक्रॉस मॉरिशियस एंड इन द होल वर्ल्ड.
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टक टकाटक। आरएम2 रेडियो।

0: Indian look. और आज we've got not less than six styling tips. First is statement blouses and structured tops. दूसरा reinvent the draping. तीसरा mix textures and fabrics. चौथा swap leggings for trousers. पांचवा embrace fusion wear. और आखिरी और छठा play with palettes. शुरुआत करते हैं statement blouses and structured tops. Swap basic short sleeve cholis for corset style bodice blouses. High neck sheer numbers or tailored crop tops paired with traditional saris or lehengas. Tip number two, reinvent the draping. Modernize your sari by adding a sleek waist belt to cinch the silhouette, or opt for a pre-draped and jumpsuit variation for effortless mobility. तीसरा जो टिप लाए हैं आपके लिए मिक्स टेक्सचर्स एंड फैब्रिक्स. इसमें क्या है, यू पेयर हैवी रो सिल्क कुर्ताज विद लाइट वेट कॉटन सिल्क प्लाजोज और लेयर शीर रोजेट दुपट्टाज विद सॉलिड मोनोक्रोम सेट्स फॉर सटल डेप्थ. चौथा टिप, स्वैप लेगिंग्स फॉर ट्राउजर्स. अब इसमें क्या करते हैं, यू रिप्लेस टाइट चूड़ीदार विद स्ट्रेट कट पैंट्स, सिगरेट ट्राउजर्स और क्रॉप्ड प्लाजोज अंडर कुर्ताज फॉर ए क्लीन आर्किटेक्चुरल फिनिश. पांचवा जो टिप है आपके लिए, एम्ब्रेस फ्यूजन वेयर. और ये कैसे होता है, यू पेयर एन एथनिक लहंगा स्कर्ट विद अ कैजुअल क्रिस्प वाइट शर्ट और थ्रो अ स्ट्रक्चर्ड नेहरू जैकेट और ब्लेजर ओवर अ सिंपल लॉन्ग कुर्ता. वाओ. And lastly, you play with palettes, opt for soft pastels, जैसे कि mid green, जैसे कि blush pink, जैसे कि soft lavender for daytime events, reserving jewel tones like emerald, royal blue, deep maroon for evening celebrations. So enjoy your day, enjoy your event in सभी tips के साथ. And have a blast.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Music, Takta Kata.
2: RM2, Radio Musti.

0: Actu.
1: Radio Musty.
2: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, nous amené. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musty.
5: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
6: अरे सुन सुन।
7: यस मां।
6: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
7: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
6: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

बरसात की धुन सुनते सुनते आप ये भी जान लीजिए कि आई थिंक इट इज अभी नो इट वॉज माया जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन में हमें सुनाया कि मंगलवार से या तो कल शाम से मौसम बदलने वाला है, सर्द हवाएं बहने वाली हैं और रह रहकर बारिश होगी। बारिश की हमें सख्त ज़रूरत है, लेकिन इस सितंबर महीने में ठंड का मौसम अभी तक बरकरार है, काफ़ी सरप्राइजिंग है। इट्स ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो आई सपोज। चले आपको ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां पर एक मैच हाफ टाइम तक पहुंचा है एंड ब्राइटन इज लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट कोवेंट्री। गोल स्कोर्ड ऑन द 36 मिनट बाय शागालांपुस कोस्टुलास, डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस, लेकिन इस गोल के बदौलत अगर इसको यही रहा तो ब्राइटन विल कम इन फोर्थ पोजिशन विद 2 wins ऑलरेडी इन 4 matches प्लेड। बैक टू यू मैसेजेस। गणपति बप्पा मोरिया, मेरे प्यारे शिवम और लेशना जो कनाडा में है, मेरी प्यारी बेटी नीलम के लिए बप्पा मेरे बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करे। ये है मैसेज मॉम माला की ओर से फ्रॉम सोलफेरिनो।

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
4: Radio Musti.
5: North, South,
4: 103.5.
5: East, West,
4: 96.4.
5: Center,
4: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
7: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: इस समय शाम के ठीक 6 बज रहे हैं।

रविवार 13 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल एम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया एंड ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। आज सुबह हसोगेज में एक भारी वाहन के टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। 1 सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की प्रतिमा की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। विदेश स्तर पर ब्रिक्स समिट

0: का समापन हो गया। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर पड़ता है ज्यादा असर। नमस्कार और आदाब, सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि कल आम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया और ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका ने इस परियोजना के तकनीकी स्तंभ को विकसित करने के लिए OTL ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य है मॉरिशस को एक प्रमुख ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म और अफ्रीकी व अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए एक प्रवेश द्वार बनाना। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: शनिवार 12 सितंबर को आम्स्टर्डम में इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेंशन के दौरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका मीडियाक्राफ्ट और RTL के साथ जुड़े ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप ने मॉरिशस में एक मीडिया सिटी लॉन्च करने की अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। पॉम्प्लीमिसेस में मूल ढांचे में ऑडियो विजुअल चैनल की कई कड़ियाँ मौजूद होंगी, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजिंग सेवाएं। इलाके में मॉरिशस जिस जगह पर स्थित है ये परियोजना के लिए केंद्रीय पहलू। मीडिया सिटी मॉरिशस के CEO नजीब गुइया ने कहा, मीडिया सिटी मॉरिशस एक कॉन्टिनेंटल हब है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी है। मीडिया इंडस्ट्री के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के लिए अफ्रीकी महाद्वीप की ओर जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एवं क्रिएटिव ऑपरेटरों ने बहुत पहले से ही अपने अफ्रीकी विभाग कायम कर दिए हैं। कई हबों में जैसे कि दुबई मीडिया सिटी है, मैनचेस्टर है, ब्रसेल्स और पेरिस में भी आज मीडिया सिटी मॉरिशस इन्हें उनका प्रॉक्सिमिटी हब प्रदान कर रहा है। ठोस रूप से देखा जाए तो हब में 3 स्टूडियोज होंगे, बड़े प्रोडक्शंस के लिए 1000 वर्ग मीटर, मैगजीन्स के लिए 5000 वर्ग मीटर और न्यूज तथा लाइट फॉर्मेट के लिए 250 वर्ग मीटर। इस मीडिया डाटा सेंटर की बदौलत अफ्रीकी ऑपरेटर अपने कंटेंट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, इन्हें स्टॉक कर सकेंगे और वितरित भी कर सकेंगे। सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी तथा गतिविधि बरकरार रखी जाएंगी। इस स्थल पर स्थायी रूप से कार्यरत एक सुपरविजन सेंटर होगा और साथ में पोस्ट प्रोडक्शन की क्षमता और मल्टीप्लेटफॉर्म प्रसारण भी। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप के COO फ्रेडरिक फेवेज ने कहा, ये विचार कर रहे थे कि एक सोवरेन सेंटर हो अफ्रीका के लिए, मकसद है पूरे अफ्रीका इससे लाभ उठाए, यूरोप में ग्राहकों को प्रस्तावित सेवाएं अफ्रीका के लिए भी प्रदान करें, अफ्रीकी दर्शकों, ग्राहकों एवं साझेदारों के लिए। प्रशिक्षण की एक अहम जगह होगी, क्षमताओं का क्रमिक हस्तांतरण और दूसरे चरण में ऑडियो विजुअल पेशे के लिए समर्पित एक टेक्निकल स्कूल भी। इस परियोजना का उद्देश्य है मॉरिशस को एक टेक्नोलॉजिकल मंच की तरह और कॉन्टिनेंटल मंडी की ओर एक द्वार की तरह निर्धारित करते हुए एक उभरते हुए सेक्टर में अफ्रीका की क्षमताओं को बढ़ाना।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आज सुबह सोगीज में एक भारी वाहन से टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, तभी वह ट्रक के पिछले पहिए से जा टकराया। हादसे के 5 मिनट के भीतर ही सैमी मौके पर पहुंच गई थी, परंतु उनकी जान नहीं बचा सकी। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यह 43वें मोटरसाइकिल चालक है और हमारी सड़कों पर कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। काविन तापेसौ की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: सुगैज में रेजवी की ओर आज सुबह 10:15 एक भारी भरकर लॉरी और एक मोटरसाइकिल एक दुर्घटना में संलग्न। दुर्घटना स्थल पर प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मोटरसाइकिलिस्ट ने लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉरी के पीछे वाले

0: पहिए के साथ टकरा गई। लॉरी चालक को पता ही नहीं चला कि दुर्घटना हुई है और 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाकर वो रुका। सामी दुर्घटना के 5 मिनट बाद ही पहुंच गया स्थल पर, लेकिन सेकोंस्टांस सैफे के रहने वाले 40 वर्षीय मोटरसाइकिलिस्ट को सर पर गहरी चोटें लगी और अस्पताल जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय फाउस लेन पर मौजूद एक गवाह ने बताया कि उन्होने क्या देखा।
1: Camion sur le troisième lane, motocyclette attisis à gauche au lit derrière camion. Il passe pour tout lisse de ce long le mot. J'espère que le camion là arrive en ligne redoublée. Mais le camion vu qu'il est le la montant, ligne ralenti, à vitesse motocyclette, il vient battre lit en plein à gauche. Il est en bas, il s'y est là.
0: साल के शुरुआत से हमारी सड़कों पर 109 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 43 मोटरसाइकिलिस्ट हैं।
2: कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ सड़क हादसों के पीड़ितों के परिवार आज तक जांच पूरी होने और जिम्मेदारियां तय किए जाने का इंतजार कर रही है। ये लंबा इंतजार उनके दर्द को और बढ़ाता है और न्याय पाने की उनकी कोशिशों में देरी कराता है। डीपीपी के कार्यालय के अनुसार कानून के शासन वाले एक देश में इस तरह की देरी सामान्य नहीं रही। पहले सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रहे हैं। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के अनुसार इस नए उपाय को लागू करने के मुख्य कारण पार्सल की संख्या में भारी वृद्धि और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत है। पिछले साल मॉरिशस के लोगों ने 17 लाख से अधिक पार्सल आयात किए थे। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
3: घंटों तक पार्सलों का आना जाना रहता है। रोज बड़ी तादाद में इन्हें कई देशों से लाया जाता है। पार्सल पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदार अफसर राधिका रामलाल बताती हैं, जब हवाई अड्डे से पार्सल यहाँ आते हैं तो हमें एक एक करके हर पार्सल को स्वीकार करना पड़ता है। हर एक की स्कैनिंग की जाती है। कस्टम अफसर रिलीज या डिटेन होने वाले पार्सलों का फैसला लेते हैं। हम सॉर्टिंग करते हैं, फिर सभी इलाकों के डाक घरों की ओर इन्हें भेजते हैं। पोस्टमैन डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने तक हर पार्सल को कई मरहलों से लाजमी तौर पर गुजरना पड़ता है। कई ऑपरेटर डिलीवरी करते हैं। मॉरिशस पोस्ट लिमिटेड सबसे ज्यादा पार्सलों का संचालन करने वाली कंपनियों में से एक है। हर महीना डाकघर 20,000 पार्सलों का ट्रांसफर करते हैं। CEO Dr. Jayaraj Itu बताते हैं, आज डाकघर को विदेश से कई प्रकार के पार्सल मिलते हैं, डिब्बों में और छोटे पैकेट्स में। स्मॉल पैकेट्स को पोस्टमैन द्वारा भेजा जाता है। कस्टम सेवाओं के मुताबिक सन 2023 में 4 लाख से ज्यादा पार्सल विदेश से मंगवाए गए थे। सन 2024 में ये आंकड़ा 9,20,000 के पार दर्ज हुआ और 2025 में 1.7 मिलियन से ज्यादा पार्सल मॉरिशस लाए गए थे। पहली सितंबर से टेमू, अली एक्सप्रेस, शीन और दीगर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीदारी की कीमत ज्यादा है। एमओआरए के सेक्शन हेड जगदीश सिंह नंदू बताते हैं, विदेश से मंगवाए जा रहे पार्सल बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोगों की बुरी नीयत है जो इन पार्सलों में गैर कानूनी चीजें लाते हैं, जैसे ड्रग्स। इसीलिए 150 रुपए का प्रोसेसिंग फी लागू है। सामानों की कस्टम प्रक्रियाओं के लिए एमओआरए को अधिक संसाधनों की जरूरत है, जैसे अफसर, मशीनें, स्निफर कुत्ते
4: वगैरह। Ressources en termes de ressources humaines et aussi nous avons besoin de mettre plus d'équipements comme un scanner, chien renifleur.
3: 150 रुपए का नॉन रिफंडेबल फी हर पार्सल पर लागू है जो बिक्री के मकसद से मंगवाए नहीं गए हैं।
2: एक्रीज स्टॉफ बाराउनाउस्की के लिए उम्र सचमुच सिर्फ एक नंबर है। 88 साल की उम्र में इस महान पोलिश नाविक ने एक अविश्वसनीय चुनौती शुरू की है। सन 1920 के दशक की क्लासिक डिजाइन वाली अपनी मेटोरिया पर सवार होकर अकेली अपनी तीसरी दुनिया की यात्रा पूरी करना। जी हाँ,

0: पिछले साल के अंत में कैनेरी द्वीप समूह से रवाना होने के बाद उन्होंने हाल ही में कैनेरी द्वीप समूह लौटने से पहले हिंद महासागर को पार किया और मॉरिशस में पड़ाव डाला। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: 88 वर्षीय क्रिसिस्टोफ बारानोव्स्की घबराते नहीं हैं। पोलैंड के ये नेविगेटर इन दिनों अकेले दुनिया की अपनी तीसरी सैर पर हैं। 15 मीटर की ऊंचाई वाले मेटेओ पर सवार 1920 की ही तरह के यास्ट की तरह इसे बनाया गया है। उन्होंने अपनी सैर के 50% भाग से अधिक पूरा कर दिया है। 2025 के नवंबर महीने में वे स्पेन के पास कनारी टापुओं से समुद्र में निकले। अटलांटिक में पहली बार गुजरने के बाद से वे पनामा कैनाल से होते हुए प्रशांत महासागर में पहुंच गए। इसके बाद वे ताहिती में रुके, फिर फिजी टापुओं में। इसके उपरांत वे ऑस्ट्रेलियाई तटों तक पहुंच गए। वे कुछ सप्ताह तक डार्विन में भी रुके। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और मास्कारेंस के बीच का फासला तय करना उनके सफर के सबसे अहम चरणों में से एक। लेकिन क्रिसिस्टोफ बारानोव्स्की के लिए विशाल समुद्री स्थल के कोई राज ही नहीं। 1972 और 1999 की कामयाबी के बाद ये धरती की उनकी तीसरी सैर है। वे कहते हैं,
2: Solo sailing is difficult because you are not supposed to sleep too long.
1: अकेले समुद्र में नाव चलाना काफी मुश्किल है क्योंकि लंबे समय तक सो नहीं सकते हैं। अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि कब सोने के लिए थोड़ा समय मिले, आराम कर सके। जब परिस्थितियां कठिन हो तो जैसे तैसे ये करना ही चाहिए, हमेशा आसान नहीं है।
2: And always waiting for some sleep. So when I come on land, then I'm sleep long.
1: लकड़ी से बने अपने इस ढांचे की पूर्ण जांच के बाद और साथ में 3-4 सप्ताहों के ब्रेक के बाद वे अपने मेटियो पर सवार फिर से निकल पड़ेंगे। रुख दक्षिण अफ्रीका की ओर। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वे ड्रबन में रुक सकते हैं, जिसके बाद फिर से अटलांटिक की ओर प्रस्थान करेंगे, कनारी टापुओं की ओर। समझा जाता है कि नवम्बर महीने और दिसंबर महीने के बीच वे वहां पहुंचने वाले हैं।
0: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की मूर्ति की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। ये क्रिया केवल धार्मिक नहीं अपितु इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। अपने घर में मूर्ति स्थापित करके प्रत्येक भक्त भगवान गणेश के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। सेवास्तोपोल में भी भक्त मूर्ति स्थापना के लिए एकत्र हुए हैं इस वक्त, और जो भक्ति और भावनाओं से सराबोर पल है। और इस वक्त हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सेवास्तोपोल में है और वहां पर किस प्रकार का वातावरण है, आइए उनके साथ सुनते हैं। सबसे पहले नमस्ते याचना।
3: नमस्ते अभी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, अभी हम सेवास्तोपोल गांव में हैं, जहाँ पर कई परिवार एक साथ एकत्र हुए हैं और कई नौजवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। पड़ोसी सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह पर 107 छोटी मूर्तियों और एक बड़ी मूर्ति, साथ में गौरी माँ की मूर्ति भी है, यहाँ पर इन सब की स्थापना की गई है। इससे पहले वे लोग वहाँ गए थे जहाँ पर उन्होंने मूर्ति बनवाया है। वहां से मूर्ति लेकर वो लोग सेवास्तोपोल आए, जहाँ पर उन्होंने जुलूस में भाग लिया। जुलूस में भी गणेश भगवान की जय जयकार की गई और साथ में उनके गुणगान के लिए झांकरी भी किया गया, और सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर अभिषेक करने आए। यहाँ पर मूर्ति स्थापना से पहले मूर्ति अभिषेक भी किया गया, और सब लोग भव्य तरीके से कल गणपति जी के जन्मोत्सव का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। कल पूरी रात यहाँ पर भी ऐसी ही बप्पा की आरती उतारी जाएगी और फिर उसके बाद विसर्जन किया जाएगा।
0: इन सभी जानकारियों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं याचना। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। केवल 14 साल की उम्र में वे मराठी समुदाय का एक खास चेहरा बन चुके हैं। मोफेचिल में मयूरेश बालू एक युवा नियुक्त

0: पंडित के रूप में अपनी पहली प्रार्थनाएं संपन्न करा रहे हैं। ये लगन उनमें मात्र 3 साल की उम्र में ही पैदा हो गई थी, जिसे वह आज अपनी पढ़ाई और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। 2 सदी पहले भारत से जहाज रवाना हुए थे, जो अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक पूरी विरासत लेकर गए थे। शुक्रवार 11 सितंबर को दुनिया भर से आए उनके वंशज एक ही उद्देश्य के साथ मॉरिशस में एकत्र हुए। इंडियन डायस्पोरा के भीतर संबंधों को मजबूत करना, यही 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का मुख्य उद्देश्य रहा, जिसमें मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, म्यांमार, भारत और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रविवार 13 सितंबर यानी कि आज को समापन समारोह के दौरान धुंदेव बहादुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान एक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। और हिंद महासागर क्षेत्र ने हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच रूपरेखा समझौते को 3 साल के लिए नवीनीकृत करके अपने सहयोग को और मजबूत किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए और 10 साल से पहले से अधिक समय से लागू इस समझौते से पहले ही इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस साझेदारी का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनुसंधान को मजबूत करना। ज्यादा विस्तार पूजा के साथ।
1: हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच इस समझौते का 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण, क्षेत्रीय कूटनीति और वैज्ञानिक विशेषज्ञता के बीच साझेदारी को और मजबूत करता है। इस समझौते के केंद्र में फ्रेगाद ओई यानी हिंद महासागर में कृषि जोखिमों की रोकथाम और प्रक्रिया प्लेटफॉर्म है। ये एक सहयोगात्मक मंच है जो शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक साथ लाता है, ताकि हिंद महासागर के टापुओं को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जा सके। ये हमारी उस प्राथमिकता के अनुरूप है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को विकसित और मजबूत करना है। इसके साथ ही हमारा दृष्टिकोण इससे आगे बढ़कर हिंद महासागर आयोग की एक अन्य परियोजना की ओर भी है, जिसमें कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत मंडी के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस साझेदारी ने पहले ही द्वीपीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान को व्यवस्थित करने और जैव सुरक्षा से जुड़ी कई पहलों को शुरू करने में योगदान दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर कृषि वेधशाला की स्थापना में भी इस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र की कमजोरियों और जोखिमों का बेहतर चित्रण करना है। हमने सहयोग की ऐसी परियोजनाएं शुरू की है जिन्हें विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। इन नेटवर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना था। इनमें स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल थे, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा गया। इसके साथ ही हमारी स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति से जुड़े सवालों पर भी काम किया गया। और आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी आखरी हुई है, जिसका सामना करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस समझौते के माध्यम से मॉरिशस के अधिकारी भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे इलाके में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे टापू में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं मौजूद है। हमारे पास कई प्रयोगशालाएं हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता है। ये एक अच्छी पहल है कि हम अपने आसपास उपलब्ध विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य मिलकर साझा समाधान तलाशना है। इन सभी पहलों का उद्देश्य स्पष्ट है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और पूरे इलाके के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करना।
0: जुमे की रात इस्लामी शकाफती सेंटर पोटली में कौमी के

रात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हामिद हजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकद उल मुकरमा सोसाइटी ने एमबीसी के ताउन से इस मुकाबले का एहतमाम किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत को फरोग देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब है जिसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाया गया था। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।

इस कौमी मुकाबले के फाइनल्स में 9 नौजवान थे। अरबी में किरात का मायने है कुरान की तिलावत करना। मुख्तलिफ इलाकों, मदरसों और इदारों से आए 13 से 17 साल की उम्र वाले इन नौजवानों को तजवीद यानी प्रोनाउंसिएशन, मकामात यानी तर्ज और आवाज़ के हवाले से आजमाया गया। MBC के तावुन से मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी ने इस मुकाबले का इनेकाद किया। पोटवी की जुमा मस्जिद से मोहम्मद हमीद रजा जुमन अव्वल आया है।

0: इस पहले इनाम के लिए उसे उमरा अदा करने का पैकेज और 1000 रियाद मिले।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ब्रिक्स समिट का समापन हो गया है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर असर पड़ता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन में रुकावटों ने दिखाया है कि दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जगह आया संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत मंडपम में सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इस दौरान श्री नरेंद्र मोदी के दोनों ओर चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन नजर आए। कई यूरोपीय देशों में प्रवासियों का मुद्दा चर्चा केंद्र में है और कल इंग्लैंड में भारी मात्रा में हो रहे आप्रवासन के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। अवैध प्रवासियों के आने के बाद से इस देश का तनाव लगातार बढ़ रहा है। उधर स्वीडन में जहां इस रविवार को एक बेहद कड़ा मुकाबला हुआ, दक्षिणपंथी धड़े ने जीत मिलने पर आप्रवासन विरोधी पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेट्स को मंत्री पद देने का वादा किया है।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, परंतु कल सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, कल रात से मैस्कारेंस की ओर से ठंडी हवाएं बहने लगेगी और एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने से ज्यादा ठंड महसूस की जाएगी। साथ ही साथ 3 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान में गिरावट नोट की जाएगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 6:03 पर, जबकि क-

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषुक समाचार सुनते हैं। दिप्लेविस्ट रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 साल के 88 के श्री गोविंद दत्त दुमन, श्री गोविंद दत्त दुमन जिन्हें सब लोग पंडित जयलाल के नाम से भी जानते थे और जो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के पूर्व पंडित थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2:30 बजे उनके बेटे श्री सुभाष दुमन के घर दिप्लेविस रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रारुद बुबासे में 78 साल की श्री प्रकाश देवी जिन्हें सब लोग प्रकाश के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 9 सर चार्ल्स लीज स्ट्रेट रोजेल के पूर्व निवासी थे और साथ ही साथ मगाजे डीबी रोजेल के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे ला शापेल ऑन्डोंट एलियंसन्स रारुद बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन में 84 साल के 84 के श्री अद्वैत रंगतुआ, श्री अद्वैत रंगतुआ जिन्हें सब लोग अद्वैत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MPC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MPC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हर एक गांव हर एक गली हर एक शहर में कल से गणपति बाप्पा विराजमान होंगे कहीं कहीं पर वो एक रात कहीं कहीं पर तीन कहीं कहीं पर पांच सात दस रात ठहरेंगे लोगों की हर एक ख्वाहिश वो सुनेंगे और पूरी भी करेंगे नमस्कार आदाब हमारे तमाम सुनने वालों को आप सबों का स्वागत है टिक टकाटक प्रोग्राम के तीसरे घंटे में
1: म्यूजिक टक टकाटक
2: आरएम2 रेडियो मस्ती

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: रात के 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अनिता जी हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम फिक ऑफ फ्लक, उनकी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुनने वालों को, रेडियो मस्ती के सभी लिसनर्स को। और ये मैसेज आया है फ्रॉम स्विट्जरलैंड, नमस्कार संजी लिखा गया है, ओम गंग गणपते नमः, उमा जी फ्रॉम स्विट्जरलैंड हमको याद कर रही हैं। लिखते हैं कि टुमरो वी विल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी पूजा इन शिवा टेम्पल इन बेन कैपिटल, बेन इज द राजधानी ऑफ स्विट्जरलैंड। वो लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ फ्यू तमिल टेम्पल्स इन स्विट्जरलैंड, नाइस एंड पीसफुल सॉन्ग्स, अप्रिशिएट एज यूजुअल। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, आप हमारा साथ निभा रही हैं। ये मैसेज है अरविंद भाई की ओर से, अरविंद अलगोरी की ओर से फ्रॉम लाल माची लिखते हैं, विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर श्रेया टर्निंग 12 टुमारो सोलमेट श्रेया अलगोरी। सो हमारी ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू श्रेया। आई सपोज कि ये मैसेज पहले आया था, कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू श्रेया, ओम गंग गणपते नमः, अरविंद भाई एंड ऑल द बेस्ट टू द होल अलगोरी फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश महोत्सव।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: एक के बाद एक बहुत ही प्यारे से मैसेजेस हमारे लिसनर्स की ओर से। हेलो नमस्कार भाई जी, वेरी नाइस सिलेक्शन, गणपति बापा प्रोटेक्ट्स यू ऑल एंड शावर्स हिज ब्लेसिंग ऑन एवरीवन, लिसनिंग टू माय फेवरेट रेडियो टीम एंड कुकिंग, लव यू ऑल। RM2 टीम मैसेज है आशा जी की ओर से, हैव अ वेरी नाइस कुकिंग एंड अ वेरी नाइस लिसनिंग, बापा का आशीर्वाद आपकी फैमिली पर भी, यही हमारी प्रार्थना।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यकीनन जहां पर विश्वास रूपिनी विश्वास रूप शिव जी होते हैं और जहां पर श्रद्धा स्वरूपिनी माता गौरी होती हैं वहीं पर गणेश जी वास करते हैं। सो देवियों सज्जनों यहां पर डियर लिसनर्स यहां पर प्रोग्राम टक टका टक समाप्त होता है। हमारे बाद हमारे दोस्त निखिल आ चुके हैं आपका साथ निभाने। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे की रात को 7 बजे। तब तक भगवान श्री गणेश आप सबों के घरों में आप सबों के दिलों में वास करें और उनकी बुद्धि उनका ज्ञान हम सबों का मार्गदर्शन करें, ऐसी हमारी मनोकामना आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, जय श्री गणेश।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार दोस्तों, संडे की शाम है और आज हवा में कुछ अलग ही रंग है ना। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं गणपति बप्पा की आरती हो रही है, कहीं घर में मेहमान आ रहे हैं और कहीं बस रेडियो के साथ आप बैठकर अपनी शाम बना रहे हैं। लेकिन गणेश उत्सव का जो फीवर है वो जोरों शोरों से चल रहा है, तो आज इस बॉलीवुड सिजल में गाने भी होंगे, ऐसे ही बातें भी होंगी और थोड़ी सी वो खुशी भी जो बिना वजह के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ये दो घंटों का सफर। दिस इज बॉलीवुड सिजल, मेरा नाम है निखिल और अगले दो घंटे मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ के बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गाने। कुछ पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे, लेकिन आज कुछ खास क्योंकि आज है बप्पा का दिन। सो दिस वन गोज आउट टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग गणेश महोत्सव।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, संडे की शाम अजीब होती है ना। हफ्ते की छुट्टी अब खत्म होने वाली है, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और रुक जाओ, यहाँ थोड़ा थम जाओ। तो चलिए, जब तक शाम है, इसे थोड़ा और खूबसूरत बना लेते हैं इन गानों के साथ। द नेक्स्ट वन कमिंग अप इज स्पेशली फॉर आश्ले भाई साहब फ्रॉम द मूवी 21 सितारे, अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सफर की खूबसूरती मंजिल में नहीं, एक गाने में होती है जो रास्ते भर फुल वॉल्यूम चलता रहता है। तो गाड़ी चला रहे हो तो वॉल्यूम ज्यादा रखो, स्पीड थोड़ा कम, और सफर को गाने के हवाले कीजिए। जी हाँ, अगला गाना आप सभी के नाम फ्रॉम द मूवी फिर हेरा फेरी, है मेरी जोरा जमीन।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ आज बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगहों पर, मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत है, क्योंकि बप्पा को वेलकम करने का वक्त आ गया है ना। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होगा फॉर एनी रीजन, और दोनों जगह में बप्पा का अर्थ एक ही है। वो बस ये बताना चाहते हैं कि बस तुम अकेले नहीं हो। कभी एक तस्वीर

एक मूर्ति, एक नाम, एक मंत्र इंसान को अंदर से संभाल लेता है। जी हाँ, हम आपसे वही कहेंगे कि आप बस मुस्कुराते रहिए, आप अपने आप को अकेला समझना बंद कर दीजिए, तब बप्पा खुद ब खुद आपके आसपास ही होंगे। ये अगला गाना खास आपके लिए।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आज संडे है और कल मंडे होगा. कल फिर से वही अलार्म बजेगा, काम होगा, भाग दौड़ होगी. लेकिन आज की शाम को पूरी तरह जी लीजिए अपना टाइम. गिव योर टाइम वेयर इट्स नीडेड. जी हाँ, जिंदगी में बड़े बड़े फैसले तो हम लेते रहते हैं, काम को लेकर, जिंदगी को लेकर, ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है. लेकिन कभी कभी सबसे ज़रूरी जो फैसला होता है वो होता है कि किसको अपना वक्त दिया जाए, किसको फ़ोन किया जाए, किसकी खबर ली जाए, किसकी खैरियत पूछी जाए और किसको कहा जाए तू ठीक तो है ना, चाहे तो मैं आकर देख लो. यहाँ ये जो शो है, दैट्स द होल आइडिया ऑफ द शो, कि हम भी आपसे पूछें कि आप ठीक हो ना. अगर आपको भी हमारे शो का हिस्सा बनना है, देन 5499-1294 अगले घंटे में विल बी टेकिंग योर डेडिकेशंस, योर मैसेजेस, आपके प्यार भरे पैगाम और बप्पा से आपके जो भी विशेस हैं वो भी उस पर भी नजर दौड़ा लें.

0: बॉलीवुड सीज़लर।
1: यहाँ शाम अब थोड़ी और गहरी हो चुकी है, घरों में डिनर की तैयारी शुरू हो रही होगी, कहीं पर कहीं लोग पूजा से लौट रहे होंगे, कई लोग अभी पूजा में जा रहे होंगे और कहीं अभी भी उत्सव का माहौल चल रहा होगा। इट्स प्रेपरेशन, इट्स स्थापन और कल के लिए बिग बिग बिग प्रेपरेशंस फॉर टुमारो। ये संडे का ये आखिरी हिस्सा जो होता है ना, थोड़ा अजीब होता है मेरे हिसाब से। कल फिर से वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां, वही भाग दौड़, लेकिन आज की शाम को अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो जो पल मिल रहे हैं उन्हें जल्दी में मत खर्च कीजिएगा। आप जहां भी है रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए और चलिए अगले कुछ गाने इसी खूबसूरत शाम के नाम करते हैं। दिस इज निखिल, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिज़लर एंड वेलकम टू आवर सेकेंड आवर।

0: रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी। RM2
0: रेडियो मस्ती।
2: You're listening to a Radio Masti.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: यहाँ त्योहार का मजा ही कुछ और होता है ना. घर में रौनक होती है, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ी मस्ती, थोड़ी भक्ति, खाना पीना. लेकिन शायद त्योहार हमें एक और चीज याद दिलाता है कि दिल को हल्का रखना कितना जरूरी होता है. कभी किसी से अनबन हो जाती है, कहीं कोई बात दिल में रह जाती है और हम उसे लेकर चलते रहते हैं. लेकिन हर बार वो वही चीज बोझ बनकर चलना जरूरी तो नहीं होता, उसको छोड़ देना काफी जरूरी होता है. कभी कभी एक छोटा सा छोड़ना यार, एक फोन कॉल या बस दिल से किसी को माफ कर देना बहुत कुछ बदल देता है. तो इस त्योहार के माहौल में अगर कोई पुरानी बात है, कोई पुरानी गिले शिकवे हैं जो दिल में अटकी हुई है, शायद उसे आज थोड़ा हल्का करने का वक्त है. ये गाना आपके नाम.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, अपना रेडियो आपने अभी अभी ऑन किया है तो आपको बता दें, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. मैं हूं निखिल और चल रहा है आपका अपना बॉलीवुड सिज़लर. जी हाँ, रात के इस वक्त भी अगर आपकी ड्यूटी चल रही है तो एक बात, आप अपनी मेहनत को छोटा मत समझिएगा. हर काम जो ईमानदारी से किया जाए किसी ना किसी की जिंदगी को आसान बना रहा होता है. क्या हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप काम कर रहे हैं ताकि हम इस संडे शाम को आराम कर सकें, तो एक गाना आपके नाम तो बनता है. और ये डेडिकेशन हमारा नहीं है, ये डेडिकेशन आया है फ्रॉम गुलाब फैमिली ऑफ खोचा. जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज. आई वुड लाइक टू डेडिकेट द ब्यूटिफुल सॉन्ग एक दिन आप यूं फ्रॉम द मूवी यस बॉस टू माई हस्बैंड आकाश, माई लिटिल बेबी विहान, माई मॉम शादा एंड टू द एंटायर गुलाब फैमिली ऑफ खोचाब. और ये आया है, अपना नाम तो नहीं लिखा है पूजा जी, लेकिन हमने पढ़ लिया. क्या ये खासकर पूजा जी के नाम, सोनम जी के नाम, फॉर द लवली मैसेजेस. वी ऑल्सो लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू द अपाडू फैमिली ऑफ रोशना, दारेन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवशा एंड एक रानी ने हमको मैसेज भेजा है, कहा है कि डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय राजा. ना राजा का नाम है ना रानी का नाम है, जहां आप सुन रहे हैं तो आप पहचान लोगे. ये गाना, ये अगला गाना खास आपके नाम.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ शाम अपने आखिरी हिस्से में है लेकिन हमारी महफिल अभी भी बाकी है. आप चाहे सड़क पर हैं, काम पर हैं, घर में हैं या कहीं से लौट रहे हैं सड़क पर, जहां पर भी हैं इस पल को अपना समझिए. कुछ देर के लिए दुनिया को साइड में रखकर आप बस अपने लिए कुछ पल निकालिए और इन पलों में बस आराम से ये गाना सुनिए. The next song goes out especially to all those who sometimes feel कि वो खोए हुए हैं, उनको राह दिखाई नहीं दे रही है. खासकर उनके लिए हम चलाएंगे ये गाना from the movie सरबजीत सलामत. इसके बोल सुनिएगा, ये खासकर मेरी तरफ से आपके लिए.

0: Hot Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
1: RM2 Radio Musti.

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: यहाँ देवा हो देवा गणपति देवा ये सिर्फ एक जगह का उत्सव नहीं है जहाँ जहाँ अपने लोग हैं वहाँ वहाँ बप्पा है घर छोटा हो या बड़ा मूर्ति छोटी हो या बड़ी जो इंतजाम हो जो पंडाल लगाया हो वो छोटा हो या बड़ा जब आरती की आवाज़ उठती है ना तो पूरा घर पूरा जो मोहल्ला है वो एक सा हो जाता है और मॉरिशस में यही आई थिंक सबसे सुंदर है कि बप्पा आते हैं तो साथ में लोगों को भी लाते हैं पुराने दोस्त नए दोस्त पड़ोसी परिवार और फिर एक शाम एक याद बन जाती है जहाँ जब हम पूछते हैं हम अक्सर बप्पा से क्या मांगते हैं रुकावट दूर कर दो रास्ता आसान कर दो काम सफल कर दो लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये जो साथ हमको दिया गया है ये बेशकीमती है इसके लिए कोई वरदान की जरूरत नहीं वो बप्पा ने हमें पहले से दे दिया है सो इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव ऑल दीज फेस्टिविटीज इन मॉरिशस जहाँ पर सभी लोग सभी कम्युनिटीज साथ में आते हैं ये मनाने के लिए ये कमेमोरेट करने के लिए यहाँ कमेमोरेशन से याद आया एक इवेंट हम कमेमोरेट कर रहे हैं जी हाँ दिस वन दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू बाय यलविन जिन्होंने इस गाने की मांग की थी और जो भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी या तो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की ओर जा रहे हैं या फिर वहाँ से आ रहे हैं या फिर किसी और तैयारी में लगे हुए हैं ये गाना खास आपके नाम

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: यहाँ गणेश चतुर्थी का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये सिखाता है, ये शुरू तो होता है बप्पा के आने से और ख़त्म होता है बप्पा के विसर्जन से, क्योंकि हमें सिखाता है कि जो आता है वो एक दिन जाता भी है, इसलिए जब तक साथ है दिल खोर कर जीना चाहिए। अब हमारी भी आज की महफिल का वक्त हो चला है, दो घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पैगामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नया हफ्ता है, तो आज रात थोड़ा सुकून लेकर जाइएगा यहाँ से। अपनों का ख्याल रखिए, दिल में जो ज़रूरी नहीं है उसे थोड़ा हल्का कर दीजिए और बस मुस्कुराते रहिए। मिलूंगा अगले संडे, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और RM2 रेडियो मस्ती पर म्यूजिक सुनते रहिए। शुभ रात्रि मॉरिशस, गणपति बप्पा मोरया।

0: चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5,
3: East, West,
2: 96.4,
3: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.
5: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वैसे रात धीरे धीरे अपनी बाहों में हमें समेट रही है। कभी कभी ना दिन के भागदौर के बाद बस एक सुकून भरी रात, एक अच्छा सा गाना और किसी अपने की याद ही काफ़ी होती है। वैसे अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ उसे अपने दिल पर लेकर मत सोइए। कल एक नई सुबह होगी, नए मौके होंगे और शायद वो खुशियाँ भी जो आज आपसे थोड़े से दूर हैं। सो रिलैक्स, स्माइल, लेट द म्यूजिक हील योर हार्ट, क्योंकि यू आर लिसनिंग to your late night grooves with me, RJ Ginisha.

दोस्तों, प्यार हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स का एक्सपेंसिव. मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, प्यार जो है ना, हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से प्रूव नहीं होता है. कभी कभी एक सिंपल सा हैव यू ईटन और टेक केयर माय स्वीटहार्ट या बिना किसी रीजन का एक कॉल करना ही दिल को बता देता है ना कि कोई है जो हमारी फिक्र करता है. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. आज रात उन्हें एक छोटा सा मैसेज जरूर भेजिए. बस कह दीजिए, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि प्यार जताना भी जरूरी है और प्यार निभाना भी.

I really hope कि जितने प्यारे प्यारे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए in your late night grooves आपको दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे कभी कभी हम बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं ना, जो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या सोचा है, किसने हमें समझा और किसने नहीं समझा, बट डार्लिंग हर किसी को एक्सप्लेन करते करते अपने आप को मत थका दीजिए। आज रात बस इतना कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए और म्यूजिक के साथ फ्लो कीजिए, क्योंकि पीस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ हैप्पीनेस।

I really hope कि आपको दिल से ये खूबसूरत गाने ये तराने जो हम पेश कर रहे हैं on the Radio Masti in your late night grooves आपको अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर फिलहाल अपनों से दूर अभी भी आप काम पे हो, you are working to home, आपको विश करना चाहेंगे बों को गाश माय डियर। और खूबसूरत अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं वो खासकर हमारी तरफ से आपके लिए, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और शायद इसीलिए ब्यूटीफुल होती है। कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते भी हैं, कभी जीते हैं और कभी हार कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर आज आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, दिस फेज इज नॉट योर होल लाइफ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपने पहले भी बहुत कुछ फेस किया होगा अपनी जिंदगी में और आज भी आप यहाँ हैं, स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, है ना। सो यू डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। कभी भी लाइफ में द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ मे स्टिल बी वेटिंग फॉर यू।

हम सब दूसरों के लिए इतना करते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद से भी पूछना चाहिए, मैं ठीक हूँ ना? यू डिजर्व लव, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, पीस एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, नॉट बिकॉज समवन एल्स ने कहा है, क्योंकि आप जो हो उसके लिए यू डिजर्व एवरीथिंग। सो टुनाइट स्माइल एट योरसेल्फ एंड बी प्राउड कि आप जिंदगी में इतना कुछ कर गए हैं, फिर भी यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर।

एक गाने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? एक ही गाना किसी के लिए बस म्यूजिक होता है और किसी के लिए उनकी पूरी कहानी। एक गाना सुनते ही कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई जर्नी, कोई पहली मुलाकात या फिर वो पल जो कभी वापस नहीं आएगा। That's the magic of music. It keeps our memories alive. तो आज की इस रात को let's create some beautiful memories together in your late night grooves. क्योंकि years later maybe आप इस गाने को सुनेंगे और याद रखेंगे कि हाँ I used to listen to this beautiful show and a beautiful गाने किनिशा के साथ on Radio Masti.

Actually, जी, to all those who are truly, madly, deeply in love, हाँ जी, to all those जो बड़े प्यार से, शिद्दत से भी हमारा साथ दे रहे हैं, एक छोटी सी बात, प्यार में perfect होना जरूरी नहीं है, present होना जरूरी है, अपने जो busy schedule में ये थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके emotions को समझिए, sometimes the person you love doesn't need a solution, they just need to know that you are there. So hold on to the people who make your heart feel like home. Late night grooves में ऐसे ही romantic गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा, दिल की बातें और beautiful vibes के साथ मैं हूँ आपका साथ देने

सो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात का ये वक्त इतना खूबसूरत होता है ना कि दिन भर की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और फिर बस हम हमारे थॉट्स और म्यूजिक जो है साथ दे जाते हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो अगर आज आपके दिल में कोई बात है जो किसी से कह नहीं पा रहे हो तो उसे म्यूजिक के हवाले कर दीजिए, शायद कोई गाना आपकी फीलिंग्स को लफ्जों में बयां कर दे। मैं हूँ आज की निशा जो लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ दे रही है, जहाँ हर रात एक नई कहानी और हर गाने में एक नया एहसास मिलता है।

सो दोस्तों, खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए। कभी एक गर्म कप चाय या कॉफी, अपना फेवरेट गाना, किसी अपनों का साथ, किसी अपने का मैसेज या एक प्यारी सी स्माइल भी दिन बना सकती है ना। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लीजिए, क्योंकि एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद

यही छोटे पल सबसे ज्यादा याद आएंगे टू टुनाइट फॉरगेट योर वरीज थोड़ी देर के लिए टर्न अप द वॉल्यूम एंड लेट योर हार्ट फील हैप्पी ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स

टाइम बीता चला जा रहा है और हमें पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो है फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, यस, या कहीं से लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हो आप, या हो सकता है कि आप ड्राइवर का काम करते हैं, यू आर ड्राइविंग राइट नाउ. कहीं से भी अगर आप ड्राइव करते करते हमारा साथ दे रहे हो, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चला दीजिए और बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के लिए, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. तो बस दिल को थाम लीजिए और इस खूबसूरत नगमे में खो जाइए.

खूबसूरत बातें तो हम करते ही रहते हैं लेकिन खूबसूरत खूबसूरत गाने भी हम पेश कर रहे हैं जितने भी हमारे लिसनर्स अक्रॉस द ग्लोब हमारा साथ दे रहे हैं मॉरिशस के बाहर हो लेकिन हमारे दिल के जो करीब रहते हैं उनके लिए हम अगला नगमा पेश करना चाहेंगे। हाँ जी मुझे पता है अपनों से दूर रहकर जब आप ऐसे सुनते हैं ना गाने ऑन रेडियो तो बस अपनों की ही याद आ जाती है और उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत गानों से आपकी हम यादों को ताज़ा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं। तो चलिए ये अगला गाना किनिशा की तरफ से हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो मॉरिशस के बाहर हैं और हमारा साथ दे रहे हैं।

बातें जो है ना दिल में दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गाने ऐसे हम सुनते हैं, इट रिलेट्स टू आवर स्टोरी, और ऐसा लगता है कि ये गाना तो सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है. जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो किसी ना किसी के लाइफ के सिचुएशन के साथ फिट नहीं होता है. तो चलिए, अगर यादों में कोई है, दिल में ये कोई है और फिलहाल के लिए आप मुस्कुरा रहे हो उनको याद करते करते, तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके उनके नाम जो आपके दिल में बसते हैं.

दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. जी हाँ, हम अभी जा तो रहे हैं लेकिन वादा करते हैं फिर से लौट के आएंगे कभी भी फिर से लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ देने के लिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना और कीप ऑन स्प्रेडिंग लव.